0: It's 8:15 a.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास चेहरे के दाग धब्बे खेल महासे और बेजानपन अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जिल्द को दे नया निखार नरमी ताजगी और कुदरती चमक सांवली रंगत अब नहीं सिर्फ 3 दिन में पाए साफ निखरी और गोरी रंगत लेकिन याद रखें बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092 बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो
3: छा तव्हां समर वेकेशन के फ्रूटफुल बनाइण चाहियो था छा तव्हां सिर्फ़ ॿिनि महीननि में न्यू स्किल्स सिखी पंहिंजे मुस्तक़बिल खे वधीक बहितर बणाइण चाहियो था त पोइ परेशान थियण जी का ज़रूरत नाहे ग्लिमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर पेश करे थो 2 मंथ्स समर वेकेशन स्पेशल कोर्सेज जिन में शामिल आहिनि किड्स कंप्यूटर कोर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वेब डेवलपमेंट कोर्स ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स 1 ईयर DIT कोर्स 6 मंथ्स CIT कोर्स तजुर्बेकार टीचर्स जी निगरानी में जदीद ऐं आसान तरीक़नि सां प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सां गॾु सिखिया मुनासिब फीस में मयारी तालीम हासिल करियो ऐं पंहिंजी समर वेकेशन खे कामयाबी ऐं सिखिया जो बहितरीन मौक़ो बणायो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल एडमिशन ओपन नाओ व्हाट्सएप 0300-311-3830 मोबाइल 0300-09-31207 एंड 0301-386-5090 एड्रेस लाल टावर फर्स्ट फ्लोर 100 फीट रोड भरसा IBA यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 सखर ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लर्न स्किल्स बिल्ड योर फ्यूचर
2: ईद उल अज़हा कुर्बानी मोहब्बत ईसार और खुशियों का त्यौहार यही दिन हमें सिखाता है कि दूसरों की खुशियों में शामिल होना ही असल इबादत है इसी खूबसूरत मौके पर हम मात फार्म्स की जानिब से आपको और आपके अहले खाना को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियां मुबारक हो खालिस मयार खालिस एतमाद खालिस सरसों का ऑयल और खालिस गंदुम का बेहतरीन बीज अब आपकी खिदमत में सिर्फ हम मात फार्म्स के साथ इस ईद पर अपनों के साथ खुशियां बांटें मोहब्बतें पढ़ाएं और सेहतमंद जिंदगी का इंतखाब करें हम मात फार्म्स खालिस सरसों का ऑयल और मयारी गंदुम के बीज बनाने वाले ईद उल अज़हा मुबारक
4: ईद उल अज़हा के पुर मुसर्रत मौके पर जीए सखर FM 88 की जानिब से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद

कुर्बानी के जज्बे के साथ ईद मनाएं, सबको गले लगाएं। बड़ी ईद की बड़ी मुबारक। जीए सक्खर FM 88 की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद उल अजहा मुबारक हो।

0: ಮೆಹದಿ ಸೀದ್ರಿಂಗ್
1: ईद अल अज़हा जे पुर मुसरत मौके ते साबिक सेनेटर मोहतरम जनाब मोहम्मद असद अली खान जुड़े जो साहब मोहतरम जनाब मेहदी

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

अजा के पुल मुसरत मौके पर GSAKAR FM 88 की जानिब से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद।

अॼु इहा समय न पहिरीं पहिरियां खे ज़रूरु सरप्राइज़ मिलंदा के दोस्त एडवांस में ईंदा आहिनि ईद मिलण, के दोस्त अचानक ईंदा आहिनि, जेका सरप्राइज़ थी वेंदी आहे। ऐं असांजो उमेद आहे त सभिनी सां पंहिंजा पहिरीं प्यारा, पंहिंजा वॾा बुज़ुर्ग ऐं पंहिंजा महबूब हिननि ईदनि ते मिलंदा। ऐं साईं मुंहिंजा ईदनि जो बि हिकिड़ो अजीब सिलसिलो हूंदो आहे, ऐं उहे ईदूं कंहिंखे ख़ुशियूं बख़्शनि त कंहिंखे वरी डुख। उन्हनि ईदनि ते के परदेसी प्यारा महीननि जा महीना दूर गुज़रण खां पोइ जॾहिं पंहिंजे माॻनि ते मोटींदा आहिनि त केतिरियूं ई जेको आहे ख़ुशियूं हुन जे अंदर में हूंदियूं आहिनि। मंज़र ऐं आसरा दिलियूं ऐं ख़ुशियूं झुमरियूं पाईंदियूं आहिनि। ऐं वरी के पहिरीं सॼो साल गॾु गुज़रण खां पोइ बि ईद पंहिंजा अॻा अबाणे ॻोठु करण ईंदा आहिनि ऐं के न बि ईंदा आहिनि। त ईदुनि जा समूरा ख़ुशियुनि भरिया रंग ऐं अहसास पाण सां गॾु खणी ईंदा आहिनि ऐं उन्हनि प्यार कंदड़नि मासूम दिलनि खे सिर्फ़ ई सिर्फ़ उदासियूं अकेलायूं ॾेई हलिया वेंदा आहिनि, जेके हुन सां महबूब न मिलंदा आहिनि। अरमाननि उदासियुनि जा अकेला ऐं मारियल माण्हू दिलियूं उन्हनि जूं कहिड़ियूं ईद कंदियूं। ऐं साईं मुंहिंजा असां चवंदासीं सभिनी प्यारनि खे, पंहिंजे महबूबनि खे ऐं पंहिंजे मिटनि माइटनि खे, पंहिंजे सुहिणनि खे चवंदासीं त अचो ऐं असां सां गॾु अचे लड़कण में ईद कयो। जेकॾहिं तव्हां न ईंदो त असां तव्हांखे ज़ोरी बि घुराईंदासीं, तव्हां ॾे बि ज़रूर ईंदासीं, पर हिन ईद ते याने अॼु ईद उल अज़हा जे मौक़े ते असां ॾे ज़रूर लड़कण अचो, असां सां ईद करणु अचो।

हा जी हा साईं मुंहिंजा प्रोग्राम ईद जो रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां ऐं मुंहिंजो मेज़बान नेमत अल्लाह जूणे जो तव्हां सभिनी खे वरी बि ईद जूं लख लख मुबारकूं। तव्हां असांजे नाला लिखी मोकिले सघो था असांजे इनबॉक्स में फेसबुक ते ऐं असांजे नंबर ते तव्हां नाला लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332132288। कोई बि सवाल कोन्हे को जवां सां ऐं तव्हांजा सिर्फ़ नाला हलाईंदासीं ऐं तव्हां जूं ईद मुबारकूं अव्हां जे दोस्तनि ताईं पहुचाईंदासीं। कॾहिं बि न वञो, तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक 11 वॻे ताईं। हिन वक़्तु हलूं पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: शदीद गर्मी सबब शहरन की गुजारिश कई वजे थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम, हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची।
3: खुशियों, कुर्बानी और मोहब्बत का त्यौहार GSAKHAR FM 88 की जानिब से ईद उल अजहा मुबारक। दुआ है कि ये ईद आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए।
4: जी स्किन डल बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो एक नौ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: शदीद बारिश कई वजे थी तो वगे खां शाम खास एहतियात जरूरी, हल्का कपड़ा, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम, हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन सा पेश कयो वयो।
5: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील महासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
2: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट जे तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अवां जे शहर सखर में। मेदे जा मसला, गैस, बदहजमी, कब्ज, खूनी बादी बवासी, जनाना बीमार समेत बेन मर्जन जो इलाज करे रहो आहे। रोजाना सुबह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल। एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक, वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप, नजद PSO पेट्रोल पंप, रेस कोर्स रोड सखर। राब्ते जे लाइ 0311-208-26 double

0: 0833-713-71-433-11।
1: छा तव्हां समर वेकेशन खे फ्रूटफुल बणाइण चाहियो था? छा तव्हां सिर्फ़ ॿिनि महीननि में न्यू स्किल्स सिखी पंहिंजे मुस्तक़बिल खे वधीक बहितर बणाइण चाहियो था? त पोइ परेशान थियण जी का ज़रूरत नाहे। ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर पेश करे थो 2 months समर वेकेशन स्पेशल कोर्सेज, जिन में शामिल आहिनि किड्स कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स, ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, 1 year DIT कोर्स, 6 months CIT कोर्स। तजुर्बेकार टीचर्स जी निगरानी में जदीद ऐं आसान तरीक़नि सां प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सां गॾु सिखिया, मुनासिब फीस में मयारी तालीम हासिल करियो ऐं पंहिंजी समर वेकेशन खे कामयाबी ऐं सिखिया जो बहितरीन मौक़ो बणायो। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। एडमिशन ओपन नाओ। व्हाट्सएप 03003113830। मोबाइल 03000930207 and 03013865090। Address: Lar Tower, First Floor, Sofit Road, Bharsa, IBA University, Gate Number 2, Sakhar। Glamour Institute of Science and Technology। Learn skills, build your future।
2: Yaar macha kya, kithe vanya, ghar mein baitho hain par theek hi nahi, shayad mujhe zindagi layak ka dawai nahi thi।
3: Jo bhala tha chha tokhe, साफ़ साफ़ ॿुधा मसलो छा आहे।
2: यार हिकु मसलो हुजे त ॿुधायां, मुंहिंजी ते मसलनि जी कतार लॻल आहे, न बुख सही लॻे थी ऐं जे कुझु बि खावां थो त हज़म ई नथो थिए, पेट फूकजी वञे थो, हथ पेर सुन थी वञनि था ऐं सॼो ॾींहुं सुस्ती महसूस थिए थी, कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां।
3: यार तुंहिंजा घणा न, बस हिकु ई मसलो आहे।
2: हिकु? इहो कीअं?
3: हा, तुंहिंजो मैदो ख़राब आहे। छा तो न ॿुधो आहे, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त। जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी, न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी।
2: त पोइ मां छा कयां?
3: सवलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफ़ाए मैदा कोर्स। हे कुदरती जुज़नि मां तयारु कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणिजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुल ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो। बुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई, पेट फूकजण ख़तम, सुस्ती ख़तम, जिस्म में ताक़त ईंदई।
2: वाह यार, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
3: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं, अल नूर दवाखाना रोड़ी। ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 08 शिफ़ाए दुरुस्त तंदुरुस्त।
4: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक, NICVD रोड, सखर, हैदराबाद ऐं लाड़काणे जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी, DHMS, RHMP, इस्लामाबाद, जोड़न, संदन जो सूर, कुंदरग जो सूर, कंघे जो सूर, हॾन जो भरण, अध मथे जो सूर, मादे जी अल्सर, मादे जो सूर, ख़ारिश, ॿारनि में कद जो न वधण, मोटापो, इन खां अलावा पित्ते, गुर्दे ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। टाइम सुबुह 10 खां शाम 6 वॻे ताईं। एड्रेस: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक, नज़्द दिलवारी अस्पताल, सखर। हर जुमे ऐं आचार ते चेकअप फीस बिल्कुल मुफ़्त। रश खां बचण ऐं नंबर वठण लाइ 0327-84-60-746।
1: ईद उल उज़ा मुबारक, सुन्नत इब्राहिमी, कुर्बानी, मोहबत, ईसार ऐं भाईचारे जे अज़ीम पैगाम सां भरियल ईद उल उज़ा जे हिन पुरमुसरत ऐं बरकतनि वारे मौके ते मोहम्मद अब्दुल रसूल भुट्टो, अयाज़ भुट्टो, सुलेमान भुट्टो, यामीन भुट्टो, अली हसन भाबो, अली गुल कठवर, रज़ा मोहम्मद मस्तोई, सैयद इमदाद अली शाह, खान मोहम्मद महर, मकसूद न्याज़ी, अली मोहम्मद भमरो, वराय उलाशारी समेत इस्लाम ऐं पाकिस्तान जी आवाम खे दिल जी गहराइन सां ईद उल उज़ा जूं लख लख वाधायूं, नेक तमनाऊं ऐं दुआऊं पेश कजनि थियूं। पारां सोना खान मस्तोई, जेकबाबाद, राबतो 03047।
5: खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
6: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
5: DHMS सिंध,
6: RHMP इस्लामाबाद,
5: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
6: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
5: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
6: कमर दर्द,
5: अर्कुन निसा,
6: जोड़ों का दर्द,
5: हेपेटाइटिस,
6: वजन की कमी या ज्यादती,
5: बे औलादी,
6: गंजपन का मुकम्मल इलाज
5: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
6: टाइम
5: हफ्ते से जुमेरात
6: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
5: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
6: पुलिस हेडक्वार्टर चौक, सखर।
5: राब्ते के लिए
6: 03226-22-00-440।
5: अवां जे शहर सखर में होम्योपैथिक में 43 सालनि जो तजुर्बो।

कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं जज्बात और ख्वाहिशात की भी होती है। ईद उल अजहा का पैगाम है खुलूस और कुर्बत का। जीएस अखर FM 88 की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक।

जी असोइन प्रोग्राम आहे ईद जो रोशन सुबुह ऐं मावा जो मेज़बान निमतला जूणे जो अवां सां गॾु प्रोग्राम रोशन ईद जो रोशन सुबुह अवां ॿुधो पिया GFM 88 जे नेटवर्क तां ऐं असां सभिनी खे ईद मुबारकूं असांजे जेका बि असांजे GFM 88 जा इंचार्ज आहिनि आफिसर साहब आहिनि रीजनल मैनेजर आहिनि ऐं असांजा कोआर्डिनेटर आहिनि सभिनी जे तरफ़ां जेकी असांजी टीम आहे सभिनी GFM 88 जे टीम तरफ़ां तव्हां सभिनी ॿुधंदड़नि खे जेके असांजो प्रोग्राम पूरी सिंध में ॿुधनि पिया कचे में पके में ऐं जाबलू इलाइक़े में ॿुधनि था शहर में वस्ती वाण में प्रोग्राम ॿुधनि पिया सभिनी खे ईद उल अज़हा जे पुरमुसरत मौक़े ते दिलि जे गहरनि सां ईद मुबारकूं ऐं साईं मुंहिंजा हाणे अव्हां जा नाला अव्हां ताईं पहुचाईंदा हल जेके फोन ते भाग ख़ासि खां हाफ़िज़ लखमीर ढिलू मोरे खां ऐं उन सां गॾु दोस्त आहिनि हाफ़िज़ सांवल ढिलू ताहिर लुंडो ऐं इमदाद अली शाह हुन सां गॾु आहिनि ॿाहिरां जी वॾी महिरबानी अहमद नवाज़ गोरी कंबर खां हुन सां भाउ गॾु आहे तारिक ऐं शोएब इमदाद शाह बखन वाकिल खां बानी ऐं पन वाकिल सुमराणी ईंदड़ खां आहे हाफ़िज़ अमीन लाइ काज़ी ऐं आसिफ़ अली चाचड़ वासिफ़ अली बुगटी माहौटन खां कुर्बान अली ख़ासकिली झंडो मरी खां ऐं असद लाइ शेख नज़र मले लाड़ेकाणे खां प्रोग्राम ॿुधे पियो दोस्त आहिनि मोलिड़े माशी लॻे वॾनि महरनि खां ज़मीर हुसैन सोलंगी ऐं मुख़्तियार अली सोलंगी ज़हीर अब्बास सोलंगी ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर ॻोठ अहमद खान लाशारी नंढो शाहज़ेब लाशारी खां महमद

अजी आ समय न ईद वाकई तो साई कवी ए भले बेन के बाहे लगे भले बेन के जको साड़ थे पर ईद तो साई कवी हकीकत आ त जेके दोस्त ईद पहजन सा कंदा पहजे महबूब सा कंदा पहजे पेरी प्यारन सा कंदा जेके उन जे देश परदेश मा कहीं पहजे गोठ आया न ए पहजे प्यारन सा मिलन आया न त जरूर उन साई ईद थिंदी भले मान के साड़ थे भले हो जेन ए असन जो फराज अली सखर खां भा प्रोग्राम बुधे पियो हुन जी वॾी महिरबानी खालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां ऐं नूर हुसैन तुनियो बदीन खां प्रोग्राम बुधे पियो भाउ जी वॾी महिरबानी ऐं सजाद अल्ला जमाली ॻोठ मोहम्मद हसन जमाली नवाब शाह खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया हुन सां गॾु आहिनि भाउ अली गुल जमाली ऐं अली हैदर जमाली हुन सां गॾु प्रोग्राम ॿाहिरि ॿुधनि पिया हुन जी वॾी महिरबानी ऐं ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर चांडियो अहसन अकबर चांडियो फहद अकबर अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो छुटो मक्सी लगे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नारा स्टॉप सखर लग सब्जी मंडी खां एजाज अली जुणे जो मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जुणे जो यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फौजी इरशाद महेसर एजाज अली कलोड़ो फ़कीर ऐं फ़कीर असांजो डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो माजिद अली जतोई ऐं निसार जतोई हरसा जी गढ़ी कोरकाणनि खां सुमर फ़कीर कोरकाणी ऐं मीरपुर ख़ासि खां भाउ असांजो अब्दुल अज़ीज़ सोलंगी प्रोग्राम ते पियो भाइरनि जी वॾी महिरबानी त समय न ख़ूबसूरत नगमो आहे अवां दोस्तनि जे नाम विया कयूं।

जहां हर दिल खुशियों से लबरेज है, जहां कुर्बानी का जज्बा मोहब्बत में ढलता है, वहीं हम GAFM की पूरी टीम आपको और आपके प्यारों को ईद उल अजहा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। दुआ है कि ये ईद आपके लिए खुशियों, रहमतों और बरकतों का पैगाम लेकर आए। कुर्बानी का जज्बा हम सबको ईसार, मोहब्बत और भाईचारे का सबक दे। GAFM के साथ रहिए, जहां खुशियां, बातें और मौसीकी आपका साथ निभाती हैं। ईद मुबारक।

खुशियों, कुर्बानी और मोहब्बत का त्यौहार जी एस एखर FM 88 की जानिब से ईद उल अजहा मुबारक। दुआ है कि ये ईद आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए।

0: कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं जज्बात और ख्वाहिशात की भी होती है। ईद उल अजहा का पैगाम है खुलूस और कुर्बत का। जी सखर FM 88 की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वजे थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे तई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो।

0: खुशियों, कुर्बानी और मोहब्बत का त्यौहार जी सखर FM 88 की जानिब से ईद उल अजहा मुबारक। दुआ है कि ये ईद आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए।
1: नेटवर्क नामा जो मेजबान नेमतला जुन जो जी सभी तमा सा ईद जो मुबारकू असाने मोकिले सको था। मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो उते LRK लिखी स्पेस दई पांजो नालो पांजे गोठ नालो लिखी करे तवां असाने मोकिलो 888-1 ते फेसबुक जे आईडी ते भी तवां पांजा नाला ईद मुबारक असाने लिखी मोकिले सको था। असां जो नंबर आन आहे जेको स्टूडियो नंबर आहे बिल्कुल आन आहे। तवां नंबर ते भी कॉल करे पांजा नाला लिखराए सको था। असां नंबर आहे 0332-1322-88। कुझु दोस्त अञा नाबला बि शामिल कंदा हलंदासीं। महरम अली बुरगड़ी लॻे पीर गुलशाह खां ऐं पीर गुलशाह खां लियाकत अली खजड़ बि असांजे प्रोग्राम खे ॿुधनि पिया। यासमीन मलिक आहे मीरपुर ख़ासि खां, रांझन कोरी ॻोठ मीरपुर ख़ासि खां, ऐं मोहम्मद हुसैन खोसो अदील अबड़ो ऐं शाहबान चन्ना कश्मोर खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया। भाइरनि जी वॾी महिरबानी। इक़बाल लाशारी झलोरी ॻोठ मीरपुर ख़ासि खां, आमिर हुसैन भुट्टो उन जी घरवारी आहे मायनोश भुट्टो, नंढड़ो साकिब हैदर भुट्टो ॻोठ माहौटन खां, दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। त साईं मुंहिंजा जंहिं वटि पिरी प्यारा ऐं महबूब पंहिंजो न अचनि ऐं उहे इंतज़ार में हूंदा आहिनि त असां कपिड़ा पाईंदासीं, भला लटा पाईंदासीं ऐं वेसवगा ईद जा नवां सिबरा आहिनि ऐं उहे पाईंदासीं। ऐं जेकॾहिं उहे महबूब उहे पिरी प्यारा चवंदा आहिनि त जंहिंजे लाइ कुल्हे कांधी थियासीं आया ई कोन। बहरहाल जेकॾहिं उहे पहिरीं प्यारा महबूब न अचनि त उहे कपिड़ा कहिड़े कम जा। पर इन खां अॻु में अवां ताईं पहुचाईंदासीं दिलदार अबड़े जो शायरीअ जूं चंद सिटूं आहिनि। आहे ॾुखी हयाती तोखां परे परे, आहे ॾुखी हयाती तोखां परे परे, तोखां सवाइ हिकड़ी न सात सरे सरे, मांदो रहे थो मन ऐं अखियूं सदा भिनल, सिक तुंहिंजी में जिस्म पियो गरे गरे, ख़्वाहिश उहा ई आहे हिकु बीमार जी, ज़ुल्फ़न जा ॾे शांवरा अंदर ठरे ठरे, नफ़रत जा नांग मारे महबूब मुर्क सां, अच कुर्ब जा कदम खे सजण भरे भरे, ॾेको अची सहारो दुनिया जे सीर में, ॾेको अची सहारो दुनिया जे सीर में, दिलदार यार अबड़ो थी न ख़ुदा तरे तरे। साईं मुंहिंजा दिलदार साहब जो गज़ल अवां ताईं पहुचायोसीं ऐं हाणे मास्टर मंज़ूर जो कलाम ॾिसूं पिया ॿुधूं पिया त छा पियो चवे।

जीअं सभिनि प्रोग्राम आहे ईद जो रोशन सुबुह ऐं ईद जो रोशन सुबुह असांजो पहिरीं प्यारो घोट प्रोग्राम ॿुधे पियो मसूद अली जतो ई असांजो प्रोग्राम ॿुधे पियो उनखे शादी जूं मुबारकूं बि ऐं उनखे ईद जूं बि मुबारकूं त साईं मुंहिंजा जेका इहा ईद आहे ईद उल अज़हा आहे ऐं ईद उल अज़हा क़ुर्बानी जी जेको आहे सो ईद आहे ऐं क़ुर्बानी अलाह ताला जी आॾो झुकण जो नालो आहे ऐं साईं मुंहिंजा हीअ जेका क़ुर्बानी वारी ईद आहे सुनत इब्राहिमी आहे ऐं बिल्कुलु सुनत इब्राहिमी जे करे जेको आहे सो गोश्त कयो वञे थो उज़ा जंहिंमें वॾो ढोर बि थी सघे थो गाहो ढोर बि थी सघे थो ऐं उठ बि गोश्त क़ुर्बानी थींदो आहे बकरे जी आम क़ुर्बानी अक्सर बकरे वारी ईद बि सॾी वेंदी आहे ईद उल अज़हा खे त साईं मुंहिंजा ईदूं पयूं थींदियूं ऐं जेकॾहिं जीअर आहिनि त सभु पिया मिलंदा पर वरी ही नगमो अवां दोस्तनि जे नाम पिया कयूं ऐं साईं मुंहिंजा कुझु नाला बि अवां ताईं पहुचाईंदासीं मेहर अली कलोड़ो कंडियारे खां हाफिज़ मोहम्मद अमीन बारी जो खोड़ा गंबट खां हाफिज़ मोहम्मद हनीफ रिंद इमरान रिंद सदाम रिंद ॻोठ जीअंद रिंद जेकाबाद खां

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे तई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: गारंटी ब्यूटी क्रीम।

देखिए मोहब्बत दाग की सूरत बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा मियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: काश हमारे पास वैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।

कहर न कजो जे दिल ते कन दिल हुआ सिल्प थी वेंदी ऐं जेको आहे सो माण्हू वञी किरंदो तव्हां दोस्तनि जा जेके अव्हां ताईं पहुचाईंदा हलण खां प्रोग्राम ॿुधे पियो हुते जो मुबारकूं ॾे पियो दुआऊं ॾे पियो भाउ जी वॾी महिरबानी इरशद अली कोराई ऐं नंढो माल कॉलोनी लाड़काणे खां ऐं ॻोठ पुनल कोराई ॻोठ बहावल खान भाउ जी वॾी महिरबानी मुज़म्मिल आफ़ताब सबर राहू जो ऐं जजलाज लाड़काणे ऐं असांजो जतोई धन पिया भाइरनि जी वॾी ऐं ॻोठ घाड़ी वा गिलाड भाउ जी वॾी महिरबानी मीर हज़ार खान ऐं साईं मुंहिंजा जेका ख़ुशियूं आहिनि ऐं हज आहे

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

जी हा समय प्रोग्राम जा आखिरी लम्हा आखिरी लम्हन में कुछ दोस्तों जन नाला वहां पहुंचाईंदी दोस्त ईद मुबारक हुजन पा भैर की वही मेहरबानी असाजा दोस्त है पांजो ममंद खान कुंभार वफा जमाल कुंभार उमेद अली कुंभार हाले पुटरा स्टाफ मीरपुर खास खान जो जलोरी गोठ है भैर की वही मेहरबानी नजीबुल्ला बिरोही भी भा प्रोग्राम बुधे पो लख कुर्ब भा जा असाजो वफा वहीद जतोई केटी शाबिलो खां प्रोग्राम बुधे पो भा की मेहरबानी उनसा गड असाजा जहीर अहमद जतोई भी उन गड प्रोग्राम बुधे पो खुर्शेद शर मेरापुर खां इमरान अली मोहम्मद हयात शर फरीद महर मीरपुर खास खां जमालदीन भयो शिकारपुर खां इमदाद लाए नेमत लाए भयो प्रोग्राम बुधन पा भैर की वही मेहरबानी लख कुर्ब समय आखिरी प्रोग्राम के लम्हन में अवां के वरी खूबसूरत नगमो बुधायूं था तवां एंजॉय कंदा रहो असां के वरी सुभाणे ते इजाज़त ॾींदा पंहिंजी मेज़बान नेमत लाइ जुणे जो के वरी हयाती रही त इंशाल्लाह सुभाणे 9 बजे असां ईद शो में गॾु हूंदासीं तेसीं ताईं अलह निगहबान।

0: भाईचारे का जी आत रही है। शिया बातें और मौसी की आपने ईद मुबारक खुशखबरी आज बाय सखर जो मशीन इंस्टीट्यूट सखर नए सेशन शानदार बार फैशनल चार साल जा डिग्री प्रोग्राम पंज साल जनेट बिन साल जा डिप्लू ए अल मुस्तैक स्कॉलरशिप पिण जनेट ब साल क्लब है सहूलतू मान्यता बस एसी क्लास लैब लाइब्रेरी हॉस्टल पिक एंड ड्रॉप की सहूलत हि इधारो सिंध हुकूमत जी का मंजूर थियल पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का मुकमल तस्लीम थियल अगली रॉफ्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर एंड बाईपास रोड सखर फोन नंबर्स 07635642 खुशखबरी बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताईं वधाई वई आहे। जी हाँ, साल 2026 के लिए दाखिलाऊं जारी आहिन मुख्तलिफ शोबन में BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी BS कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 बजे का शाम 4 बजे ताईं खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन हो अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: जेकबाबाद नवाब शाह क्वेटा एंड चित्राल You're listening to the Hot FM Network.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तो आपने क्या क्या कौन कौन से जानवर देखे रास्ते
1: में? मैंने अभी रास्ते में सारी गायें देखी ना।
0: सारी गायें देखी?
1: सारी गायें देखी।
0: अच्छा जी, अच्छा जी, सबसे पहली बात ये है कि जितने भी हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और कहता कि आप पहले दिन ईद का आपने कौन से जानवर की कुर्बानी की है, तो ये बता सकते हैं। अच्छा, मैं इस चीज को, आपकी बात को थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी बताता जाऊं। ईद उल अज़हा जो है, ये जो कुर्बानी है और कुर्बानी का सिलसिला कहां, क्यों ये चीजें हमारे ऊपर फर्ज हो गई, ये भी क्लियर करके बताना है। क्योंकि कुर्बानी जो है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ये बताना चाहता हूं कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है, कुर्बानी का गोश्त हमें नसीब हो, ठीक है ना। और अक्सर हम ये देखते हैं कुर्बानी के गोश्त को जो रहने वाले कल के लिए एक प्लानिंग की जाती है कि हमें पिकनिक भी जाना है, हमें कबाब बनाने हैं, साथ गैदरिंग करनी है। नथिंग, मैं नहीं समझता हूँ कि हाँ अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहला हक जो है उनका होना चाहिए जो कि एक साहिल की तरह आपके दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं।
1: क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही मेरा भी ये कहना है। क्योंकि जो ईद उल अज़हा है वो एक सेक्रीफाइस का नाम है ना, कि अगर आपके बाप बेटी की कुर्बानी का उसमें जिक्र है तो आपको पता है कि जो दुम्बा है ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक भेजा हुआ तोहफा था, कि मतलब जो है उन्होंने उनकी बेटी की जान बच गई थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो ये चीजें होती हैं, अगर हम ये चीज देखते नहीं है, अभी हम लोग जिन अशोर का नाम है, आपने कोई भी कुर्बानी अगर दिल से की है ना तो वो जरूर कबूल होती है। तो ये चीजें मुझे नहीं मायने रखती कि यार आपने गाय लिया, बकरा लिया, आपने उसने कुर्बानी करके आपने उस तक पहुंचाना है गोश्त जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पूरा साल इंतजार कर रहे होते हैं कि यार गाय कटे, बकरा कटे, हमें गोश्त। तो ये चीज होता है कुर्बानी, ये नहीं है कि आपने जानवर लेके उसको जिबा कर दिया बस। कुर्बानी बड़ी सेक्रीफाइस का नाम है।
0: तो भाई बातों का सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि यहाँ पर सवा 11:30 आप दे सकते हैं। आपको बताना ये है कि आपने गोश्त पहुँचाना पहुँचाना चाहिए ना।
1: तो भाई बिल्कुल
0: भाई जल्दी करें कॉल, ये नोट कर लेंगे। FM से भी हम बिल्कुल लाइव आते और पूरा नेटवर्क सना स्टेम हमें सुन रहा है। सक्कर उपाड़ों से लेकर पूरा हैदराबाद बिल्डअप सराउंडिंग एरिया, तमाम पूरी सिंध जो है हमें सुन रही है। कभी संगे बुधने पर तमाम भी था या उस बुक जेकर तमाम सही सको था अभी जाए तो वही सबसे पहला सदिया है ये उनके लिए। दोस्त जो है हमारी में है, अपने पाकिस्तान है, अपने पूरे

0: पर आ चुका है, लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और अपनी फैमिली के साथ बात कर सकते हैं लाइव। लेकिन जो फीलिंग्स जो फैमिली के बीच में होती है
1: वो दूर से नजर आती है, वो मोबाइल से या ऑनलाइन से कभी भी फीलिंग्स शेयर नहीं होती।

सरकार की तो सरकार ना, मैं तो भाई याद करता कुर्बान कर। आप बात कर रहे हैं जब हम छोटे होते, जब अनमेश्योर होते थे तो हमें बड़ा शौक होता था भाई कुर्बानी आ रही है और कुर्बानी के जानवर देख रहे हैं। और हमारे यानी कि हमारे इलाके के अंदर जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं पर जो है वो गायें ज़िबा हो रही है, कहीं पर बकरे ज़िबा हो रहे हैं और कहीं पर ऊंट जो है वो ज़िबा किया जा रहा है। सुन्नत इब्राहिमी है तो हम हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि सुन्नत इब्राहिमी के अंदर जो है हमने वो तमाम सुन्नत को

0: ओके जी, बिल्कुल प्यारे दोस्तों, जिन्होंने अगर अभी अभी रेडियो ऑन किया है, जीए एफएम रेडियो नेटवर्क, और भाई प्यारे प्यारे दोस्तों को एक बार फिर दिल की गहराइयों से ईद का पहला दिन जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और इस टाइम हमारा प्रोग्राम का नाम है ईद की बातें, और ईद की बातें प्रोग्राम में आरजी शहबाज, आरजी सना आपका पूरा पूरा साथ निभाएंगे पूरा पूरा एक बजे तक। 11:38 हो चुके हैं भाई। इस टाइम सक्कल लाड़काना मोरो मीर प्रकाश मेरापुर कंडियारो और नवाबशाह बदीन ठट्टा सकरण के तमाम प्यारे प्यारे दोस्त हमें सुन रहे हैं। लाइव कॉलिंग नंबर जो है हमारा भाई बड़ा आसान सा है कि अभी आप हमारा नंबर डायल करें, हमसे बात करें 03000113488 पे मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। देखते हैं कि लाइन पर कॉलर कौन कहां से है। अजय भाई कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। चलो भाई कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अगला कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम सिहा साहब, केड़ा हाल है ने?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कह रहे हैं कि थैंक गलेवा नालो शहर है ना
1: आप से चले चाचे ने लार खाने में आना तो ब्रेक होती है ना, कमर से ब्रेक करे खत्म से भी हमारे प्यारो आवाज बताओ आपकी सना से हमारे के ईद मुबारक।
0: बाबा खैर मुबारक, खैर मुबारक। केड़ा हाल है? ठीक ठाक आयो? ईद की है भी गुजरे अलहमदुल्ला सा बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थदड़े थदड़े स्टूडियो में बैठा हूँ, प्रोग्राम बुधो पे ढी थद भी लगे। एसी सोरन ते आया उनके ट्रेवियन ते करे छो तो बुधा के अज ईद जो पे डो तुम गोठ में आयो किथे गुजारो अव
1: लाड़कानो जो शहर हमेशा
0: लाड़कानो खबर अव मुख्य दिल से वणंदो है मां लाड़कने रण आई रो कदी बुधा मां एक सखर हों लाड़काने हों तुझे लाड़काने जो चांडका रोड लाहौरी मोहल्लो पाकिस्तानी चौक सजो घुमियल बकरानी इनशाला हाँ गानो गानो बुधा असा के सना बुधे भी सना थोड़ी नाराज उनके परचाइण एडो दर्द एडो हाल कोई भी न पुछंदो आहे खबर दे
2: जानवर पुछेंगे।
0: अच्छा इयो बुधायो सना के बुधायो जानवर तव नंडो ज़िबा कयो आ या वडो
1: लक्यो आ सावा सावा।
0: अच्छा अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगे साल इंशाल्लाह तव 10000
1: लाड़कार में ब्रेक दिले या खत कराने
0: शादी ले
1: था यार
0: ब्रेक ले दी।
1: हेलो ब्रेक
0: ओके ब्रेक खत्म कराया हूं ठीक है पांच खोर सर ख्याल रखना रहना
1: मेरा दोस्त बुदंदा
0: केड़ा सोटन तमा जा
1: दोस्त दोस्त है।
0: अच्छा दोस्त बुदंदा केड़ा दोस्त है
1: चाचा वफा अब्दुल वहीद जत इशाम चाचा वासिफ अली गिस्ती गैस कटर बराबर
0: ओके। अच्छा जी बिल्कुल प्यारे दोस्तों आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पर कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक ऑफिशियल जो पेज है जनाब वो है GAFM88 के पेज पर आप जाएं उसको सर्च करें और लाइव आ जाएं, हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। अच्छा सना मैं एक अगली बात की तरफ आ चुका हूँ। ये जो ईद है एक ईद उल अज़हा ठीक है, और ईद उल अज़हा के अंदर जो है तकरीबन जो है काफी जो मैं समझता हूँ कि ख़वातीन उनकी जो मसरूफियात है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है,
2: बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये बात है मतलब वो किचन में उनका दिन खत्म हो जाता है ना, जिससे मीठी पे हम लोग कह रहे होते हैं गर्मी है अभी इस गर्मी में वो उनको जाना पसंद से जाएंगी, वो शौक से जाएंगी, उनको पता है कि हमने खाना भी है तो बनाना भी है
0: भाई।
2: तो
0: इस गर्मी के मौसम में मुझे ये बताएं कि सना क्योंकि मैं ज्यादातर जो टारगेट्स करूंगा टारगेट्स नहीं बल्कि जो बातें करूंगा मर्द हजरात की करूंगा, आप खवातीन को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा
2: जी।
0: ये जो बकराईद के अंदर जब कुर्बानी हो रही होती है किसी भी घर की कुर्बानी है सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ अल्लाह पाक की कुर्बानी जो है अल्लाह पाक जो है अपनी बारगाह रिसालत में कबूल मकबूल फरमाए चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। अच्छा

आखिरी तारीख 5 जून 2026 टाइम बताई गई है, लिहाजा देर न करो, ऑनलाइन अप्लाई करो www.apy.bnbwu.edu.pk।

0: खाते हैं उससे काफी सारा आपकी जिस्मानियत को, आपके पेट को नुकसान पहुंच सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये हम लोग खाते हैं, एक शिफा होती है इसके अंदर, लेकिन अगर हम इसको अनलिमिटेड खा लें तो कोई भी चीज अगर आप ज्यादा यूज कर लेते हैं तो वो तो नुकसान का बाइस बन जाती है ना। तो लोग समझ रहे होते हैं हमें दोबारा नहीं मिलेगा, बस खाते जाओ, तो ऐसा नहीं है। इस गोश्त को भी कहते हैं कि आप 2 से 3 दिन आप इसको खाएं, इसके अलावा आप इसको रखें भी ना अपने पास। लेकिन लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, पूरी पूरी गायें काटने के बाद फ्रिज भर लेते हैं, तो ये चीज गलत है ना। आपने क्या करना है, पहला अपना निकालना है, दूसरा रिलेटिव का निकालना है, तीसरा उसका निकालना है जिसको ये चीज जिस पर है कि भाई उसको चाहिए, उसको मिले, जो पूरा साल इंतजार कर रहा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना अपना फ्रिज भर लेते हैं, और जब ये लोग बनवा रहे होते हैं, आपने देखा है आजकल का जो रिवाज है होटल्स में जो है, अभी कहते हैं कि होटल हमारा बंद है जी, यहाँ पर अभी आपको क्या चलेगा कि जो आपने अगर अपना गोश्त लाकर दिया है तो आपने वो ऑर्डर चल रहे होते हैं, तो ये कितना गलत है। देखिए उनकी रोजी तो वो चला रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो क्या करे। आपने गायें काटती हैं, आपने फ्रिज में रख ली, तो ये कुर्बानी तो नहीं हुई। कुर्बानी तो वो होती है जो आपने अल्लाह के राह में पेश किया और आपने उसको लोगों तक बांट दिया, आपने रखी ली अपने लिए, तो ये कौन सी कुर्बानी हुई भाई। तो आप पूरा साल खाते हैं, और बकरे का गोश्त तो रखना भी नहीं चाहिए, एक हफ्ते के बाद इसमें टेस्ट लेस हो जाता है वैसे भी अगर आप देखें। जी, कुर्बानी का गोश्त ये बिल्कुल जायका नहीं छोड़ देता है बिल्कुल एक हफ्ते बाद ना, तो आपने इसको सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर खत्म करना होता है और सबको दे देना होता है।
0: अच्छा भाई, एक जबरदस्त ट्रैक मैंने यहाँ पर प्ले किया है, और ये स्पेशली डेडिकेट करते हैं उनको जो कि जिद्दी होते हैं, हथ मथे क्या से डढ़ोआ। तो भाई जल्दी जल्दी कर प्रोग्राम को लाइक,
1: इसका मतलब आपके पास कुछ जिद्दी लोग मौजूद हैं।
0: हाँ, जिद्दी लोग मौजूद हैं भाई, एक तो मेरे बराबर में बैठे हैं,
1: ओहो,
0: इनको भी डेडिकेट करते हैं।
1: सही है।

0: दोस्तों देखते हैं कि हथ मथे क्या सी डाढ़ो आ पुजी न सकिया सी डाढ़ो आ ऐं ॾिसो था लाइन ते केर असां सां गॾु आॾो आ अभी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम शबाज भाई सना भी क्या हाल है ठीक हो दोनों
2: ठीक आओ बताएं आप कैसे हैं और कौन बात कर रहे हैं जनाब
1: जनाब नौशरफ से आप
2: नौशरफ रोज से सुन रहे हैं वाह
0: कैसे हैं आप इम्तियाज भाई ठीक है खारिज से नौशरफ रोज का मौसम कैसा है
2: ईद कैसे गुजर रही है ये भी बताएं
1: अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी है मौसम बहुत गर्म है
0: देखें जी इसमें भी खुदा पाक की अल्लाह ताला की हिकमत है
2: जी।
0: गर्मी में आम पकते हैं खजूरें खजी पकती है तो भाई उनकी नेमतों का कौन कौन सा हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं भाई अल्लाह पाक ने हमें अपनी नेमतों से नवाजा हुआ है गर्मी में भी एक हिकमत है गर्मी में भी एक सदाकत है। अच्छा गर्मी के मौसम में जो है मैं ये चाहता हूँ कि खास तौर आप जो मासूम बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए
2: बिल्कुल उनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए बिना फालतू घर से बिल्कुल निकालना भी नहीं चाहिए बच्चों को।
0: अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि कुर्बानी का जानवर कौन सा जिबा किया भाई नौशरो फिरोज में
2: जो कि मेरा सवाल है ऐसे ही
1: कर रहे हैं लेकिन
0: पर सना ने रखा हुआ है स्टूडियो में सना ने शॉपर रखा हुआ है स्टूडियो में
2: नहीं नहीं भाई
0: अच्छा अच्छा अब आप खैर आते भाई ठीक है
2: वो तो गोल काट के भाग जाएंगे
0: अलहमदुल्ला पांच खुश रहो ख्याल रखे जो एक गानो पे हले हथ मथे क्या से डाढ़ो आ पुजी न सगिया से डाढ़ो आ
1: जी जी बिल्कुल बुधम क्या
0: ठीक है पांच खुश रहो ख्याल रखना रहना
1: मेहरबानी
0: ओके।

0: सखर के हो
1: तो आवाज भी सखर की है, सुनते रहो
0: GFM 88।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: सखर के हो
1: तो आवाज भी सखर, सुनते रहो
0: GFM 88।

0: TAFM 88 Network, सिंध की आवाज। GA सखर FM 88,
1: सखर की आवाज। सखर के हो
2: तो आवाज भी सखर की है, सुनते रहो
1: TAFM 88।
2: सखर जी फिजाइन में समायल मोहब्बत जो एहसास,
1: TAFM 88,
2: सखर जो आवाज।
1: सखर के हो
2: तो आवाज भी सखर की है, सुनते रहो
1: TAFM 88।

0: काफ़ी गए इससे तो पहले में दोस्त तो मुख्य ममता साहब तो की ये तैयार तो जी को ले मैं होटल रहा समझता है कि भजी न बन जाए।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: टू वुमेन यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई वधाई वई आहे। मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी BS कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी BS केमिस्ट्री BS बायोटेक्नोलॉजी BS साइंस इंग्लिश इस्लामिक स्टडीज BA 4 साला MS

0: बगैर के साइड इफेक्ट जे तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अवां जे शहर सखर में मैदे जा मसला गैस बदहजमी कब्ज खूनी ए बादी बवासीर जनाना बीमार समेत बिन मर्जन जो इलाज करे रहयो आहे। रोजाना सुबह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल। एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप नज़द PSO पेट्रोल पंप रेस कोर्स रोड सखर। राब्ते जे लाइ 03112082600 ऐं 0333714311। ईद उल अज़हा कुर्बानी मोहब्बत ईसार और खुशियों का त्यौहार। यही दिन हमें सिखाता है कि दूसरों की खुशियों में शामिल होना ही असल इबादत है। इसी खूबसूरत मौके पर हम्माद फार्म्स की जानिब से आपको और आपके अहले खाना को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियां मुबारक हों। खालिस मयार खालिस एतमाद खालिस सरसों का ऑयल और खालिस गंदुम का बेहतरीन बीज अब आपकी खिदमत में सिर्फ हम्माद फार्म्स के साथ। इस ईद पर अपनों के साथ खुशियां बांटें, मोहब्बतें बढ़ाएं और सेहतमंद जिंदगी का इंतखाब करें। हम्माद फार्म्स खालिस सरसों का ऑयल और मयारी गंदुम के बीज बनाने वाले। ईद उल अज़हा मुबारक।
1: गर्मी थकावट या दिल जी बेचैनी महसूस कयो पिया हाने परेशान थेने जी जरूरत ना है। पेश आहे शरबत रूहे राहत कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवां के दे ताजगी सुकून ऐ हकीकी राहत दिल जी धड़कन के मुतवाजन रखन गर्मी जे असर के घटाएं ऐ जिस्म के तवाने गण लाए शरबत रूहे राहत रोजानो सिर्फ 1 गिलास ऐ महसूस करियो थकावट का आजादी कीमत सिर्फ 450 रुपया। शरबत रूहे राहत मिलन जो हंद मदनी तिबी दवाखानो रजिस्टर्ड फेज मोहम्मद रोड गोश्त बाजार गरीबाबाद सखर। खमीस ऐं जुमो मिलन जो हंद मदनी तिबी दवाखाना मसान रोड नस लाला शहजादा चौक रोहड़ी। राब्तो 0302-36-26-176। खुशखबरी आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
0: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
1: DHMS सिंध
0: RHMP इस्लामाबाद
1: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना
0: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी
1: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज
0: कमर दर्द
1: अर्कुन निसा
0: जोड़ों का दर्द
1: हेपेटाइटिस
0: वजन की कमी या ज्यादती
1: बे औलादी
0: गंजपन का मुकम्मल इलाज
1: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
0: टाइम
1: हफ्ते से जुमेरात
0: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
1: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक
0: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
1: राब्ते के लिए
0: 0326-22-00-440।
1: खुशखबरी खुशखबरी अमां जे बारे जे बेहतरीन करियर आई रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आई मनियल इधारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग आई फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाए दाखिलाओ जो शानदार ऐलान हाने पंजे बारे के बनायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM आई 5 साल DPD जनेते 2 साल जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV CMW ICNA ऐं खास गाल मुस्तहिक शागिर्दन लाए स्कॉलरशिप्स पिण मौजूद आहिन जने ते 2 सालन जे कोर्सेज में दाखला बिल्कुल फ्री आहे। सहूलतूं ऐं मान्यता असां वट मौजूद आहे स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस AC क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी हॉस्टल ऐं पिक एंड ड्रॉप जी सहूलत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर थियल ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां मुकमल तस्लीम थियल आहे। दाखिला महदूद आहिनि तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर। फोन नंबर्स 0715635642 ऐं 0300831107।
0: सखर के हो
1: तो आवाज भी सखर की है सुनते रहो
0: CFM 88।

0: आमने पर कदें कदें दिल चौंकी आसा काल कयो त पोर कला क में मजो प्रोग्राम में बुधन जो मजो खराब थिंदो आ सर
1: छो
0: काल न दानो मजो प्रोग्राम हली वेंदो आ
1: पो काल न त कर सी प्रोग्राम बुद्धा कयो
0: बिल्कुल जो गलती थी जो ता दे कई बस ता घणे हफ्ते में पो कई 6 महीना थिया सर
1: कोई मसणे अल सी हमके सलामत रखे ईद किए भी गुजरे राणा
0: ईद सर जबरदस्त जबरदस्त
1: अल सी हमके सलामत रखे खुश हो जो पांच दोस्तन सा पांच बच्चन सा गद त छा चवण चाहिंदा लास्ट में वालेकुम सलाम राणा दिल में रख जो ठीक खुश रहो हाँ खिली दिखार तो खर्ची दी ओके वाह वाह ये खिलंदो रहो भाई हमारे जितने भी लिसनर हैं जो हमें कॉल कर रहे होते हैं तो हम कॉल मुख्तसर सी ले रहे होते हैं काफी सारी बातें भी करनी पड़ती हैं और जितने भी हमारे दोस्त हैं अच्छा लाइन पे एक और कॉलर मौजूद है देखते हैं कौन कहाँ से अस्सलाम वालेकुम जन्नत मकाम तज़ुकुल हराम खाने को मिले आपको पछतावा बादाम राणा एडी स्पीड में
2: सेंटीग्रेड
1: का मत गर्मी न थी लगी तक जी नाराज न करे आ के तुम कड़ो जानवर सेवा कयो आहे
0: आसा कोई भी न
1: कोई भी न
2: कोई भी नहीं
1: वाह वाह एकड़ो गानो तो बताए राणा
0: केड़ो गानो
1: सोनो के सुठो गानो बता जी तू जी पान सोनो आई
0: अच्छा ठीक सजन साई मिठा मानो सजन साई मिठा मानो ओ गरीबन जी तुखे पार पिया
1: वाह वाह
2: वाह वाह याद रखे रखे मैं तू
0: न जेके न जी तुखे पार पिया
1: वाह जी वाह माशाल्लाह सी तां के सलामत रखे पानी और सारो ख्याल रखना जानी
0: भाई दोस्तन के ये बात बिना थी तो आप दोस्तन की चिंता से शाबो का हिसाब है अपन ने दिलो साथ में प्रोग्राम दे पे जेके जी के जवाब हम चला हिसाब है जेके भी लिसनर बुद्धि रहे सब की समावत है नोट की तरफा ईद ये बस लग मुबारक हो
1: खैर मुबारक हो ओके अच्छा भाई जल्दी जल्दी प्रोग्राम को लाइक एंड शेयर करें

0: अच्छा जी सना, आपको हमारे आर्टिस्ट तो फेल संजरानी, जो कि पाकिस्तान का बहुत प्यारा नाम, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम या अली मदद।
0: मौला अली मदद। तो फेल भाई के डालें ठीक ठाक है, तबियत से ठीक है? जो पेरे में डालू तुम्हें खूब सारे मुबारक हूँ।
1: आज शहबाज बुखारी के उन संगठन सही सच्चे सही संगत के आज जितनी टीम के अहले वतन आलवे सतम के सिंधी दुनिया के मुसलमान के जेके इन वक्त रेडियो दाज था दिन बहन के तुफैल खान संजरानी के तरफा
2: लखे करोड़े मुबारक। कैसे हैं आप तो फैल संजरानी सर, कैसे हैं आप? और ये बताएं, अब वैसे मुझे अब लग रही है कि ईद हो रही है क्योंकि आपसे बात हो गई है हमारी, तो ये बताएं कैसे गुजर रही है ईद आपकी?
1: आज बिल्कुल ईद है, ईद कुर्बान है जी, कुर्बानी भी कर रहे हैं।
2: आपने क्या की कुर्बानी बच्ची, ये तो बताएं आप, तो आप तो कम अज कम बता दें जी।
1: आप लोगों ने भी कोई कुर्बानी की है या शहबाज भाई कुर्बान हो रहे?
2: अरे ऐसे ऐसे ही समझे अभी तो कुछ। आप बताएं कि आपने क्या कुर्बानी की?
1: जी हमने कुर्बानी की है अल्लाह की राह में, अपनी जुबान की कुर्बानी की है, निगाह की कुर्बानी की है।
2: तो बस हमें अपना मेहमान या आप हमारे मेहमान कब बन रहे हैं ये बताएं
1: जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द, बहुत जल्द।
2: अच्छा तो आप हमारे मेहमान बनेंगे, हमें बनाएंगे अपना मेहमान, ये बताएं।
1: नहीं, हम दोनों तरफ दरवाजे खुले हैं ना।
2: अच्छा जरूर जरूर जरूर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जबरदस्त सॉन्ग थी लास्ट में, वी आई पी सोना
1: साई मुर्शिद साई बस तेरी शहनशाही मैं नौकर मरण का।

0: अच्छा जी बिल्कुल प्यारे दोस्तों, इस टाइम पाकिस्तान सिंध का हमारा बहुत अच्छा नाम हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अजगर अपना अजगर खोसो से भी आपने देखा होगा, वो भी लाइन पर मौजूद थे। और अपना तो फेर खान सजनानी, पाकिस्तान का सिंध का हमारा बहुत प्यारा नाम, आसिफ पहाड़ उर्फ गामो।
1: अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
0: आसिफ भाई साल वाला खुश आयो तब ठीक है
1: जी? जी शुक्र आता बुधा खैर खैरता।
0: हाँ बिल्कुल ठीक है। ईद जो पेन डाढ़ो तमा के खोड़ सारी ईद जी मुबारक हो जन।
1: मेहरबानी खैर मुबारक ता के भी ईद मुबारक जेके मुझो आवाज दिसन ता बुधन ता सबनी मुसलमान के असा ईद लुजा जो खोड़ सा भी मुबारक हो जन।
0: अच्छा गामो भाई इन टाइम पूरी सिंध संगे बुधे भी पूरो हैदराबाद का वठी करे पूरी सिंध संगे बुधे भी बल्कि लाड़कानो भी कनेक्ट है शिकारपुर कंदकोट जिकमाबाद कश्मोर छा मैसेज देन चाहिदो ईद लुजा के हवाले से तवा
1: वो मैसेज यो दीदो तो सबनी के गोश्त जो बबा बूटू में जो चार चार पज बूटू वधिक जो हडा घट हो जन छिछड़ा घट हो जन घर जा भाती जी खाएन उजई कई तो एडो सारो जको 50,000 80,000 जो जानवर वतो तो बबूटू असा के मेहरबानी कर पाखन गोश्त हो जे सबनी के बबा बूटू न जो अल्लाह के मनो यो भाई चिचड़ा आडा पाजे ला रखो गरीब जो हक उनन के मिले और कबे के गोश्त जो कबे के मोहब्बत जो कबे सा प्यार कयो दिल में नफरत खत्म कयो।
0: वाह वाह बिल्कुल। आरजे सना इन जो मुसंगत बैठी है, आरजे सना तवा जी वाली प्रस्तार है माशाल्लाह, तवा जी टिकटॉक वगैरह दिसदी रंदी आ आरजे सना
2: जी। जी बिल्कुल, बताएं आप कैसे हैं और ये बताइए कि आपने कुर्बानी में क्या किया? अभी तो चले ठीक है, एक्सपेंस तो बढ़ गए हैं हर चीज के, लेकिन कुर्बानी तो करनी होती है ना।
1: जी जी
0: आज सना दीदी मुझे लाए गोश्त आए ना है।
1: गोश्त आए बिल्कुल गोश्त आए
2: जी जी।
1: गोश्त के लिए एड्रेस बताओ टीसीएस करे मोकलिया तो पर इधर टेडी टीसीएस ऑफिस ही मोकलू बंद है।
2: ओ दो तीन बार
1: आई एम सॉरी बेबी।
2: ऐसे तो ना करें, ऐसे तो ना।

0: आपको जरूर मैं आपको देसी मुर्गी खिलाऊंगा।
1: नहीं तो पर ईद के बाद आपने क्या करना, दूसरा जानवर काटना पड़ेगा ना।
2: वरी वरी मेहरबानी आसिफ भाई, तमाम डाडू जबरदस्त पैगाम दिनो आहे
0: और बस आई
2: अल्लाह ताला से खुश। ओके अच्छा भी ये थे हमारे साथ सिंध के बड़े प्यारे हमारे दोस्त आसिफ पहोड़ उर्फ गामो मेरे साथ लाइन में मौजूद थे। और यहाँ पर छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो चुका है और कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हम आपको ज्वाइन करेंगे। सुनते रहे सिंध की आवाज, प्रोग्राम ईद की बातें।
3: छा तव्हां समर वेकेशन के फ्रूटफुल बनाइण चाहियो था? छा तव्हां सिर्फ़ ॿिनि महीननि में न्यू स्किल्स सिखी पंहिंजे मुस्तक़बिल खे वधीक बहितर बणाइण चाहियो था? त पोइ परेशान थियण जी का ज़रूरत नाहे। ग्लिमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर पेश करे थो 2 मंथ समर वेकेशन स्पेशल कोर्सेज, जिन में शामिल आहिनि किड्स कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स, ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, 1 ईयर DIT कोर्स, 6 मंथ CIT कोर्स। तजुर्बेकार टीचर्स जी निगरानी में जदीद ए आसान तरीकन सा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सा गड सिखिया, मुनासिब फीस में मयारी तालीम हासिल करियो, पहेंजी समर वेकेशन के कामयाबी ए सिखिया जो बेहतरीन मौको बनायो। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, एडमिशन ओपन नाउ। व्हाट्सएप 03003130, मोबाइल 03000931207 एंड 03013865090। एड्रेस लार टावर, फर्स्ट फ्लोर, 100 फीट रोड, भरसा IBA यूनिवर्सिटी, गेट नंबर 2, सखर। ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लर्न स्किल्स, बिल्ड योर फ्यूचर।
4: यार मछा क्या किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थी।
3: छो भला छा छुआ तोखे, साफ साफ बुधा मसलो छाए।
4: यार एक मसलो हुजे त बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे, न भुख सही लगे थी, आई जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वजन था, आई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही नाया।
3: यार तुझा घणा न, बस हिक ही मसलो आ।
4: हिक इहो की है?
3: हाँ तुझो मैदो खराब आ, छा तो न बुधो आ, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न होंदो त भुख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो ऐं न ताकत मिलंदी।
4: तो पो मां छा कयां?
3: सोलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स, हे कुदरती जुज़न मां तैयार कयल कोर्स, तुझे जिस्म जो हिसो बणजी, तुझे मैदे के बिल्कुल ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो, भुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई, पेट फूकजण ख़तम, सुस्ती ख़तम, जिस्म में ताकत ईंदई।
4: वाह यार वाह जी, गाल बुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
3: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू, अल नूर दवाखाना रोड़ी, आए राब्ते जे लाए नंबर भी अथई 0305580016। शिफाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
5: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट जे तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अमां जे शहर सखर में, मैदे जा मसला, गैस, बदहजमी, कब्ज, खूनी ऐं बादी बवासीर, जनाना बीमारन समेत ॿियनि मर्ज़नि जो इलाज करे रहियो आहे। रोज़ाना सुबुह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताईं जुमो मोकल। एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक, वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप, नज़द PSO पेट्रोल पंप, रेस कोर्स रोड, सखर। राब्ते जे लाइ 03112082600 ऐं 0333714311।
3: ईदुल उज़ा मुबारक, सुन्नते इब्राहिमी, कुर्बानी, मोहबत, ईसार ऐं भाईचारे जे अज़ीम पैगाम सां भरियल ईदुल उज़ा जे हिन पुरमुसरत ऐं बरकतन वारे मौके ते ज़वार मोहम्मद बचल शम्बाणी, अब्दुल रसूल भुट्टो, अयाज भुट्टो, सुलेमान भुट्टो, यामीन भुट्टो, अली हसन भाबो, अली गुल कटवर, रज़ा मोहम्मद मस्तोई, सैयद इमदाद अली शाह, खान मोहम्मद महर, मकसूद न्याज़ी, अली मोहम्मद भुंदरो ऐं अला वराए उलाशारी समेत समूरे आलम इस्लाम पाकिस्तान जी आवाम के दिल जी गहराइन सा ईद उल उज़ा जी लख लख वाधायूं, नेक तमनाओं ऐं दुआओं पेश कजन थियूं। पारा सोना खान मस्तोई, जेक बाबात, राबतो 0304-754-2138।
6: सखर के हो
7: तो आवाज भी सखर की है, सुनते रहो
6: CFM 88। सखर के हो
7: तो आवाज भी सखर की है, सुनते रहो
6: CFM 88।

0: Assalamualaikum. तो जी वेलकम बैक वंस अगेन और एक बार फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपके साथ मौजूद हैं, हमारे पता ही नहीं चलते और अभी भी दो घंटे। तो अभी ये बताइए कि यार अब तो पूरे दो घंटे हो गए हैं और आप लोगों ने तो ऐसे डर के भाग गए जैसे कुछ नहीं चाहिए। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यार ईद उल अजहा है क्या, तो ईद उल अजहा की मैं मायने भी आपको बताती चलूं कि ईद उल अजहा को कुर्बानी की ईद यानी बकरा ईद और बड़ी ईद भी कहा जाता है। ईद उल अजहा जुलहज की 10 तारीख को मनाई जाती है। ये ईद हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की सुन्नत को ताजा रखने के लिए मनाई जाती है। ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाती है। ईद की नमाज के बाद साहिब असात लोग जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अल्लाह की राह में गाय, बैल, ऊंट, बकरी की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला हिस्सा अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा गरीब और मिस्कीनों के लिए होता है। ईद उल अजहा मोहब्बत, भाईचारे और एसारो कुर्बानी का दर्ज देती है। लेकिन हम लोग तो उसको एक शौक बना लिया हमने कि यार हमने जो है ना इसको शोशा करनी है, जानवर को लेके घुमा रहे हैं, लाइटिंग्स में खड़ा करें, ये चीज नहीं है। कुर्बानी एक सेक्रीफाइस का नाम है। आपने कुर्बानी हर चीज से देनी होती है, नियत की कुर्बानी देनी होती है, आपने लोगों की दिल आजारी से रोकने की कुर्बानी देनी होती है। तो ये चीजें कुर्बानी अल्लाह तआला की राह में कुर्बानी अगर आप करते हैं तो जरूर कबूल होती है। हाँ, तो आप दूसरों के लिए भी ईद वाला रखा करें और ईद को अच्छा से गुजारा करें। और मुझे बताया तो है नहीं, तो जी जाइए अकेले अकेले एंजॉय करिए, कलेजी खाइए, पाए खाइए और हमें तो बिल्कुल ना बताइए क्योंकि आपने तो देना है ही नहीं। तो ऐसे ही है ना आज शहबाज, आप मुझे बताएं।
1: जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि बाजू का तो हम अपने लिसनर को मयार तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको इतनी एडवाइस कर सकते हैं कि आप जो है यानी कि अगर किसी ने भी कोई कुर्बानी की है। अच्छा देखिए, जो ये सना जो तल्ख हकीकत है, इस टाइम जो महंगाई चल रही है, महंगाई ने सबके घुटने जो वो टेक दिए हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि इस महंगाई में भी तकरीबन ये आफरीन है कि मार्केट के अंदर जो है जानवर काफी सारा जो है वो बिका भी है
0: जी।
1: और सेल आउट भी हुआ है, लोगों ने लिया भी है। अच्छा, कुछ लोगों की प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है कि जब बंदा आपने कुर्बानी करनी है तो आपने पूरे साल का ना एक बजट बनाया हुआ कि इस साल मैंने कुर्बानी करनी है, उसके लिए आपने कमेटी डाली हुई है या उसके लिए आपने जो है अपना एक प्लान किया हुआ है। देखो कोई भी काम होता है ना, प्लान को सक्सेस करने के लिए तो आपने उसके लिए बेहतर एक प्लानिंग करनी होती है। जब आपकी नीयत साफ होती है, मंजिलें आसानी हो जाती है। तो इस टाइम कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा, मुझसे मिलते भी हैं, क्योंकि हमारी जो फील्ड है इस टाइम तकरीबन जितने भी हमारे कॉस्मेटिक्स वाले दोस्त हैं या अदर जितने भी मार्केट्स के दोस्त हैं, हम जिस यानी कि इस टाइम दौर में चल रहे हैं, ये बिल्कुल महंगाई का दौर है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी फैमिलीज को दे रहे हैं। बिजली के बिल हैं, गैस के बिल है, अखराजात हैं, किराए का घर है, फिर भी अल्लाह की राह में जो है आप हिम्मत करके छोटा या बड़ा जानवर कुर्बान कर रहे हैं,
0: ठीक है।
1: और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अनलिमिटेड है, वो भी कुर्बानियां कर रहे हैं। लेकिन मैं इस टाइम जो बात करने जा रहा हूं, ये करने जा रहा हूं, कुर्बानी छोटी हो चाहे बड़ी हो, जिस अकीदत से आपने उस जानवर को लिया है उसी अकीदत के साथ जो वो कुर्बानी देनी चाहिए। जैसे कि आपने बड़ी अच्छी बात करी कि ये जो सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, देखिए जी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि जब आपको ख्वाब आया कि आपने कोई प्यारी से प्यारी चीज कुर्बान करनी है, आपने अल्लाह की राह में जो है पता नहीं कितने ऊंट जो है काबिल जो है, मैं कहता हूँ 100 से ज्यादा ऊंट कुर्बान की, तो फिर ख्वाब आया कि इससे प्यारी चीज, उससे प्यारी चीज, प्यारी से प्यारी आपने अपना बेटा जो है वो कुर्बानी के लिए तैयार कर दिया कि अल्लाह के राह के अंदर जो है, जब आंखों में पट्टी बांधी गई, पट्टी बांधने के बाद जो है पता पड़ा कि जन्नत से एक दुम्बा आया तो वो जिबा वो कुर्बान
0: जी।
1: तो भाई कुर्बानी के लिए छोटा जानवर हो चाहे बड़ा हो, तो कुर्बानी कुर्बानी होती है। लेकिन कुर्बानी की यकीनन बाकी 3 हिस्से किए जाते हैं, पहला अपना, तीसरा जो है दूसरा जो है रिश्तेदारों का हो, और तीसरा जो हिस्सा होता है उन लोगों का होता है कि जो कि मुस्तहक लोग होते हैं, जो कि जिनके ऊपर हमारे ऊपर जो फर्ज है कि हम उनकी उनको जो है वो कुर्बानी का गोश्त उनको दें, ताकि उनके जो बच्चे होते हैं। अच्छा, हमने कुछ चीजों को ना अपने सुन्नत को और अपने फ्राइज को जो है वो ट्रेंडिंग यानी कि सोशल मीडिया की तरफ लेके चले गए हैं।
0: बिल्कुल ऐसे ही
1: हर चीज को सोशल मीडिया पे लेकर आ चुके हैं और फिर हम उसको फैशन में भी लेकर आ चुके हैं। भाई पहला दिन कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी करेंगे भाई आपने जो है ना मुझे ना रान का गोश्त देना है, बड़ा अच्छा सा देना, अच्छा सा पीस मेरे लिए निकालिएगा,
0: ठीक है।
1: फिर आपने अच्छा दिया, मैंने भी आपको उससे भी अच्छा गोश्त भेज दिया, ठीक है।

0: कुर्बानी का होता है, दूसरा दिन अपने रिश्तेदारों का होता है, तीसरा दिन जो है वो आप अपने एंजॉयमेंट के लिए रखें। जैसे लोग अपना टिक्के बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, तो ये शौक पूरे करने चाहिए। लेकिन जहाँ तक जो बात जो हकीकत वाली यही
1: बिल्कुल मिलेगी ना, तो लोग ऐसा नहीं है।
0: हाँ, ऐसा नहीं है कि सना आपसे नाराज नहीं है, सना बिल्कुल नाराज नहीं है। सना के सामने मैं बैठा हुआ हूँ और सना ने माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्रेस भी पहना हुआ है, लेकिन उनका चेहरा बता रहा है कि सना नाराज क्यों हो सकती है। भाई कॉल करते हैं, सना का मूड ठीक करते हैं, कोई मसला नहीं है। और शापर ये जो खाली आया हुआ, ये शापर खाली वापसी ही जाएगा आपके साथ। भाई लाइन में कॉल में मौजूद है, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, चलो एक जबरदस्त सॉन्ग ने प्ले कर दिया है स्टूडियो का, और ये सॉन्ग स्पेशली डेडिकेट करते हैं जितने भी हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं। अच्छा जी, घर के अंदर जो है एक माहौल है खुशी का, कुर्बानी के गोश्त का। भाई बिरयानियां पक रही हैं और माशाल्लाह कढ़ाइयां पकाई जा रही हैं, व्हाइट रेड माशाल्लाह, आज मजे ही मजे होंगे। भाई इस सॉन्ग स्पेशली उन प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम करते हैं, जितने भी फैमिलीज हमारा प्रोग्राम सुन रही है उनको भी डेडिकेट करते हैं। स्पेशली मुल्कों की प्यारी आवाज मलकू और नादिया हाशमी की प्यारी आवाज़।

0: प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
1: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
0: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
1: कमर दर्द,
0: अर्कुन निसा,
1: जोड़ों का दर्द,
0: हेपेटाइटिस,
1: वजन की कमी या ज्यादती,
0: बे औलादी,
1: गंजपन का मुकम्मल इलाज
0: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
1: टाइम
0: हफ्ते से जुमेरात
1: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
0: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
1: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
0: राब्ते के लिए
1: 03262200440।
0: खुशखबरी, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई वधाई वई है। जी हाँ, साल 2026 के लिए दाखिलाओं जारी हैं मुख्तलिफ शोबन में। BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिक्स, रियाजी, शुमारियात जैसा अहम प्रोग्राम्स, ह्यूमन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS केमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, BEd 4 साला, MS एजुकेशन 2 साला। मुस्तहक शागिर्दियाण लाइ स्कॉलरशिप भी मौजूद। एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइन, घट में घट 50% मार्कू इंटरमीडिएट लाजमी, उम्र की हद 35 साल। फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई बताई गई है, लिहाजा देर न करो, ऑनलाइन अप्लाई करो www.apy.bnbw.edu.pk। गर्मी, थकावट या दिल की बेचैनी महसूस कर पाया, हाने परेशान थियण की जरूरत ना है। पेश है शरबत रूहे राहत, कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवा के दे ताजगी, सुकून ऐं हकीकी राहत। दिल की धड़के घटाए के लाइ शरबत रूह महसूस कर, सिर्फ लण जो हंध मदनी तिबी दवाखानो रजिस्टर्ड, फेज मोहम्मद रोड, गोश्त बाजार, गरीबाबाद सखर। खमीस ऐं जुमो मिलण जो हंध मदनी तिबी दवाखाना, मसान रोड नज़्द लाला शहजादा चौक रोहड़ी। राब्तो 03026 36 176।

0: अच्छा जी बिल्कुल प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 12:51 हो चुके हैं सना, और वक्त गुजर गया पता ही नहीं पड़ा
1: ही नहीं।
0: और कहते ना कि वक्त की घड़ी है गोल घूम रही है, कहाँ आके रुक जाए पता ही नहीं पड़ेगा। तो भाई ये वक्त की घड़ी है, घूम रही है हमारे बाद, फिर कोई और आ जाएगा वो आपके साथ, क्योंकि आपने पूरा नेटवर्क हमारा 11 बजे तक सुन रहे हैं, और 11 बजे तक अच्छे अच्छे आरजे कोयल जैसी आवाज वाले आपको सुनने को मिलेंगे। और 12:51 हो चुका है, बल्कि 52 मिनट हो चुके हैं, तो एक आधी कॉल लीजिए, हो सकते हैं नाराज ना रहे। देखते हैं कि लाइन पर कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर
0: जी, अदा कह रहे हैं कि था कॉल किया मीठा
2: दानिश सर का, सैयद इमदाद सर,
0: दानिश
2: सैयद इमदाद अली,
0: सैयद इमदाद अली शाह। लगे तो गर्मी लगी हुई है शाह साहब
2: जी, यहाँ के समझ में आते
0: केड़ा हाल है, ठीक आयो
2: दुआई लगी पहना ला रखा रहा मना वाली दुआ करते।
0: अल्हम्दुलिल्लाह मां बिल्कुल ठीक है, ईद की है पे गुजरे
2: और
0: यहाँ सिलो सिलो ईद जो जानवर केड़ो सी बाकी होता है
2: साईं हने वक्त पे मां कुर्बानी को ने कहया बाकी ऐसा मैंने बड़ी प्यान में कुर्बानी के मैं हने वक्त कुर्बान ना कहया।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, बड़ी बड़ी मेहरबानी। यो बतायो के लास्ट में छा चवण चाहिदा, मैसेज केड़ो रहने चाहिदा दोस्तन के।
2: लास्ट में मैसेज ये दिंदा कि ता जके ईदा इंदी हो ना असन ला इंदी हो ना ए रसलन के परचाण ला इंदी हो ना असा ही वदो दिन जको आए त ईद जो असा सेलिब्रेट के हूं सुठी नमूने सा ए पने सुठन दोस्तन सा सुठी जगह ते घुमो।
0: वेरी गुड, बड़ी बात शाह अल्लाह सी हमके सलामत रखे। गानो एकडो लास्ट में एडो गानो आप आहे मिशप सॉन्ग आ पर सॉन्ग आहे त ठीक आ दोस्तन के।
2: बाजी साहब बाजी
0: अच्छी हुई। हां गलो
1: हाय कैसे हैं आप भी जी?
2: आप प्रोग्राम
1: जी जी संडे संडे होती हूँ, आप मुझसे बात करने आते ही नहीं है, अब क्या बोलूँ आपको
2: नहीं लाइव कॉल लेती है तो मैं
1: नहीं लाइव कॉल नहीं लेती, आप एसएमएस किया करें मुझे,
0: आप मुझसे बात करने नहीं आते, शहर चले मजी नहीं वा
1: और
0: ठीक है। अच्छा जी बिल्कुल मुझे तो देख
2: सलाम
0: जी रहा कह रहे हैं कि था कॉल किया अजीब बुला यादी बुला
2: हबी बुला हबी बुला।
0: अच्छा हबी बुला केड़ा हाल ठीक है हबी बुला खैर मुबारक हबी बुला जो जात भागुर पए या बे खैरात बे ठीक है गोठ दे मन मा लगो पियो हां
2: खैर सही खुश आओ
0: ईद नमाज पढ़ी
2: हां सही ईद नमाज पढ़ी गोठ तो
0: वेरी गुड यार।

0: गोश्त खाधव?
1: जी जी हाँ खाधो साईं।
0: वेरी गुड। पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखिजे राणा।
1: हा साईं मां आयो कलाम ॿुधायो हिन जो पहिरां फ़क़ीर जो।
0: हा बिस्मिल्लाह ॿुधायो।
1: इहो इहा मिटी हुकुम करे थी हज़ार हुकुम करे थी हज़ार इहा मिटी हुकुम करे थी हज़ार।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। अल्लाह से अवां के सलामत रखे, खुश रहो, ठीक है, पांजो ख्याल रखो। अच्छा भाई, अभी आपसे मुकम्मल इजाजत लेने का टाइम आ चुका है, और एक दफा फिर जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है, हमारा पूरा नेटवर्क सिंध का सबसे बड़ा नेटवर्क GAFM नेटवर्क लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ईद की बात है। पब्लिक मैसेज मैं जाते जाते ये देना चाहता हूँ कि नाखून अगर बड़े हो जाते हैं हमारी उंगलियों के, तो नाखूनों को काटा जाता है, उंगलियों को नहीं। गलत फहमियां अगर पैदा हो जाएं रिश्तों में, प्यार मोहब्बत में, तो गलत फहमियों को दूर किया जाता है, रिश्तों को नहीं।
2: बिल्कुल।
0: किसी को मछली देने की बजाय उसे मछली पकड़ने का तरीका सिखा दिया जाए, ताकि वो किसी के आगे हाथ न फैलाए।
2: बिल्कुल।
0: तो भाई आज ईद का पहला दिन है, और ईद के पहले दिन काफी सारी जो चीजें हैं उनको नोट करना पड़ते ही हैं। जैसे कि मैं हमने आपको इस प्रोग्राम के दो घंटों के अंदर हमने चीजों को नोट करवाया है। एक तो तीन हिस्से कुर्बानी के हैं, रिश्तेदार, आप खुद और गरीब गुरबा जितने भी मुस्तहिक हैं। ठीक है, अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो आप उन लोगों का मदद करें। तीसरे नंबर पर जो बात ये की जा रही है कि आप अपनी जात से किसी को तकलीफ न दें,
2: ना पहुंचाएं। जी,
0: आप
2: किसी कुर्बानी यही है।
0: हाँ, आप किसी की खुशी की वजह बन जाएं, किसी की रोने की या किसी की तकलीफ की वजह ना बने। ठीक है, और खुश रहा करें, हैप्पी रहा करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें आरजे सना आरजे शहबाज बुखारी को, और हमारी फाइट अभी बाकी चलेगी कि गोश्त सबसे पहले कौन किसके घर देने के लिए जाएगा, वो तो वक्त बताएगा। तो भाई पूरे नेटवर्क पे जितने भी हमारे छोटे बड़े तमाम जितने भी दोस्त सुन रहे हैं, टेढ़े मेढ़े दांतों वाले बच्चे सुन रहे हैं, तो गोश्त खाते वक्त भी आप अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अनलिमिट नहीं खाना, कि उससे क्या होता है कि पेट खराब हो जाता है। क्या ख्याल है
2: डॉक्टर शहबाज? तो ये डॉक्टर शहबाज हमारे पास बैठे हैं, हर चीज शहबाज ये होंगे नहीं जो आपको इलाज कर पाए, ऐसे ही ना।
0: तो भाई मैं अक्सर ये चीजें सामने आती है ना, क्या हुआ भाई, बदा हजमा हो गया भाई, क्या हुआ भाई, खाना ज्यादा खा लिया, गोश्त
2: खुलना पड़ेगा ना फिर।
0: तो भाई हम नहीं, हम तो एडवाइस ही दे सकते हैं। तो अच्छा, मैं अपनी जाती बात करें, कुर्बानी का गोश्त जो है ना, मैं बहुत कम खाता हूँ।
2: ये मेरे साथ भी ऐसा ही है वैसे,
0: क्योंकि वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। यानी कि लिमिट्स में खा लूंगा, लेकिन कभी मुझे ये याद नहीं है कि मैंने अनलिमिट खाया हो, या तो मैं खाऊंगा नहीं, या तो खाऊंगा तो लिमिट्स के खाऊं। वैसे खाते हैं, समझना नहीं है।
2: हाँ, बिल्कुल।
0: लेकिन खास तो जो कुर्बानी का गोश्त होता है, यानी कि तबीयतन जो है, या तो तबीयत खराब हो जाएगी, यानी कि हालांकि ये सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी है, तो यानी कि अनलिमिट नहीं खाना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए।
2: हाँ, ये मतलब लोग हविस में खा लेते हैं, यार हमने खाना है, मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है।
0: सेहत का ख्याल रखिए,
2: सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि हर जगह हर चीज पास कहाँ होंगे आपको इलाज करने।
0: अच्छा, एक चीज जो है देख देख कर दिल भी भर जाता है, पता है आपको?
2: लोगों का नहीं भरता भाई,
0: नहीं भरता,
2: नहीं भरता
0: भाई। अपनों का, अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। दिल तो हमारा भी नहीं भर रहा कि प्रोग्राम में छोड़ के जाएं, क्योंकि हमारे बाद और भी आरजेज हैं जो कि इंतजार करेंगे, हमारे प्रोग्राम का टाइम हुआ जाएगा और हम लाइव आएंगे। अपनों का, अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। एक जबरदस्त सॉन्ग प्ले कर दिया है स्पेशली अपने प्यारे दोस्तों के नाम, और अपनों का, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। कल फिर आपके साथ निभाने के लिए आ जाएंगे,
2: और इस पे हम दोनों को आपने याद रखना है, आरजे शहबाज और आरजे सना को जरूर याद रखना है,
0: जरूर
2: अपनी दुआ में, क्योंकि बड़ी ईद है, तो बड़ी दुआ के साथ हम सबको याद रखिए। हमारी दुआओं में भी आप लोग शामिल हैं हमेशा की तरह।
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद अल्लाह वाहिद।

जहां हर दिल खुशियों से लबरेज है, जहां कुर्बानी का जज्बा मोहब्बत में ढलता है, वहीं हम GFM की पूरी टीम आपको और आपके प्यारों को ईद उल अजहा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। दुआ है कि ये ईद आपके लिए खुशियों, रहमतों और बरकतों का पैगाम लेकर आए। कुर्बानी का जज्बा हम सबको ईसार, मोहब्बत और भाईचारे का सबक दे। GFM के साथ रहिए, जहां खुशियां, बातें और मौसीकी आपका साथ निभाती हैं। ईद मुबारक। कुर्बानी के जज्बे के साथ ईद मनाएं, सबको गले लगाएं। बड़ी ईद की बड़ी मुबारक। जीए सक्कर FM 88 की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद उल अजहा मुबारक हो।

0: जहां हर दिल खुशियों से लबरेज है, जहां कुर्बानी का जज्बा मोहब्बत में ढलता है, वहीं हम DAFM की पूरी टीम आपको और आपके प्यारों को ईद उल अजहा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। दुआ है कि ये ईद लिए खुशियों, रहमतों और बरकतों का पैगाम लेकर आए। कुर्बानी का जज्बा हम सबको ईसार, मोहब्बत और भाईचारे का सबक दे। DAFM के साथ रहिए, जहां खुशियां, बातें और मौसीकी आपका साथ निभाती है। ईद मुबारक। खैगम सखर में फार्म 5 जून 2000 बधाई हां सागिये जिलाए शोभन में BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई फिजिक्स, रियाजी ए शुमारिया जेड़ा अहम प्रोग्राम्स, ह्यूमन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS केमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, BA 4 साला, MS एजुकेशन 2 साला, मुस्तैक शागिर्दियाण लाइ स्कॉलरशिप भी मौजूद। एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइन घट में घट 50% मार्कू इंटरमीडिएट लाजमी, उम्र की हद 35 साल, फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई बताई गई है, लिहाजा देर न करो, ऑनलाइन अप्लाई करो www.apy.bnbw.edu.pk। खुशखबरी, खुशखबरी अमां जे बारे जे बेहतरीन करियर आई रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आई मनियल इधारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग आई फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाए दाखिलों जो शानदार ऐलान हाने पंजे बारे के बनायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल 4 साल जा डिग्री 5 साल DPD जने ते 2 साल जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV CMW ICNA खास गाल मुस्तैक शागिर्दन लाए स्कॉलरशिप्स पिण मौजूद आहिन जने ते 2 साल जे कोर्सेज में दाखला बिल्कुल फ्री आहे सहूलतू आई मनिता असां वट मौजूद आहे स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस AC क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी हॉस्टल आई पिक एंड ड्रॉप जी सहूलत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर थियल आई पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का मुकमल तस्लीम थियल आहे दाखला महदूद आहिन तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर फोन नंबर्स 07156356642
1: IN 03008311207। होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट जे तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अमां जे शहर सखर में मेदे जा मसला गैस बदहजमी कब्ज खूनी ऐं बादी बवासीर जनाना बीमार समेत बिन मर्जन जो इलाज करे रहयो आहे रोजाना सुबह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताईं जुमो मोकल एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप नज़द PSO पेट्रोल पंप रेस कोर्स रोड सखर राप्ते जिलाए 03112082600 आई 0333714311। ईद उल अजहा कुर्बानी मोहब्बत ईसार और खुशियों का त्यौहार यही दिन हमें सिखाता है कि दूसरों की खुशियों में शामिल होना ही असल इबादत है इसी खूबसूरत मौके पर हम मात फार्म्स की जानिब से आपको और आपके अहले खाना को दिल की गहराइयों से ईद उल अजहा की ढेरों खुशियां मुबारक हों खालिस मयार खालिस एतमाद खालिस सरसों का ऑयल

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: तो खूबसूरती की बातें करेंगे और सदन है हमारी तरफ से अकेली कैसे आ गई है तो ये आप लोगों को बताते चले कि अकेली तो खैर मैं नहीं हूँ। ऐसा हो सकता है कभी कि भाई ईद का प्रोग्राम हो और आपकी सदरा अकेली आए, और जो लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो लोग स्पेशली इंतजार करते हैं कि अगर ईद का दिन हो और हमारे रिजवान साहब हमारे साथ रिजवान साहब भी मौजूद होने चाहिए प्रोग्राम में, ताकि प्रोग्राम में चार चांद लग जाए। तो जो लोग रिजवान साहब को याद करते हैं,
1: चांद होते हैं वो महीने के चौथे महीने में आते होंगे, लेकिन मैं तो साल में एक मरतबा कुर्बानी वाली ईद पे हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हजरात, तव्हां खे कुर्बानी जूं बकरा ईद जूं कड़ो कड़ूं मुबारकूं हुजनि। मां लॻो पियो हुयसि, मां चयो शायरी वायरी कढी वठां, को चैट जीपीटी खां वठां, पर हाणे हिकड़ी पुराणी घिसियल पिटियल
0: शायरी
1: न कोटेशन आहे, चओ जेको बि चओ, ईद पर सिर्फ़ जानवर ई कुर्बान मत करें, अपनी ज़िद अना हसद और बदगुमानी को बि कुर्बान कीजिए, दिल साफ करें ताकि कुर्बानियां
0: कबूल हो जाए। ये तो बिल्कुल आपने
1: एक और भी डायलॉग मिला है, ईद मुबारक जो नाराज हैं उनको भी, जो दूर हैं उनको भी, जो बात नहीं करना चाहते उनको भी, जो ताल्लुक नहीं रखना चाहते उनको भी, सबको दिल ईद मुबारक।
0: ये तो मतलब वो वाली बात हो गई कि सबको आपने बस ईद मुबारक बोल दिया। अब पूरे प्रोग्राम में जो है वो

0: बस बाकी जो लोग हैं वो आपको बोलेंगे. वैसे आप ऐसा करिए कि माइक जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी आप अपनी तरफ का
1: आप जो है वो अब सही है. ठीक है ख़वातीन आज़ाद हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे ईद जो ईद उल अज़हा जूं खोड़ सारियूं लख लख मुबारकूं हुजनि. जी एफ एम नेटवर्क तां तव्हां असांजो ख़ुसूसी प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं दिस प्रोग्राम इज़ स्पॉन्सर्ड बाए
0: वाइट
1: एच एंड डी स्किन वाइट एच ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम. तो आगे चल के हम इसका नाम वाइट आर भी रखेंगे क्योंकि मैं ये क्रीम इस्तेमाल करने जा रहा हूँ तो वाइट आर हो जाएगा वाइट रिजवान. अल्लाह करे वो दिन
0: ऐसा हो जाए सारे लोग फिर अपने नाम से लगा लेंगे कि जिनको बस वाइट लगाएंगे फिर अपना नाम आगे से जोड़ेंगे.
1: सारे लोग नहीं ना सारे लोग तो सेलिब्रिटी नहीं होते ना रिजवान नहीं होते
0: वो तो सही बात है लेकिन लगाएंगे तो आप
1: तो आज कैसे बकरा ईद है मैं लगाता हूँ देखें काफी
0: अभी तो खैर मुझे लग रहा है आपने नहीं लगाया है
1: बस मैं आज से लगाना शुरू
0: चलिए आज से लगाएं आप स्टार्ट कीजिएगा जरूर से. और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ ब्यूटी क्रीम नहीं है भाई इनके और भी मजीद बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. ईद के मैंने तो पहले भी लिसनर्स को कहा था कि जब ईद का ये स्पेशल तैयार होंगे तो ज्यादातर ऐसा जो लड़कियां नहीं कर पाती हैं गर्मी के मौसम में तो वाइट एश वालों की वाइट एश लवली क्रीम भी मौजूद है जो कि फेयरनेस का काम करती है. आप मेकअप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं लड़के लड़कियां सभी लगाएंगे और ये लड़के भी लगाएंगे और लड़कियां भी लगाएंगे मर्द हज़रात और ख़वातीन भी लगाएंगे. चलें वो वाइट एश की लवली क्रीम आप सारे लोग लगाइएगा बहुत एक जबरदस्त प्रोडक्ट
1: है. लड़का कहा करो मुझे अच्छा लगता है.
0: जी जी बिल्कुल और जो लोग आपको अंकल बुलाते फिर
1: तो खुदा जी का उन्हें छड़ाई थी दी वो छा चवां कल अंब पे वठा बुधाए मैं कल अंब पे वठा मार्केट में तो एकड़े हमरा के चई मां तो पांजे चुंडिया पे उन हमरा के चई दवाई यो तोखे छा खपे तो चई तो पेरियो चाचे के खान दे अलायो कसम सही तो बुधाए सिदरा पोते डठम बाबे जेडो हमरा हो मुझे तो अंदर सड़ियो रत सड़ी रही
0: ये मानू कंदा अक्सर 5 मिनट दिसना मां जो
1: दिल पे चई पी त हाने ये अंब बटे ये हणास मुंह में
0: राम करे बतव. चलो सब जगह भी लिसनर्स के बुधन प्यार एकड़ी गाल बुधी सडो बाबा रिजवान साहब के दा चाचा न चंदा कयो ये सा नंढड़ो छोकरो आए साईं ता सब
1: गानो बानो बुधरायो को हाने एडो अच्छा पंजे सामने के बुधाई दा हलो ता मुझे ख्याल में कमेंट्स भी आएन ओडे आएन कमेंट्स आएन कमेंट्स भी आएन पैनल ते टेक्स्ट मैसेजेस भी आएन लाइव कॉल्स भी वक्त इलाही महदूद जल्दी
0: हो जाए. चलो गानों बुधंदी पर को सवाल वगैरह टॉपिक कुछ हों प्रोग्राम में नहीं
1: कचहरी क्यों मैं एतो बुधाई अज खैर सिदरा ईद उल अज़हा है यो असो को सकाफती दिहाड़ो ना है यो असो मजहबी त्योहार आ मजहबी जो है सो ढी आ ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो इन इवेंट जो हज जो कुर्बानी जो तमाम गहरो ताल्लुक है. असा पैं सामिन से अज इन ईद के इन इवेंट के हवाले से हाल अहिवाल भी कंदासी कुछ सवाल भी बुधाईंदी पुछंदी कुछ जवाब भी असा दींदी सही है त मन असा हल्की फुल्की इन ईद के हवाले से पे कचहरी कंदी सुभाणे खां अॼु शाम खां गोश्त वोश्त खाइण जो सिलसिलो शुरू थी वेंदो इनशा ताला.
0: चलो सुठो हिकिड़ो सॉन्ग आहे असांजी
1: मथे में सूर विझी छॾियो
0: ईद वारो प्रोग्राम त अहिड़ो हूंदो आहे जेको माण्हुनि खे इंतज़ारु हूंदो आहे त रिज़वान साहब आएंगे और दोनों साथ में प्रोग्राम करेंगे. कुझु लोगों को अच्छा लॻंदो आहे कुझु लोगों को शायदि अच्छा नहीं लॻंदा लेकिन कोई बात नहीं हम तो करेंगे. चलिए ये गाना सुनिए आप तमाम लोगों के नाम और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं. आप हमें कमेंट कीजिए पैनल पर मैसेज कीजिए कॉल्स भी आप लोगों की कुछ देर बाद हम जो है ना वो पिक करेंगे. और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ईद की महफिल और स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए.

0: ओके जी, सो ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक. और यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं और खैर मुबारक, खैर मुबारक अथव. अच्छा, तुम्हारा कोई सवाल पूछना है लिसनर्स का?
1: शामिल करो ये
0: कमेंट्स मैसेजेस शामिल कयो. अच्छा हाँ, बिल्कुल बिस्मिल्लाह
1: शामिल कयो.
0: जी
1: हाँ, मां ओ तो सरप्राइज न दींदा, गाल मां गाल निकल दिया को याद है के चाचा थी आए वाने जिस
0: पाणी आणे न दिसो. इया गाल तां जी गलत आ न, याद ता पाण इन गाल के कबूल न कयो. अगर कयो था तो पोए वरी
1: मजाक.
0: हां चलो मजाक भले कयो. नूर संदनियो भास से गड मौजूद आन मोहब्बतू प्यारे भाजू और चाचा खाली जुने जो मेरे साथ मौजूद है. तवा की बीदे जू खोड सारी मुबारक हो जन. और नखा अलावा हिदायतुल अहमदानी हमारे साथी, वालेकुम असलाम. और निदड़ी हमारे साथी, वालेकुम असलाम. ईद मुबारक हो, कहती है ईद मुबारक दोनों को.
1: खैर मुबारक निदड़ी.
0: और ये किशोर भाई
1: निदड़ी आला, 8-10 निदड़ियों आए ना
0: बहन न ट्रेन ट्रेन निदड़ी वन वाके
1: निदड़ी वन निदड़ी टू निदड़ी थ्री
0: ये निदड़ी वन ना
1: जी
0: हाँ नंबर वन ना. उन खा अलावा किशोर भाई हेलो. और हेन जी क्या कहते हैं ईद जे नी है भी न अज तो खैर ईद जो पेरियो नहीं आए ना. गोश्त वोश्त वाला कम जगह ना सुभाने का स्टार्ट थियण वाला है.
1: सुभाने थेलो बाचको खणंदा से
0: वठंदा से या विरहाईंदा
1: से अल्लाह से विरहाणा तव्हां बि माशाल्लाह क़ुरान शरीफ़ माशाल्लाह रेगुलरली पढ़ंदा आहियो ऐं तर्जुमे सां पढ़ंदा आहियो. सो अल्लाह साईं पंहिंजे क़ुरान पाक में शुक्र करण वारे खे एतिरो पसंदि कयो आहे जो हुनखे वधीक नवाज़ण जा वाइदा कया अथई, ऐं वरी नाशुक्रे खे ओतिरो ई नापसंदि कयो आहे अल्लाह साईं. तो केतिरनि ई मौक़नि ते कॾहिं अहिड़े क़िस्म जो वरी मां चवंदो आहियां प्रोग्राम डिज़ाइन कजे जंहिंमें हिन क़िस्म जी शयुनि खे असां गॾिजी करे डिस्कस कयूं, कुझु मज़हब खे बि सम्झूं, कुझु जेको आहे सो पंहिंजे हे जेके असांजा मज़हबी त्योहार आहिनि हिनखे बि सम्झूं. अॼोके प्रोग्राम में हिन त्योहार खे थोरो गहराई सां सम्झण जी कोशिशि कंदासीं, पर लाइव कॉलर्स खां मां नंढा नंढा सवाल पुछंदुमि लाइव कॉल ते. सही आहे, हिन ईद जे हवाले सां, ईद उल अज़हा जे हवाले सां.
0: हा कॉमेंट्स खे पढ़ूं था, लेकिन टाइम थियो आहे त असां शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं. एतिरो जल्दी ब्रेक,
1: माण्हू इन करे दाऊं कंदा आहिनि त
0: कमर्शियल कॉफी आहे. चलो ब्रेक वठंदासीं, हिन खां पोइ जल्दी वापसी तव्हां मोटी जो तव्हां हिते असां सां गॾु मौजूद. प्रोग्राम में खोड़ सारियूं ॿुधव त ॻाल्हियूं कंदासीं. हुन खां अलावा अगरि तव्हां असां सां ज्वाइन थियण चाहियो था त तव्हां असांखे मैसेज कयो, कॉमेंट कयो, पोस्ट खे लाइक शेयर कयो, ऐं तव्हांजो कुझु देर बाद कॉल्स वठूं था. स्टे कनेक्टेड, ॿुधंदा रहो प्रोग्राम ईद की महफ़िल.
2: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास. चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम. चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक. सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाएं साफ, निखरी और गोरी रंगत. लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना. आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें. मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092. बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो.

0: खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। ये दिन है अपनों के साथ खुशियां मनाने का। इसी खुशी में स्पेशल ब्यूटी फेयरनेस क्रीम बनाने वालों की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक फ्रॉम द हाउस ऑफ स्पेशलिस्ट कॉस्मेटिक्स।
1: खबरी कराची जी माहिर डॉक्टर अनुषा कुमारी फिजियोथेरेपिस्ट हाने अवां जी पेंजी शहर लाड़काने में मुकम्मल प्रोफेशनल फिजिकल रिहेबिलिटेशन मशकू ए जदीद तरीके जो इलाज कर रही है जैमें रीढ़ की हड्डी हडन ए जोड़न ए फ्रैक्चर जा मसला कुल्हे जो जमी वन हथन ए पेरन जो सुन थियण सीपी चाइल्ड स्पोर्ट्स इंजरी पठन में छिकताण मोहरन जा मसला कंध मथे गोडन ए चेल जो सूर लकवा ए मोच फालिज यानी अधरंगो ए चेस्ट फिजियोथेरेपी जो इलाज कयो वञे थो। याद रखंदा डॉक्टर अनुषा कुमारी फिजियोथेरेपी में मरीजन लाइ फीस में 50% रियायत जो ऐलान कयो आहे जी गरीब तोड़े अमीर इन सहूलत मां फायदो हासिल करे सकन। एड्रेस कराची मेडिकल सेंटर लग घिंटी फाटक लाड़काणो। टाइम रोजाना शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं। राबते ऐं मालूमात जे लाइ मोबाइल नंबर 0310-3435-298।
2: मलूक ओ
3: मलूक खैर दाए नूरी
2: जल्दी कर जल्दी साल वांगुर हिन साल भी कप्तान हाइब्रिड सारिन जो बिज वठी अचो त जिए हिन साल भी चजी पैदावार हासिल करियूं।
3: कप्तान हाइब्रिड सारिन जो बिज अवां के दे 125 खां 140 मण फी एकड़ ताईं पैदावार जंहिं जो ताकतवर बिज बीमारियुन खां रहे महफूज। आम बिज जे मुकाबले में कप्तान हाइब्रिड बिज सां मिले जजी पैदावार ऐं वॾो बूड़ो।
2: साईं चइबो त हिन साल बि मुंहिंजा सोना कंगण पका।
3: हा हा छो न। मिडलैंड इंटरप्राइजेज जो कप्तान हाइब्रिड सारिन जो बिज पंहिंजे वेझे कप्तान फ्रेंचाइज़ तां हासिल करियो।
2: राबते ऐं मालूमात जे लाइ
3: RSM लाड़काणो
2: सजाद हुसैन बुघियो। मोबाइल नंबर 0312-1344-205।
3: एड्रेस नवीद फर्टिलाइजर पुरानी अनाज मंडी लाड़काणो।
4: यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा अब तो सारे जहाँ में होगा।
5: क्या होगा
4: हर घर में बकरा बकरा।
5: अस्सलाम वालेकुम सामईन, मैं हूं आपका अपना रिजवान अल हक
4: और मैं हूं आपकी अपनी आरजे सिद्रा मुस्कान।
5: जी लाड़काना

0: खुशखबरी, डॉक्टर अफजल हुसैन भुट्टो कंसल्टेंट आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन MBBS जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची ऐं FCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स कराची। माहिर अमराज हडे जा नवा ऐं पुराणा फ्रैक्चर, हडे जो कैंसर, हडे जो नासूर, जोड़न जो पुराणो मूज़ी मर्ज़, चेल जो सूर, बारन में हडे ऐं जोड़ जा मसाला, वॾी उमिर में हडन ऐं जोड़न जा मसाला, पैदाइशी टिड़ियल पेर, रांदियुनि में लॻल धक, जोड़न ऐं मास में गंद भरिजी वञणु, जंघ ऐं बांह जा कैंसर, सुकी वाई, आर्थराइटिस, टुटल हॾा ऐं ॿियनि हॾनि जे बीमारियुनि जो माहिर सर्जन डॉक्टर अफजल हुसैन भुट्टो कंसल्टेंट आर्थोपेडिक ऐं ट्रामा सर्जन। टाइम रोज़ानो मंझंदि जो 3 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं ऐं आचर जे ॾींहुं सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 4 बजे ताईं। एड्रेस नेशनल मेडिकल सेंटर, लेडीज जेल रोड, लाड़काणो। राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 0301295-0036।
1: अदी, छा ॻाल्हि आहे, एॾो खुश पई नज़र अची।
2: हा भेण, बस ख़बर ई कुझु अहिड़ी आहे, हाणे असां औरतूं बि पंहिंजी तकलीफ़ आसानीअ सां ॿुधाए सघूं थियूं।
0: जी हा, सिंध जी पहिरीं फीमेल यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रीना साजिद अबसी, जंहिं पंहिंजी FCPS यूरोलॉजी जी डिग्री मां लखे रुपया कमाइण बदिरां लाड़काणे में औरतुनि लाइ फ्री अस्पताल शुरू कई आहे, जिते बुकिन जी बीमारियुनि मसलनि पेशाब में रुकावट, जलन ऐं साड़ो, ज़ख़्म, बेओलादी, बुकी ऐं मसाने जी नालीअ में पथरी जो ऑपरेशन जदीद लेज़र ऐं चीरे वसीले करे थी। याद रखंदा डॉक्टर साहिबा, चकास, बुकिन जो अल्ट्रासाउंड ऐं ऑपरेशन बिल्कुल मुफ़्त कंदियूं आहिनि। बस कमरे ऐं दवा जो थोरो ख़र्च मरीज़ पाण भरींदा। ऐं हा, एक्स-रे, IVP ऐं CT स्कैन पिणु अधु पैसनि में कराए ॾिए थी। पेशावराना डॉक्टरनि ॾांहुं मरीज़ खणी वेंदड़नि जे भुलाइण ते तवजो न ॾियो। एड्रेस अल निसा मेडिकल सेंटर, नद सिटी चौक, सचल कॉलोनी, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां राति जो 9 बजे ताईं ऐं आचर ते मंझंदि जो 12 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। राब्ते जे लाइ मुस्लिम अब्बासी, मोबाइल नंबर 0334-224-1869।
3: खुश खबरी, ATZ यूनिफॉर्म सेंटर लाड़काणे ते अव्हां खे हर शइ मिले हिक ही छत हेठां। अव्हां खे आला मयार जो यूनिफॉर्म घुर्जे, मज़बूत ऐं स्टाइलिश स्कूल बैग्स या पाएदार शूज़, ATZ यूनिफॉर्म ते मिले अव्हां खे यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, शूज ऐं ॿियो स्कूल जे ज़रूरत वारो सामान बाज़ार खां इंतिहाई घटि क़ीमत में। कोई देर छा जी, अॼु ई अचो, असांजी ख़ुसूसी ऑफर जो फ़ाइदो हासिल करियो, ताकि अव्हां जा ॿार रहनि स्कूल जे लाइ हमेशा तयार ऐं मुतमिन। ATZ यूनिफॉर्म जी ॼाण, मैनेजर वकार अली, मोबाइल नंबर 0313117577।
4: अनीसा, ख़ैर तो आहे, मंडकाए तो घुमे, धक लॻो अथई छा?
5: हाओ यार अब्दुल्ला, एक्सीडेंट में जंघ जो हॾो भॼी पियो आहे, तोखे त ख़बर आहे, ग़रीबी हाल आहे, पैसा रहिया।
4: भाऊ परेशान न थी, लाड़काणे में डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी सूफ़ी सतारी वेलफेयर ट्रस्ट तरफ़ां ऑपरेशन मुफ़्त करे थो ऐं इलाज बि अहिड़ो सुठी बि जल्दी थी वेंदे।
0: ग़रीब तोड़े अमीर लाइ ख़ुशख़बरी, डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी, MBBS FCPS आर्थो, हॾनि ऐं जोड़नि जो माहिर सर्जन, कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन, सिविल हॉस्पिटल, लाड़काणो। हिते रोज़ानो हॾनि ऐं जोड़नि जे मरीज़नि जो फी सबील लाह इलाज कयो वञे थो, जंहिं में रोज़ानो चकास मुफ़्त, रिपोर्टूं 40% फ्री, एक्स-रे 40% फ्री ऐं ऑपरेशन में डॉक्टर जी का बि फी न आहे। असां वटि हॾनि ऐं जोड़नि जो सूर, संदनि जो सूर, कुन रग जो सूर, यूरिक एसिड, चेल जो सूर, शुगर जा फट, हथनि पेरनि जो सुन थियण, पैदाइशी टिड़ियल फिरियल पेरनि जो इलाज ऐं भगल हॾनि जो ऑपरेशन बहितरीन नमूने कयो वेंदो आहे। एड्रेस कराची मेडिकल सेंटर, लग घिंटी फाटक, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं, आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं ऐं छंछर ते क्लिनिक बंदि रहंदी। राब्ते 3158794-1133।
3: सिंध बेकर्स एंड स्वीट्स पारां सिंध वासन के दिली ईद मुबारक। सिंध बेकर्स ईद जे खुशियुनि में अवां सां गॾु, हिते अवां खे इम्पोर्टेंट जनरल आइटम्स, फ्रेश बेकरी आइटम, हर तरह जे मज़ेदार केकनि जी वैरायटी सां गॾो गॾु देसी घी सां तयार थियल मिठायूं पिण मौजूद आहिनि। सिंध बेकर्स एंड स्वीट्स, मेन रोड, कंबर शहर। कॉन्टेक्ट नंबर 0307-442-1112। सिंध बेकर्स, चांडका पुल, लाड़काणो, 0744-76-0375। सिंध बेकर्स, VIP रोड, लाहौरी मोहल्ला, लाड़काणो, 0744-753-111।

अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: वाल भलो गानो ने मां यो हलायो न लाए ता बुदो ता के यकीन न यो गानो सुठो लगे
1: मैं थोड़ो समझ में आयो भी थोड़ो न भी आयो पंजाबी में होयो तो बराल मड़े कोशिश कई से
0: समझण जी न डाडो सुठो गानो होयो आई बियो इन गाने में जिक्र कारे जोड़े जो मां मुझे ज़हन में ख्याल आ ता के कारे कलर की ड्रेस पाती है
1: कजल ही गाल बुदी न
0: पर ता के कारे कलर की ड्रेस पाती है
1: कारो मन
0: जिंदगी में कदे कारो कलर
1: मन मानो अच्छो हुजे त कारो पाए
0: ये थोड़ी हुंदो आ चवंदा आहिनि जो कलर थोड़ो हुजे त उहो लाइट कलर पाए ऐं जेकॾहिं मतिलबु जंहिंजो वाइट कलर आहे त उहो वरी थोरा माना लाइट लाइट कलर पाए
1: मूंखे माना मां डार्क कलर पंहिंजी लाइफ में घटि पाता हाणे पाइण शुरू कया आहिनि पर सफ़ा हिकदमि त कारे ते न ईंदुसि
0: इहे कदम आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेंगे
1: क्रीम क्रीम लॻे
0: जी वाइटेस्ट ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻायो ऐं तव्हां डेली बेसिस ते वाइटेस्ट जी लवली क्रीम यूज़ कयो तव्हां फेयरनेस क्रीम
1: आमतौर ते ॿुधंदा आहियूं सर्दी हिन मौसम में बि
0: जी बिल्कुलु वाइटेस्ट जी लवली क्रीम जेका आहे उहा त फेयरनेस जे तौर ते आहे तव्हां डेली कारे वञो था कमकार जे हिसाब सां तव्हां लॻाए वञो तव्हांजी स्किन ऐं उन में वाइटेस्ट लवली में सनस्क्रीन बि एड थियल आहे त तव्हां
1: सुभाणे खां हणंदुमि पर हिकिड़ी शर्त ते इरफान साहब खे चवंदुमि सैंपल मोकिले
0: पोइ इहे तव्हां चवंदो त सभु लिसनर बि चवंदा त असांजे बि सिंपल सैंपल मोकिलियो
1: हिन ते हिकिड़ी ऑफर था ॾियूं ठीकु आहे हाणे ईद खां बाद में तव्हांजा जेके प्रोग्राम थींदा आहिनि उन में असां डेली बेसिस ते पंहिंजे सामान खे इनशा ताला मुफ़्त वारियूं क्रीमूं
0: हिन तरीक़े जो कोई प्रोग्राम
1: क्रीमूं न हुन सां गॾु असां गिफ़्ट बि
0: ॾींदासीं साबित रहिजो
1: उहा पूरी कंदा आहियूं जेका न चवंदा आहियूं उहा बि पूरी कंदा आहियूं
0: इहे कॾहिं को थियो आहे वाकियो
1: फिल्मी डायलॉग अलाए कहिड़ी फिल्म जो मैं कहता हूं वो करता हूं जो नहीं कहता
0: वो मैं डेफिनेटली करता हूं
1: घणो सीरियस बि न
0: वठंदो दिमाग़ में प्रोसेस पई
1: कयां हाणे हाणे असांखे जॉइन कयो आहे जीअं एफ एम 88 जीअं एफ एम नेटवर्क 88 सां गॾु ॿिया बि फ्रीक्वेंसीज़ आहिनि असांजे नेटवर्क में त तव्हां सभिनीनि खे ईद उल अज़हा जूं खोड़ सारियूं मुबारकूं हुजनि ऐं अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे भई ख़्यालु रखिजो उज़ई वुज़ई कयो त भारत हुजे
0: अरे चाचा ख़ालिद हमारे साथ ही चवन था रिज़वान साहब चाचा ख़ालिद मुखे भी चाचा ख़ालिद था कोठियो देन हाउ इज़ फीलिंग चाचो भी माना इन शइ जो इज़हार करे थो
1: जेका हू कुराड़े आहे
0: इहा वैसे सही ॻाल्हि आहे
1: बसि मूंखे चाचा मूंखे हाणे पंहिंजी ग़लती जो अच्छा सिदरा चाचा चवे ॻाल्हि ठहे थी पर मां बि चवां ठहे थी फोटू त आहे न चाचे जो भला कहिड़ो मूंखां त वॾो आहे न चाचो ॾिसो ॾाढो आहे
0: अलाह
1: न आहियां मुंहिंजा ॿार ई अञा नंढड़ा आहिनि माशा अलाह हयाती ॾे सलमान खे ऐं गुड़िया खे अञा नंढड़ा आहिनि अञा पंज छह क्लास में था पढ़नि चाचे जा त पोटा डोइटा पंज छह क्लास में
0: अर्शद मरी भी हमारे साथ ही तव्हांखे अर्शद भाई ईद जूं मुबारकूं हुजनि निदा कहती माशाल्लाह हां जी आपकी ओपी आज अच्छी लग रही है वैसे ये तो रिजवान साहब ने आपको पहले बता दिया कि आज सिदरा जाकर घर नजर उतरवाएगा
1: नजर सड़वाइएगा
0: सड़वाइएगा
1: सड़वाते हैं ना चूल्हे पे
0: सही गाल है सही गाल है तो सिंधी आयो न
1: आगे चलो चले भाई चले डबल डबल
0: दीपा
1: गुलशन डिस्को मस्कान अलासिफ सुराव गोड सुराव गोड सुराव गोड
0: सुराव गोड तेरी गाल याद आई
1: लतीफ चाचे फिरोज बुधायो
0: बिल्कुल याद अथव न चाचा फिरोज़ छोकोटी
1: वॾो आहे मूंखां हलायो क़िस्म
0: बस साल

0: अच्छा जायद अली बुर्दी भा तमाम जो मोहब्बत हूँ और अब्दुल रजाक हमारे साथ हैं और दर्दे दिल हमारे साथ, दर्दे दिल का नाम भी वैसे निदा है। अच्छा। तो निदा आपको भी वेलकम करते हैं और उसके अलावा मीर मुमताज अली जतोई हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम, सनाला बिरोई हमारे साथ है और हैं जी अली रजा कलोड़ो और अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि रिजवान भाई को हमने ज्यादा एड में सुना है, आज लाइव सुनकर सच में ईद थी भाई, अल्लाह
1: वाह वाह मेहरबानी अदा स्मार्ट किशोर।
0: अच्छा फरजाना बाहर जो चलो मां कोशिश कदम चाचा यो गानो हलाइनासी अगर
1: चाचा बुधाय तो पोते यो चनाएन त मौका भी है दस्तूर भी है
0: चलो लिंक तमा थी सके त शेयर करे वट जो शो त यो गानो गोरन में पो आसानी थी वई थी वेंदी। आदिल हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम आदिल, तमाम जो भी मौजूद हैं प्रोग्राम बदु पया और हैं जी मोहम्मद आरिफ भाई आपको भी वेलकम है। ओके सो ही वारो गानो बुधो तमा इन गाने का पोए ऐसा न्यूज़ ब्रेक की तरफ वेंदासी उन का पोए मोठी जी तमा जी कॉल्स वठण वारा आयो।

0: मलूक ओ मलूक
1: खैर दाए नूरी
0: जल्दी कर जल्दी पोए साल वांगुर हिन साल भी कप्तान हाइब्रिड सारिन जो बिज वठी अचो त जिए हिन साल भी चजी पैदावार हासिल करियो
1: कप्तान हाइब्रिड सारिन जो बिज अवां के दे 125 का 140 मण फी एकड़ ताई पैदावार जें जो ताकतवर बिज बीमारिन खां रहे महफूज आम बिज जे मुकाबले में कप्तान हाइब्रिड बिज सा मिले जजी पैदावार ए वडो बूड़ो
0: साईं चेबो त हिन साल भी मुजा सोना कंगण पक्का
1: हां हां छो न मिडलैंड इंटरप्राइजेज जो कप्तान हाइब्रिड सारिन जो बिज पंहिंजे वेझे कप्तान फ्रेंचाइज ता हासिल करियो
0: राबते ऐं मालूमात जे लाइ
1: RSM लाड़काणो
0: सजाद हुसैन बुघियो मोबाइल नंबर 03121344

0: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर लाड़काणे में जुनेद मेडिकल सेंटर जो आगाज थी चुको आहे।
1: डॉक्टर आमना भट्टी MBBS FCPS गायनोकोलॉजिस्ट औरतुनि जे बीमारनि जी माहिर
0: मसला PCOS चेहरे ते गैर ज़रूरी वार ऐं मोटापो बचेदानी ऐं पेट जा गोढ़ा ऐं बेओलादीअ जो ख़ासि इलाज कयो वञे थो।
1: हमल जी हिफ़ाज़त ऐं हमल जा मसला जहिड़ो की खून जी कमी, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जो मसलो, ॿार ज़ाया थियण, ॿार जो पाणी घटि या वधि थियण, नॉर्मल डिलीवरी, DNC, सीज़र ऑपरेशन ऐं लेप्रोटामी कई वञे थी।
0: डॉक्टर आमना भट्टी औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर 24 कलाक सर्विस ऐं तजुर्बेकार डॉक्टरनि ऐं अमले सां गॾु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो इलाज जदीद तरीक़े सां कयो वञे थो।
1: यादि रखंदा, असां वटि अल्ट्रासाउंड, क्लिनिकल लेबोरेटरी, फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। इन खां अलावा मरीज़नि जी सहूलियत लाइ मुकमल AC रूम, सोलर सिस्टम ऐं स्टैंड बाई जनरेटर जी सहूलियत मौजूदु आहे।
0: चकास जो टाइम रोज़ानो शाम जो 5 बजे खां राति जो 9 बजे ताईं।
1: एड्रेस जुनेद मेडिकल सेंटर, मेन सचल कॉलोनी रोड, लाड़काणो।
0: राति लाइ 03092572497 07447522 34।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर लाड़काणे में दिलदार अखियुनि जी क्लिनिक जो बाक़ायदा आगाज कयो वियो आहे। डॉक्टर सफदर अली अब्बासी अखियुनि जे बीमारियुनि जो माहिर ऐं फेको सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर चांडका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो। हिते अखियुनि जे बीमारियुनि रेटिना यानी अखियुनि जो पर्दो ऐं ग्लूकोमा यानी कारो पाणी, मोतियो पाणी ऐं इन खां सवाइ शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जे करे पैदा थींदड़ अखियुनि जे पर्दे जी बीमारियुनि जो पिण इलाज कयो वञे थो। डॉक्टर सफदर अली अब्बासी, एड्रेस नज़ प्रिंस मेडिकल शिकायत अस्पताल रोड, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं ऐं आचर ते सुबुह जो 9 बजे खां मंझंदि जो 2 बजे ताईं।
1: राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 03163566268।
3: गारंटी ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती की गारंटी के साथ इस ईद की खुशियों में आपके साथ।

0: तमाम अहले वतन को गारंटी ब्यूटी क्रीम की जानिब से ईद मुबारक।
1: खुशखबरी, लाड़काने जी पहरी लेडी डॉक्टर हाइड्रा फेशियल चमड़ी जे बीमारिन जी माहिर डॉक्टर इरम जूने जो MBBS RMP डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी कंसल्टेंट कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन कॉम्प्लेक्स चाणका मेडिकल कॉलेज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो। इतने कुंवर के चेहरे की खूबसूरती वधाण लाए ब्राइडल बीबी ग्लो मशीन जरिए किया वे तो अज के जदीद दौर में हाइड्रा फेशियल मशीन से किया वे तो क्रीमुन जो मिक्सचर मशीन पान ठाए थी मशीन चेहरे जे अंदर लिकल शयन के छिके बाहर कढे थी। गंजपन यानी मथे जे वारन छड़न जो इलाज PRP इंजेक्शन से कयो वने तो चेहरे जिस्म ते गैर जरूरी फुड़न के इलेक्ट्रो कॉटरी जरिए खत्म कयो वने तो चेहरे ते छाउन जो इलाज PRP मोहिडन जो इलाज केमिकल पीलिंग से कयो वने तो जिस्म ते एलर्जी दाणन जो इलाज ब्लैश मिनियासिस इंजेक्शन से कयो वने तो। याद रखंदा औरतुन जे चेहरे जे गैर जरूरी वारन जो इलाज लेजर थेरेपी जरिए कयो वने तो डॉक्टर इरम जूने जो हाइड्रा फेशियल चमड़ी जे बीमारिन जी माहिर। याद रखंदा जुमे जे दिन 1 बजे खां 3 बजे ताईं औरतुन नंढड़न बारन जी चकास दवाऊं मुफ्त में डिनी वेंदियूं आहिनि। टाइम रोजानो शाम जो 5 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 3 बजे ताईं। एड्रेस इंडस हॉस्पिटल लेडीज जेल रोड लाड़काणो। राब्ते जे लाइ 0343-3122-567।
2: खुशखबरी, हाणे अवां जी परेशानी खत्म। लाड़काणे शहर जो माहिर डॉक्टर शेख खालिद मोहम्मद लंडन कराची खां तालीम याफ्ता MBBS गोल्ड मेडलिस्ट FCPS MRCP लंडन एसोसिएट प्रोफेसर कंसल्टेंट फिजिशियन चांडका अस्पताल लाड़काणो। खास माहिर मैदो आंडो अल्सर हेपेटाइटिस ABCDE जलंधर या कारो कामुन शुगर हाई ब्लड प्रेशर मथे चेल जोड़न जो सूर रगुन जो सूर TB दम बियूं फिफड़न गुर्दन जो बीमारियूं। क्लिनिक कराची मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर नज़द घिंट फाटक लाड़काणो। मुआइने जो टाइम शाम जो 3 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं आचर सुबह जो 9 बजे खां मंझंद जो 4 बजे ताईं। डॉक्टर शेख खालिद मोहम्मद राब्ते जे लाइ 0333-2619-052 अपॉइंटमेंट जे लाइ मोहम्मद रफीक सरगाणी मोबाइल नंबर 0332031-7311।
3: अनीसा खैर तो आहे मंडका ए तो घुमी धक लगो तई छा?
4: हाओ यार अब्दुल्ला, एक्सीडेंट में जंग जो हडो भजी पियो आ। तोखे त खबर आ गरीबी हाल आ, पैसा भी कोन्हन के सोचा तो ऑपरेशन किथा करायां।
5: भाऊ परेशान न थी, लाड़काणे में डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी सूफ

0: सत्तारी वेलफेयर ट्रस्ट तरफा ऑपरेशन मुफ्त करे तो इलाज भी अड़ो सुठो तो करे जो ठीक भी जल्दी थी विंदे।
1: गरीब तोड़े अमीर लाए खुशखबरी, डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी MBBS FCPS आर्थो, हडन ए जोड़न जो माहिर सर्जन,
0: कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन सिविल हॉस्पिटल लाड़काणो।
1: इते रोजाना जोड़न के मरीजन जो फी सबील लाह इलाज कयो वञे तो, जैं रिपोर्ट सेंट फ्री ऑपरेशन में कुन रग जो सूर, यूरिक एसिड, जेल जो सूर, शुगर जा फट, हथन पेरन जो सुन थियण, पैदाइशी टिड़ियल फिरियल पेरन जो इलाज, भगल हडन जो ऑपरेशन बेहतरीन नमूने कयो वेंदो आहे। एड्रेस कराची मेडिकल सेंटर, लग घिंटी फाटक, लाड़काणो।
0: टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं, आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं, छंछर ते क्लिनिक बंद रहंदी।
1: राबते जे लाइ मोबाइल नंबर 03158794117 03375404661।
2: सिंध बेकर्स एंड स्वीट्स पारा सिंध वासन के दिली ईद मुबारक। सिंध बेकर्स ईद जे खुशिन में अवां सा गड, हिते अवां के इम्पोर्टेंट जनरल आइटम्स, फ्रेश बेकरी आइटम, हर तरह जे मजेदार केकन जी वैरायटी सा गडो गड देसी घी सा तैयार थियल मिठाइयों पिण मौजूद आहिन। सिंध बेकर्स एंड स्वीट्स, मेन रोड, कंबर शहर। कॉन्टेक्ट नंबर 03074241162। सिंध बेकर्स, चांडका पुल, लाड़काणो, 4760 VIP रोड, लाहौरी मोहल्ला, लाड़काणो, 07447531। खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अपराधक भाई बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: It's 2:15 PM.
2: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli glow har din jo show. A product by Biocon International Pakistan.

0: बस पूछा खाधो
1: चिकन खाधो
0: चिकन खाधो बस रुगो चिकन
1: चाय वाय खां पो वरी थोड़ो चिकन हुयो जेसी ताई पाड़े मां गोश्त गोश्त अचे
0: सही तां पाण ते सुभाणे कंदो कुल
1: तां छा खाधो
0: असां भी चिकन खाधो सी छो त अम्मी चयो अॼु चिकन खाओ सुभाणे गोश्त
1: खाईंदासीं
0: न न असां तव्हांजे आसिरे आहियूं
1: सुभाणे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह खपे ओजरी खपे
0: असांखे चिकन खपे मुर्गीअ जो वैसे मूंखे गोश्तनि में ख़बर न आहे पवंदी वॾो गोश्त नंढो गोश्त
1: सही आहे
0: बस मुर्गी ई ख़बर हूंदी आहे त मुर्गी मुर्गी हूंदी आहे
1: आईंदा तव्हांखे गोश्त घुराइणो हुजे न नंढो गोश्त घुराइणो हुजे त पैसा मूंखे
0: तव्हां वॾो गोश्त वठी ईंदो फ़र्क़ु छा हूंदो आहे हुन में
1: पर हाणे इहो मां कीअं सम्झायां हिते
0: सम्झाए सघो था
1: गोश्त हूंदो आहे न इहा
0: ई ॻाल्हि आहे न गोश्त गोश्त वॾो छा नंढो छा
1: बस पैसा मूंखे ॾिजांइ नंढो गोश्त खाइण
0: हलो ठीकु आहे ओके सो मासूम आहे न मां ॾाढी
1: जुड़ो मासूम सभिनी खे करे
0: न वैसे मासूम आहियां वैसे चालक बि आहियां
1: अमी तुंहिंजो मासूम नालो चवंदो रखो मासूम
0: न बसि मुंहिंजो नालो भलो रखियो आहे न ॿिन्ही नबू अमीअ
1: कंहिं रखियो नालो
0: सिदरा अमी वारनि अमी नानाणनि रखियो सदफ जेको आहे अबू वारनि रखियो ॾाॾाणनि रखियो ॿ नाला ॿई फैमिलियूं राज़ी
1: सही आहे ख़वातीन हज़रात मां असल में इहो सोचियो त मां पंहिंजे सामान खां इहो सवाल पुछंदुमि त पंहिंजो ईद उल उज़ा ऐं हज़रत इब्राहिम अलाम जो केतिरो जेको आहे सो तालुक़ु आहे वास्तो आहे हज़रत इब्राहिम अलाम जो ईद उल उज़ा सां कहिड़ो तालुक़ु आहे कहिड़ो तालुक़ु आहे असां आमतौर ते चवंदा आहियूं न त भाउ इहो जेका क़ुर्बानी कंदा आहियूं इहो ई सिर्फ़ हिन सां रिलेट आहे बल्कि सिर्फ़ इहो हिन सां अलावा बि खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं वाकियात अरकान आहिनि जेके हज़रत इब्राहिम अलाम सां रिलेटेड आहिनि हीअ ईद ईअं सम्झो 90% हज़रत इब्राहिम अलाम जी सुनत आहे सो बहरहाल हाणे कॉल जी मां कोशिशि कयां थो तव्हां ॿुधाए त मां
0: गाना त खोड़ सारा आहिनि जेके ॿुधंदासीं हीउ वारो सॉन्ग आहे हीउ वारो गानो असां ॿुधंदासीं तव्हां ज़रा कॉल जी तरफ़ वञो मां कुझु मैसेजेस ॾिसी वठां थी केरु केरु आहिनि छा छा चवनि था

0: मुबारक हो आपको भी ईद पे, और इरम आपको भी ईद की बहुत मुबारक हो जी। सबनी आरजेस के फैमिली के शो साहब बचल शामियानी भाई असा के सखर खान ज्वाइन यारे बाजू
1: दिसा दो। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर। रिजवान के आयो ठीक आयो?
1: अलहमदुलिल्लाह। शिकारपुर आरो आछा?
0: हाओ
2: जी जी जी जी।
1: समता न
2: वालेकुम बेन सतो।
0: वालेकुम अस्सलाम भाई साला खुश आयो?
2: खैर खैर बेन ईद मुबारक।
0: खैर मुबारक ता के बिदे जो मुबारक हो जन।
2: खैर मुबारक सर ता के ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक बा ता बदायो खेलो पिया ईद भी मलायो पिया
2: अजी। हां बिल्कुल सर। ईद खा बगैर अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत इब्राहिम की करई है।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भला यो बकरो छो कोई बुआ?
2: सर बस बकरो इन जे करे कोई बुआ छो तो थोड़ी उन जी प्राइस जो थोड़ी घट होंगी ना तो गरीब
1: जबरदस्त। बकरे की प्राइस होंगी घट वरी क्यों होंगी?
2: जानवर
1: में सत पती सत ऐसा होंगे बकरो अकेलो हों बाबू। हाँ सत बकरा कर घने जा सत लख जा घने सत बकरा तो माना लख रुपये सत लख थी भाऊ सस्तो की मांगो आहरा चाचा
2: पुछा
1: न किथे एतिरा ॾींहं शिकारपुर में चङो अलाह कंदो ख़ुशि हूंदो। ॿियो को दोस्तनि खे को मुबारक ॾियणी आहे त बिस्मिल्लाह असां हाज़ुर आहियूं
2: जी सर। सभ खां पहिरीं तव्हां ऐं हुन खां पोइ भेण सुधो ऐं जेको आहे अली रज़ा मुगल इमरान अली मुगल अली बिनो मल ऐं जेको आहे आफ़िस नईं मंगरियो ऐं जेको रहिया सर बाक़ी जेके ॿुधी रहिया आहिनि सभिनि खे मुंहिंजे तरफ़ां।
1: चलो वरी महिरबानी। नालो त न ॿुधाए शिकारपुर वारा?
2: जी सर फारूक
1: मयकु आहे नालो।
2: ठीकु आहे सर थैंक यू।
1: महिरबानी मतलब जेके सचा माण्हू हूंदा आहिनि उहे इमोशनल हूंदा
0: आहिनि। जवाब लिखण जहिड़ो हुयो
1: किताब चपराईंदा। वालेकुम पहिरों बारक भाउ केरु था ॻाल्हायो? आवाज़ कटिजे थो सिंगर साहब। हलो आवाज़ थोरो ॿाहिरि निकिरी आहे न थोरो घिटीअ में। हलो अबो आवाज़ कटिजो तव्हां ॿीहर ट्राई कजो सिंगर छा नालो ॿुधाई? दिलशाद अली शाहिर साहब सिंगर बि शाइर बि
0: न मतिलब अलाए छा नालो हिकिड़ो सम्झो
1: अब्दुल वहीद जतो ख़ैर आहे भाउ हे कंदा आहिनि तोॾे मैसेज
2: किन मूंखे
1: अब्दुल वहीद ख़ैर आहे न सिदरा प्रोग्राम आहे या मूंखे ॾिसी आयो आहे अॼु मैसेज कंदो कान त मैसेज
2: फेसबुक ते लिखी
1: अड़े भाउ हाणे रुगो तूं जेमिनीअ खे रुगो चओ त उहो पाण ई लिखी ॾींदई। अॼुकल्ह सभु ईअं ई था कनि हाणे जंहिंखे अंग्रेजी नथी अचे उहो बि जेमिनी कढे जी। अलहमदुला अलम शुक्र अलहमदुला मालिक जा लख एहसान। तव्हां ॿुधायो संगत ख़ुशि आहे? तव्हां ख़ुशि आहियो? अलाए छो इंसान जो वक़्तु गुज़रण सां मिज़ाज मटिजी थो वञे न त हाणे मुंहिंजो ॼण मिज़ाज नथो ठहे।
2: प्रोग्राम कयो न
1: डेली कयां?
2: हा
1: सही आहे बसि इनशाला अला मालिक इहो सोचो पोइ जेके जेके माना आहिनि तव्हां जहिड़ा दोस्त जेतिरा प्रोग्राम कंदुमि उते माना हुन में तव्हां बैलेंस विझंदा वेंदो। पोइ हिन ई नंबर ते

0: ठहल थी पहला मुझे इन ही नंबर ते हवा जेस के चाहे मुझे
1: मुबारक भा प्यारा
2: कलाम
1: जी जी जी कलाम हलायूं था बिल्कुल
2: सिदरा
1: के भी सलाम डींदासीं बिल्कुल बिल्कुल
2: फरजाना
1: बार बिल्कुल हलायूं था फरजाना गानो एकड़ो रखियो आए वो हलायूं था बिल्कुल कुछ कॉल्स वठी रखो जी
0: अच्छा चलो ठीक है ओके कॉल नेक्स्ट कॉलर की तरफ हलो 0332132288 इदा मुबारक वा हेलो
1: चाचो थोड़ो तकड़ो हो
0: अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम रजान भाई
0: केर ता गलायो
2: रजान भाई सखर का परवेज अली केड़ तो गला
0: परवेज अली साहब खै लगो पे सखर शहर का
2: फराज
0: अहमद फराज
2: जी जी बिल्कुल
0: फराज अली खैर लगो पे तबियत ठीक है
2: अलहमदुल्ला
0: मुबारक जनवा यो बुधा रगो मुझे यही तो छो मल्हाईंदा आहियूं असां
2: तकरीबन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पंहिंजे पुट जी कुर्बानी
0: बिल्कुल सही आहे न तव्हां त सही ॿुधायो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो प्यारो पुटु हुयो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अलाह साईं हुकुम ॾिनो त पंहिंजे पुट खे कुर्बानी ॾे मुंहिंजी रज़ा जे लाइ काॾे हलियो वई ख़्यालनि में गुम थी वई जा हा मां अञा ॿी बि तफ़सील ॿुधाईंदुमि इनशा ताला सॼो प्रोग्राम ॿुधजां
2: बिल्कुल असां भाजी सिदरा खे प्रोग्राम ॿुधंदा
0: आहियूं सिदरा खे चवंदा कॉल वठे हाणे रोज़ कॉल वठे सही आहे सही आहे कोशिश कंदासीं घणे खां घणियूं कॉलूं वठूं
2: कुझु दोस्त बि आहिनि
0: बिस्मिला चाचा
2: असांजो प्यारो दोस्त आहे बावल नंगर पंजाब खां रची जयमंद आहे भाऊ अनवर सोलंगी आहे भाऊ सुवारमंद बचियल ते पाणी मुंहिंजो वाल साहिब आहे करमाली केतड़ मुंहिंजो भाउ परणी केतड़ी जेके भेण ॿार ॿुधंदा सभिनी खे
0: ख़ैरु मुबारकूं फराज़ वॾी महिरबानी असांजे प्रोग्राम में शामिल थियनि लख थोरा फराज़ असांखे सही जवाबु ॾिनो हीअ पंहिंजो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पंहिंजे प्यारी शइ पंहिंजे पुट खे अलाह जी राह में कुर्बान करण जो फ़ैसिलो कयो पोइ छा थियो पोइ तव्हां अॻिते ॿुधायो
1: हू पंहिंजे उन खे फ़ैसिले खे अंजाम ॾियण जी कोशिश कनि पिया हू वया बि ऐं पंहिंजे पुट खे वठी ऐं उते वञी हुननि जॾहिं लेटायो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खे ऐं छुरी फेरियऊं त बकरे जो आवाज़ आयो
0: हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे ख़बर न पई छा त केॾी महिल हज़रत इस्माईल निकिरी वियो न
1: त हुननि जंहिंमहिल उन जी फीलिंग अहिड़ी न त कोई पंहिंजे बचे खे कीअं थो
0: हुन में मां जेको ॿुधो आहे अखियूं
1: बंदि करे ऐं हुननि छुरी फेरी त बकरे जो आवाज़ आयो हुननि अखियूं खोले ॾिठियूं त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम त बीठो हुयो ऐं हुन जॻह ते जेको आहे दुंबो हुयो उहो ज़बर थियल हुयो सो हुन जे ॾींहं खे असां सेलिब्रेट कंदा आयूं असां ईद मल्हाईंदा
0: सुनत खे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी सुनत खे
1: असां ईद मल्हाईंदा
0: ईद मल्हाईंदा आहियूं इन खां अलावा बि जेके असां हज जा जेके अरकान आहिनि जीअं रमी हूंदी आहे या सही हूंदी आहे हाणे असां पंहिंजे साम्हूं खां पुछंदासीं रमी ऐं सही छा हूंदी आहे अस्सलाम वालेकुम तोखा नथो अलहमदुल्ला सर तव्हां ॿुधायो खे लॻो पियो आहे अलाह नेटवर्क वारा पैसा त सॼा खणी था वञनि पर ॾियनि कुझु बि कोन था

0: हेलो आवाज अच्छे पे होगा आवाज समझ में नो अचे अबो चलो नेक्स्ट कॉलर की तरफ अच्छा ब्रेक
1: रिज़वान वैसे ही यहाँ गाल है लिसनर काफी चवन्दा आहिनि त कॉल अगर तव्हां वठंदा त आवाज़ सही न आहे ईंदो चवनि था कॉल वारो स्पीकर जेको ॿियो लॻायो कॉल वारी मोबाइल में कॉल वारी मोबाइल में स्पीकर ॿियो लॻाइजो आवाज़ सही अचे ईअं बि थींदो आहे छा
0: ईअं बि थींदो आहे
1: चलो हाणे जेको टाइम थियो आहे न मां तव्हांखे असल इशारो हुन लाइ ॾिनो त टाइम थियो आहे कमर्शियल ब्रेक जो
0: हलो ब्रेक
1: हुन खां पोइ जल्दी मोटी ॾींदो तव्हां सभु हिते वेठा
0: हुजो चवंदो हलो रिसेस रिसेस रिसेस ब्रेक
1: चलो ब्रेक आहे मोटी ॾींदा हिते वेठा हुजो
0: जैन वाय कर भला
1: ये तो कुछ ज्यादा हो गया।

0: खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। ये दिन है अपनों के साथ खुशियां मनाने का। इसी खुशी में स्पेशल ब्यूटी फेयरनेस क्रीम बनाने वालों की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक फ्रॉम द हाउस ऑफ स्पेशलिस्ट कॉस्मेटिक्स।
1: जदीद गर्मी सबब शहरन की गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजान पन, अब सबको कहें अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। साफ अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
3: खुशखबरी, कराची जी माहिर डॉक्टर अनुषा कुमारी फिजियोथेरेपिस्ट हाने अमाजी पेंजी शहर लाड़काने में मुकम्मल प्रोफेशनल फिजिकल रिहेबिलिटेशन मशकू जदीद तरीके जो इलाज करे रही आहे, जैमे रीढ़ जी हड्डी, हडन जोड़न फ्रैक्चर जा मसला, कुले जो जमी वन, हथन पेरन जो सुन थियण, सीपी चाइल्ड, स्पोर्ट्स इंजरी, पठन में छिकताण, मोहरन जा मसला, कंध, मथे, गोडन चेल जो सूर, लकवा मोच, फालिज यानी अधरंगो, चेस्ट फिजियोथेरेपी जो इलाज कयो वञे थो। याद रखंदा डॉक्टर अनुषा कुमारी फिजियोथेरेपी में मरीजन लाइ फीस में 50% रियायत जो ऐलान कयो आहे, जी गरीब तोड़े अमीर इन सहूलत मां फायदो हासिल करे सकन। एड्रेस कराची मेडिकल सेंटर, लग घिंटी फाटक, लाड़काणो। टाइम रोजाना शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं, आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं। राबते ऐं मालूमात जे लाइ मोबाइल नंबर 0310-3435-298।
4: मलूक, ओ मलूक,
5: खैर दाए नूरी,
4: जल्दी कर जल्दी। पोए साल वांगुर हिन साल भी कप्तान हाइब्रिड सारे जो बिज वठी अचो त जिए हिन साल भी चजी पैदावार हासिल करियो।
5: कप्तान हाइब्रिड सारिन जो बिज अवां के दे 125 का 140 मण फी एकड़ ताई पैदावार, जैं जो ताकतवर बिज बीमारिन का रहे महफूज। आम बिज के मुकाबले में

0: हाइब्रिड बीज सां मिले जजी पैदावार ऐं वॾो बूड़ो।
1: साईं, चइबो त हिन साल बि मुंहिंजा सोना कंगण पक्का।
0: हा हा, छो न। मिडलैंड इंटरप्राइजेज जो कप्तान हाइब्रिड सारिन जो बीज पंहिंजे वेझे कप्तान फ्रेंचाइज तां हासिल करियो।
1: राब्ते ऐं मालूमात जे लाइ
0: RSM लाड़काणो
1: सजाद हुसैन बुघियो, मोबाइल नंबर 03121344205।
0: एड्रेस नवीद फर्टिलाइजर, पुराणी अनाज मंडी, लाड़काणो।
2: होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा।
3: क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम सामईन, मैं हूँ आपका अपना रिजवान अल हक
2: और मैं हूँ आपकी अपनी RJ सिद्रा मुस्कान।
3: जी लाड़काना FM।

0: खुशखबरी, डॉक्टर अफजल हुसैन भुट्टो कंसल्टेंट आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन MBBS जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची ए FCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स कराची मां ए पुराना फ्रैक्चर हडे जो कैंसर हडे जो नासूर जोड़न जो पुरानो मूजी मर्ज चेल जो सूर बारन में हडे जोड़ जा मसाला वडी उम्र में हडन जोड़न जा मसाला पैदाइशी टिड़ियल पेर रांदन में लगल धक जोड़न मांस में गंद भरजी वन बाह जा कैंसर सुकी वाई आर्थराइटिस टुटल हडा बियन हडन जे बीमारिन जो माहिर सर्जन डॉक्टर अफजल हुसैन भुट्टो कंसल्टेंट आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन टाइम रोजानो मंझन जो 3 बजे का रात जो 8 बजे ताई आचर जे दिन सुबह जो 10 बजे का मंझन जो 4 बजे ताई एड्रेस नेशनल मेडिकल सेंटर लेडीज जेल रोड लाड़काणो राबते जे लाए मोबाइल नंबर 0301295-0036
1: अदी छा गाला एडो खुश पई नजर अची
2: हाँ भेण बस खबर है कुछ एडी लगू थी।

चकास बुकिंग जो अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त कंदियूं आहिन। बस कमरे दवा जो थोरो खर्च मरीज पाण भरींदा। हाँ, एक्सरे आईबीपी सीटी स्कैन पिण अध पैसन में कराए दे थी। पेशावराना डॉक्टर डां मरीज खणी वेंदड़न जे भुलाइण ते तवज्जो न दियो। एड्रेस अल निसा मेडिकल सेंटर नद सिटी चौक सचल कॉलोनी लाड़काणो। टाइम रोजाना शाम जो 4 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं आचर ते मंझंदि जो 12 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। राब्ते जे लाइ मुस्लिम अब्बासी मोबाइल नंबर 03422414169।

0: सवलो तरीक़ो
1: बाइक वारो सिस्टम बि न आहे, बाइक वारे चाढ़े छॾे
0: पहुची वञे हा न मोकिले सघे थी निदा वारो कर न न हज़ार खां जतो ई भाई हमारे साथ अली अकबर बरोही भाई भी हमारे साथ मौजूद है और अली अकबर बरोही भाई तव्हांजो मोहबतू आहिनि बाबा और हिदायतुल्ला कहते हैं अच्छा ठीक है तव्हां गानो लिखियो आहे सदर पहुची कल गोश्त भेजूंगी मना चलो चलो असां इंतजार
1: हा पचाए कचो
0: न कचो न पचाए मोकिलियो त जीअं असां तंहिंमहिल खाई सघूं
1: तव्हांखे
0: त कुझु खपे ई न थो
1: अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी केरु था ॻाल्हायो जमालदीन साहब ख़ैर लॻो पिया ईद जूं मुबारक हुजनि वाह
0: तव्हांखे मुबारक हुजे
1: ईद वीद ॾिनी आहे ॿारनि खे को ख़र्ची वर्ची ॾिनी
2: आहे
1: माशाला मुंहिंजो बि आहे जेज अकाउंट ख़र्ची मोकिलियो
0: हाणे ख़र्ची ॾियण वारनि मां आहियो
1: अलहमदुल्ला
0: असां वठण वारनि मां आहियूं असांखे इलाही ख़र्चियूं मिलियूं बि
1: आहिनि घणी ख़र्चियूं मिलियूं
0: इलाही सुभाणे हिसाब करे ॿुधाईंदीमांव
1: अलाह
0: अञा छो त मिलनि थियूं
1: न मिलनि थियूं माशा अलाह तव्हांखे ख़र्ची त न मिलंदी आहे न तव्हां त ॾियण वारा आहियो न माशा अलाह साईं ॾियण वारो करे भाउ वठण वारो न करे हा माशा अलाह अॻे अॻे नंढड़ा हूंदा हुआसीं त वठण वारा हुयासीं हाणे वरी ॾियण वारा थी आऊं घणी ख़र्ची ॾींदा आहियो ॿारनि खे सच ॿुधाइजो ॿुधाए ॿुधाए पोइ बि लिखो त लिखो त ॿाहिरनि जो बि हूंदो आहे त ॿार आहिनि चलो सही आहे माशा अलाह ॿियो ईद जूं मुबारकूं कंहिंखे ॾियणियूं त बिस्मिल्ला वालेकुम सलाम असांजो आवाज़ भाई पूरी सिंध में पियो वञे बाबा पूरी सिंध में पियो वञे सुहिणी सिंध में पियो वञे आवाज़ अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम रिज़वान भाई
1: अबो केरु था ॻाल्हायो वरी ॾिस वरी ॾिस हिकिड़ी कॉल सही थी अचे वरी हिकिड़ी गड़बड़ थी करे ईअं छो हलो आवाज़ थोरो कटिजे पियो थोरो पंहिंजी लोकेशन चेंज कजो हा हाणे सही हाणे बि आहे हिते बीजा हितां न चुरजां वरी आहे न चुरजां हितां तव्हां रोके छॾो अलहमदुल्ला तव्हां ठीकु आहियो कीअं पई गुज़रे ईद गोश्त खाओ था तव्हां असांखे यादि कजो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम अलहमदुल्ला तव्हां ॿुधायो केरु था ॻाल्हायो तव्हांजो हले पखो पखे जी आवाज़ थी अचे दरिया मां पियो
0: ईद वारे ॾींहुं रेल ते वरी काॾे वेंदा
1: हूंदा भाउ वीचारा टिकेट न मिलंदी आहे ईद राति जी त ईद जे ॾींहुं निकिरी पवंदा आहिनि वीचारा मुसाफ़िरनि जी त ख़बर न आहे अलाह माफ़ी ॾे कंहिंखे मुसाफ़िर न करे परदेसी न करे कंहिंखे अलाह साईं हर कोई पंहिंजे प्यारनि सां गॾु हुजे अस्सलाम वालेकुम अलहमदुल्ला दी केरु थी ॻाल्हाए
2: छोकिरो आहे

0: तो देखो किसी की शायरी चुराते नहीं है, मसला है।
1: अच्छा गोठ गड्डे जी,
0: हाँ गड्डे जी,
1: रानीपुर नाओ कराची से लाड़काना से, गुलाम सरवर सुमरो, एजाज अली सुमरो, आप रिजवान साहब, बाजी मुस्कान, पूरी टीम और FM और मेरे दोस्तों को दिल से ईद मुबारक आपने बोला है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप हमारे साथ साथ हैं। नेटवर्क चेंज कयो प्लीज, हम आके नेटवर्क चेंज हाणे त तां पाणी चवंदा त
0: ॿई टई ॻाल्हियूं कयूं, इनशाला हिन ते अमल कयूं था।
1: ओके सो प्रोग्राम जो टाइम ख़तम थी वियो, वरी इनशाला तव्हां सां सुभाणे बि तव्हां सां गॾु हूंदा प्रोग्राम में। रिज़वान साहब खे तव्हां
0: मुंहिंजी कुर्बानी जो ॾियारो आहे, अलाह साईं क़बूल करे, पर जे मां टाइम ते फारिग थी वियुमि त इनशाला मां कोशिश
1: ॾिसो, हाणे तव्हां पाण मञो था त मां बिज़ी हूंदो आहियां, ये काफी बिजी रहने वाले इंसान है,
0: बड़े बड़े वड़े वड़े लोग, इतने वड़िया गलियां,
1: वड़ी गलियां,
0: ॾाढो सुठो लॻो, इलाही अरसे खां बाद में पंहिंजे सामान सां मुखातिब थियण जो मौको ॾिनो, थैंक यू सो वेरी मच सिद्रा, तव्हांजो तव्हां साल में हिकिड़ो दफ़ो मौको ॾींदा
1: आहियो,
0: ॿ दफ़ा, हिकु दफ़ो नानीअ ॾे वेंदी आहे न,
1: हिकु दफ़ो, इहा बि ॻाल्हि आहे, उहा बि त तव्हां प्रोग्राम कंदा आहियो न उन ईद ते बि,
0: हा यार वाकई बहराल सुठो लॻो, हाणे प्रोग्राम जो टाइम पूरो थी वियो आहे, मूंखे इजाज़त ॾियो तव्हां पंहिंजो,
1: ठीकु आहे ओके, इनशाला वरी सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थियण वारी आहे, 1 बजे खां 3 बजे ताईं हिन ई प्रोग्राम में तव्हां सां गॾु मौजूद हूंदासीं। सो हीउ प्रोग्राम स्पेशल तव्हां ताईं पहुचायो वञे पियो जनाब, वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हां इस्तेमाल कयो पिया ऐं कंदा रहंदा, ऐं खोड़ सारा माण्हू असां सां गॾु मौजूद आहिनि, सभिनी जूं मोहबतूं आहिनि, सो मोकिलण नाहे बाबू सिन, सलामत सां सलामत, अलाह हाफ़िज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अवाम सा गर्जी दहशतगर्द जो आखिरी हद तक पीछो जारी रहो। फील्ड मार्शल ईद उल अज़हा बलोचिस्तान के जिले रूप में अगेन मोर्चन के मुकर जवान से गड मल्हाई। आईएसपीआर मौजूद फील्ड मार्शल जवान से गड ईद नमाज पढ़ी। खेन ईद जो वाधायू डिन्हीं। मुल्क की सलामती

صدر مملکت آصف علی زرداری ऐं वज़ीर आलम शहबाज़ शरीफ़ जूं क़ौम खे ईद उल अज़हा जूं वाधायूं। सदर आसिफ़ अली ज़रदारी चयो आहे त ईद उल अज़हा अताअत इलाही, सब्र, अख़लाक ऐं ईसार जो अज़ीम सबक़ ॾिए थी। हज़रत इब्राहिम ऐं हज़रत इस्माइल जूं क़ुर्बानी मुस्लमाननि जे लाइ मशाले रहा आहे। क़ुर्बानी रुगो मज़हबी फ़र्ज़ न पर मुकमल अख़लाक़ी पैगाम आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, स्पीकर क़ौम असेंबली अयाज सादिक, वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ॿियनि पारां बि क़ौम खे ईद जूं वाधायूं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ ऐं नेवल चीफ जूं क़ौम खे ईद उल अज़हा जूं वाधायूं। ISPR चवंदा आहिनि हथियारबंद फ़ौज मुल्क में मुस्तक़िल अमन, ख़ुशहाली ऐं क़ौमी एके जे लाइ दुआगो आहे। ईद उल अज़हा क़ुर्बानी, ईमान ऐं यकजहती जी अलामत आहे। पाक फ़ौज मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी ऐं इलाइक़ाई सलामतीअ जे दिफ़ा जे लाइ पुरअज़म आहे।

0: 88 नेटवर्क
1: GFM 88 नेटवर्क
0: सिंकी आवाज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: ये अपने

0: किया है सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल कही मारू डुगर था भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
2: yeah!

गुजर रही है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ईद का जो मेन मकसद है प्लीज उस पे थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। डीप फ्रीजर और फ्रिज भरने के लिए ईद नहीं आती है, ये उन मुस्तहिक लोगों के लिए आती है जो ऑल एयर जिंदगी की गाड़ी घसीटने में बहुत ज्यादा तगड़ो में मसरूफ होते हैं। तो असल मुस्तहकीन को प्लीज अच्छे से गोश्त दें, इतना दें कि एक टाइम कम से कम वो बना के खाएं, और आपको ढेरों ढेर दुआएं दें, साफ सुथरा गोश्त दिया करें, वो ही वैसा ही सेम चीज दें जैसी आप अपने लिए पसंद करते हैं। तो मेरी जानिब से ये पहला गीत आप सबके लिए।

आपसे रिक्वेस्ट है, किसी को झड़कना नहीं है आपने। अगर कोई भी आपके दरवाजे पर जरूरतमंद आता है, मैंने बहुत सी जगह पे नोटिस किया है कि जो गरीब लोग होते हैं, कहीं कुर्बानी हो रही होती है, वहां जाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें गोश्त दें कुर्बानी का। और जिनको थोड़ी बहुत अक्लो फहम होती है वो उन्हें जो है रिस्पेक्ट देते हैं और उन्हें कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, आप वेट कर लें, हम आपको देते हैं, अभी गोश्त तैयार हो जाए तो देते हैं आपको। और कुछ लोग जो है जिन्हें अवेयरनेस नहीं है, मैं जस्ट यही कहूंगी, वो जो है ना बहुत

0: आपको वेलकम भी कहूंगी अपने प्रोग्राम में. आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपके घर की वो स्पेशल कौन सी डिश है ईद उल अज़हा की जो आप समझते हैं कि ये जो ये वाली डिश है ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कोई और हमसे ज्यादा अच्छी और लजीज बनाए. तो ये आज आपने मुझे बताना है. ओके, और आपकी कॉल्स के लिए आपको डायल करना है 03133615688. और SMS के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में लिखना है MP के एक स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना कर देना है 8881 पर. आपकी कॉल्स की जानिब करते हैं मूव. अस्सलाम वालेकुम. ओ माय गॉड, चलिए जी, आपकी तो कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है. ओके, और नेक्स्ट कॉलर को मौका देंगे अपने प्रोग्राम में शमूलियत का. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. चले जी, माजरत कहूँ, आपकी आवाज, खूबसूरत आवाज जो है वो हमारी समाधों तक नहीं पहुँच पा रही. आप जो भी कोई हैं आपका बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम कहेंगे. कौन बात कर रहा है? अदा भलीकार चाहूँ था तमाखे. ईद मुबारक. क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? चले, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. ओके, और जनाब मैंने पूछा है वो कौन सी डिश है, खुसूसी डिश ईद उल अज़हा की जो आपके यहाँ बनती है, आप कहते हैं इतनी अच्छी और लजीज डिश किसी और के बस की बात नहीं है. नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम बाजी, क्या हाल है?
0: अल्लाह का शुक्र. वेलकम कहूंगी अदा, ईद मुबारक. कौन बात कर रहा है?
1: मैं बात कर रहा हूँ.
0: खुश आमदीद कहेंगे आपको. क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से?
1: बाजी टॉपिक के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं एक बता रहा हूँ तो.
0: जी गुड हो गया. बहुत शुक्रिया अदा. और वाकई जब जिंदा होते हैं ना हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में कब्र पे जाके रोने से और बैन करने से जब वो दुनिया से रुखसत हो गया बंदा या बंदी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. जी नहीं तो. और जियो. नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम.

0: वेलकम कहेंगे अदा, कौन बात कर रहे हैं? अदा ईद मुबारक, क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से?
1: खैर मुबारक है, मुबारक हो जन मुझे तरफ ऐसे पूरी श्रद्धा भी मुझे तरफ मुबारक हो।
0: थैंक यू, क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से?
1: बिल्कुल बकरा इधर डालती है जब चिड़िया वगैरह
0: चलें, ठीक हो गया अदा, बहुत शुक्रिया आप शामले प्रोग्राम हुए, थैंक यू। चलिए जी, आपकी कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई है। ओके, गोठ बीस से कानवर मरी भलीकार चौं था दादा वहाँ के नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, अरे जिलूरी का खाले क्लाशरी गलाए
0: दो। अदा ईद मुबारक, क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? थैंक यू, टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे आप?
2: अभी टॉपिक के बारे में बकरे के गोश्त की बिरयानी मना मुंगी भेड़ तमाम सुखी खाई है, देखो आओ तमाम सुखे नमूने खाई दो आया दोस्तों के। ईद मुबारक चेनुस अजीज दरबार अजीज सुनगी कुर्बान की खास की गुलाम रसूल।
0: ठीक हो गया, ओके जनाब, ईद मुबारक ऑल ऑफ यू, अ वेरी वेरी स्पेशल डे, यकीनन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम मूव करेंगे एक छोटे से तशहीरी वक्फे की जानिब और ब्रेक के बाद आपको अगेन ज्वाइन करते हैं।

0: ईद उल अजहा के पुर मुसरत मौके पर जीएसएकर एफएम 88 की जानिब से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। छात्रवास समर वेकेशन के फ्रूटफुल बनाए चाहो था? छात्रवास सिर्फ बिन महीनन में न्यू स्किल्स सीखी पैजे मुस्तकबिल के वधिक बेहतर बनाए चाहो था? तो कोई परेशान चढ़ने की का जरूरत ना है। ग्लेमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर पेश करे थो 2 मंथ समर वेकेशन स्पेशल कोर्सेज, जिनमें शामिल आहिन किड्स कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स, ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, 1 ईयर DIT कोर्स, 6 मंथ CIT कोर्स। तजुर्बेकार टीचर्स की निगरानी में जदीद आसान तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से गड सीखा, मुनासिब फीस में मयारी तालीम हासिल करो, समर वेकेशन के कामयाबी सीख्या जो बेहतरीन मौको बनाओ। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, एडमिशन ओपन नाउ। व्हाट्सएप 03003113830, मोबाइल 03000093107 एंड 03013865090। एड्रेस लार टावर, फर्स्ट फ्लोर, 100 फीट रोड, भरसा IBA यूनिवर्सिटी, Gate No. 2, सखर। ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लर्न स्किल्स, बिल्ड योर फ्यूचर।
1: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजान पन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 03378963433 एंड 03154501092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
0: ईद उल अज़हा मुबारक, सुन्नत इब्राहिमी, कुर्बानी, मोहब्बत, ईसार ए भाईचारे के अजीम पैगाम से भरियल ईद उल अज़हा के इन पुरमुसरत ए बरकतन वाले मौके थे सवार मोहम्मद बचल शम्बाणी, अब्दुल रसूल भुट्टो, अयाज भुट्टो, सुलेमान भुट्टो, यामीन भुट्टो, अली हसन भाबो, अली गुल कटवर, रजा मोहम्मद मस्तोई, सैयद इमदाद अली शाह, खान मोहम्मद महर, मकसूद न्याजी, अली मोहम्मद भमरो, अला वराय उलाशारी समेत समूरे आलम इस्लाम ए पाकिस्तान की आवाम के दिल की गहराइन से ईद उल अज़हा जो लख लख वाधायूं नेक तमनाओं ए दुआओं पेश कजन थियूं। पारा सोना खान मस्तोई, जेक बाबात, राबतो 03047542138।
2: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट से तावन सा पेश कयो वयो।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: यार मचा क्या, किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थी।
2: जो भला छा छा तुखे, साफ साफ बुधा मसलो छाए।
1: यार एक मसलो हुजे त बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगल है, न भुख सही लगे थी, जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वन था, सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही ना या।
2: यारे तुझा घणा न, बस हिक ही मसलो आ।
1: हिक इहो की है?
2: हाँ तुझो मैदो खराब आ, छा तो न बुधो आ, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न हुंदो त भुख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो न ताकत मिलंदी।
1: तो पो मां छा कया?
2: सोलो हला है, इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स, ये कुदरती जुजन मां तैयार कयल कोर्स तुझे जिस्म जो हिस्सो बन जी, तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो आई मजबूत करे छरींदो, भुख खुली वेंदई, खादो सुठे नमूने हजम थींदई, पेट भूख जण खत्म, सुस्ती खत्म, जिस्म में ताकत ईंदई।
1: वाह यार वाह जी, गाल बुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
2: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रूढ़ी, आई राबते जे लाइ नंबर भी अथई 0305-58-00-616। शिफाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त। खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
3: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
2: DHMS सिंध,
3: RHMP इस्लामाबाद,
2: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
3: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
2: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
3: कमर दर्द,
2: अर्कुन निसा,
3: जोड़ों का दर्द,
2: हेपेटाइटिस,
3: वजन की कमी या ज्यादती,
2: बे औलादी,
3: गंजपन का मुकम्मल इलाज
2: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
3: टाइम
2: हफ्ते से जुमेरात
3: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक,
2: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
3: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर,
2: राब्ते के लिए
3: 0326-22-00-440।
4: ईद उल अजहा के पुर मुसर्रत मौके पर जीए सखर FM 88 की जानिब से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद।

0: आपको भी दिली ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आप शामिल प्रोग्राम हुए। भाभियों को भी ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक, सब सुन रहे हैं प्रोग्राम प्यारे बिना। बस मेरे घर में बिरयानी भी ज्यादा होती है, जो गोश्त भी है मुर्गी भी है, पर मेरी माशाल्लाह फैमिली ज्यादा है तो सारा सब कुछ शुक्र है मालिक का, सब कुछ करते हैं
0: माशाल्लाह। अच्छी बात है, लेकिन आपने जो है सच बताना है कि कौन सी डिश कौन बेहतरीन बनाता है, ठीक है? एक नाम बताना है, दो तीन नाम नहीं बताने।
1: एक तो मेरी
0: हेलो,
1: आप यारी बहना मेरी बहन है वो अच्छा खाना बनाती है।
0: चले आप बहुत समझदार हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहन का नाम लिया है। शुक्रिया आपका, थैंक यू। चले अच्छी बात है, अल्लाह ताला आप समेत आपकी बहन समेत सब बहनों के नसीब अच्छे करे, आमीन। बहुत शुक्रिया अदा, थैंक यू।
1: मेरा दोस्त कुर्बान खान के लिए, कुर्बान खान के लिए जो भी जो भी सुन रहे हैं तरफ के ईद मुबारक बिना आपको ज्यादा में ज्यादा आप
0: आमीन जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच अदा, थैंक यू। और सबके लिए अल्लाह ताला आसानी करे और ये ईद हर आंगन में आई हो, मुस्कुराई हो। दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि ईद कुर्बान का रियल मीनिंग जो है ना, प्लीज उस पे पूरा उतरिएगा और कोशिश कीजिएगा। जो असली मुस्तहकीन है ना कुर्बानी का गोश्त, बहुत ही तरीके से आप उनमें तकसीम कर सके। रब्बे कायनात आप सबकी कुर्बानियां कबूल फरमाए। ब्रेक की जानिब जाते हैं।

0: कुर्बानी के जज्बे के साथ ईद मनाएं, सबको गले लगाएं। बड़ी ईद की बड़ी मुबारक। जीए सक्कर एफएम 88 की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद उल अजहा मुबारक हो।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते।
2: खुशखबरी, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई वधाई वई है। जी हाँ, साल 2026 जे लाए दाखलाओं जारी आहिन मुख्तलिफ शोबन में। BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिक्स, रियाजी ए शुमारियात जड़ा अहम प्रोग्राम्स, ह्यूमन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS केमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, BEd 4 साला, MS एजुकेशन 2 साला। मुस्तहक शागिर्दियाण लाइ स्कॉलरशिप भी मौजूद। एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइन, घट में घट 50% मार्कू इंटरमीडिएट लाजमी। उम्र की हद 35 साल। फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई बताई गई है, लिहाजा देर न करियो, ऑनलाइन अप्लाई करियो। www.apy.bnbwu.edu.pk। गर्मी, थकावट या दिल की बेचैनी महसूस करो प्या, हाने परेशान थियण की जरूरत ना है। पेश है शरबत रूहे राहत, कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवा के दे ताजगी, सुकून आई हकीकी राहत। दिल की धड़कन के मुतवाजन रखन, गर्मी के असर के घटाएं, आई जिस्म के तवानी देने लाए शरबत रूहे राहत। रोजानो सिर्फ एक गिलास आई महसूस करो थकावट का आजादी। कीमत सिर्फ 450 रुपया। शरबत रूहे राहत मिलने जो हंद मदनी तिबी दवाखानों रजिस्टर्ड, फेज मोहम्मद रोड गोश्त बाजार खरीबाबाद सखर। खमीस आई जुमो मिलने जो हंद मदनी तिबी दवाखाना मसान रोड नज लाला शहजादा चौक रोहड़ी। राबतो 0300-36-26-176। ईद उल उजा जे हिन बरकतिन भरे खुशियन सा महकंदड़ आई रूहानी अहमियत वारे पुरमसरत मौके थे नजीर खोसो पारा समूरन मुसलमान भाइरन भेनरन के दिल जी गहराई सा ईद उल उजा जो लख लख वाधायूं नेक तमनाओं आई दुआओं पेश कजन थियूं। अल्लाह पाक का दुआ आई थे ये ईद अमा जी जिंदगी में अमन खुशहाली सेहत आई बेशुमार खुशियों आने। पारा नजीर खोसो बलोचिस्तान, राबते लाए 03-43-83-02-796। हमारे शहर सखर में होम्योपैथिक में 43 साल जो तजुर्बो रखंदड़ प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियानो कर रहे आहे। जे आसाबी अमराज जोड़ मैदे में जलन, कब्ज, तेजाबियत, गुर्दन जी पथरी, बवासीर, हाजमे जी खराबी आई बेन बीमारियों जो बगैर ऑपरेशन होम्योपैथिक तरीका इलाज मुताबिक मरीजन जो इलाज कर रहे आहे। प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, रोजाना सुबह 10 बजे का शाम 5 बजे ताई। जुम्मो मोकल, एड्रेस आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर। राबते जे लाए 03-26-22-00-440। जहाँ हर दिल खुशियों से लबरेज है, जहाँ कुर्बानी का जज्बा मोहब्बत में ढलता है, वही हम जीए एफएम की पूरी टीम आपको और एक बात पेश करते हैं। दुआ है कि ये ईद आपके लिए खुशियों, रहमतों तो का पैगाम लेकर आए। कुर्बानी का जज्बा हम सबको ईसार, मोहब्बत और भाईचारे का सबक दे रही है, जहाँ आपका साथ निभाती है। ईद मुबारक।
3: मैंने आपसे पूछा है कि पर ईद की के आप अंती हबीर से भली कार चाहूँ दादा ईद में है लेकर। ओके, हमारे में माशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम सेम टू यू, ढेरों ढेर मुबारकें जो आपने भेजी हैं तमाम लिसनर्स के लिए। ईद मुबारक कहा आपने, हमेशा हर मुस्लिम नॉन मुस्लिम को ऐसी खुशियां रब अता फरमाए, उनके अपनों मुबारक, बहुत शुक्रिया। हमले प्रोग्राम करते हैं, लाइव कॉल नंबर नोट कर लें 03-13-66-156।
4: ईद ऐसी गुजर रही है कि कैसे बताऊं कि कैसी गुजर रही है, बहुत अच्छी गुजर रही है।
3: जबरदस्त, अच्छी बात है। क्या कहेंगे सब सुनने वालों से?
4: मैं सब सुनने वालों से ये कहूँगा कि जब भी आप आर्जिनाथ के साथ बात करो तो आर्जिनाथ को कहो प्रोग्राम 2-3-4 करने चाहिए आपको।
3: मतलब घर नहीं जाओ ईद वाले दिन भी 3-4 प्रोग्राम करूँ?
4: नहीं नहीं, आप अपने घर में रहे, बेशक अपने घर में रहे, लेकिन जो हम जैसे आपके जैसे लिसनर हैं, हम आपको चाहते हैं, तो आपका प्रोग्राम होता है हमारे लिए दिल अच्छा होता है, और मेरे दोस्त हैं अगर आपके हैं तो मैं उनके नाम दूँ।
3: जी जी
4: सलीम नाम है मसा यूनिट जतोई वही जतोई तमाम आप
3: चले। ये वाला गाना जो भी हमने प्ले किया है आप सब
4: प्रोग्राम 2-3-4 करने चाहिए आपको।
3: मतलब घर नहीं जाओ ईद वाले दिन भी 3-4 प्रोग्राम करूँ?
4: नहीं नहीं, आप अपने घर में रहे, बेशक अपने घर में रहे, लेकिन जो हम जैसे आपके जैसे लिसनर हैं, हम आपको चाहते हैं, तो आपका प्रोग्राम होता है हमारे लिए दिल अच्छा होता है, और मेरे दोस्त हैं अगर आपके हैं तो मैं उनके नाम दूँ।
3: जी जी
4: सलीम नाम है मसा यूनिट जतोई वही जतोई तमाम आप
3: चले। ये वाला गाना जो भी हमने प्ले किया है आप सबके लिए बहुत शुक्रिया। ओके जी, सब लिसनर्स के लिए, आपके लिए भी जो आप हमारे साथ कॉल पर हैं, ये वाला ट्रैक। चलिए जी एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम जी, गुलाम रसूल मरी मीरपुर खास काठड़ी का।
3: अदा ईद मुबारक कहते हैं आपको, टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगे?
5: सिस्टर बड़े जो गोश्त है वो मैं खुद बनाता हूँ और अभी भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी घरवाली अच्छी तरह बनाती है।
3: अरे वाह जबरदस्त। अच्छा आप जरा लाइन पे ही रहें, मुझे ये बताएं तरकीब जो आप जो अच्छी सी डिश बना रहे हैं इसकी रेसिपी बताएं मुझे। मैं तो खाना नहीं बनाती लेकिन मैं सीखना चाहती हूँ आपसे।
5: सर वो पकाना पड़ता है उसको, जो है मैं पकाता हूँ, ये से डिश को पकाता हूँ अच्छी तरह, जो
3: गोश्त को बर्तन में डाल के पकने के लिए रख देते हैं चूल्हे पर।
5: जी जी जी बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। अभी मेरा मेहमान आया है कुर्बान खास के लिए, और खालिक लाशारी भी और अजीज जनवर ये मेरे पास है, अभी आने वाला है।
3: चले आप लोग तो मजे से गोश्त खाएंगे, और हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए, आपको हमारा ख्याल नहीं है अकेले के लिए आप गोश्त खा रहे हैं। चले जी ईद मुबारक आपको भी, और गोश्त आज हर एक के घर में गोश्त ही बनेगा। मजे की बात ये है कि मैंने बिल्कुल भी मतलब जो है ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? और मैं मेरे लिसनर्स हैरान होंगे कि जो है मतलब ईद का दिन है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन मैं

0: जो है ना हेल्थ के मामले में भाई हेल्थ की बहुत केयर करती हूँ, ठीक है। तो मैं ओवर ईटिंग नहीं करती, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे लिसनर्स बहुत ज्यादा खाना खा लें और बीमार पड़ जाएं। तो प्लीज हाथ हौला रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हाल बखैर है, आपको भी ईद मुबारक। कौन बात कर रहा है? वेलकम कहेंगे अदा, ईद का दिन है, क्या डिश बना रहे हैं आप?
1: भाजी बस क्या बताए, हर तरफ खुशबू खुशबू आ रही है, कुछ हमारा भी है, पड़ोसियों का भी है, अल्हम्दुलिल्लाह इधर अच्छी गुजर रही है।
0: चले अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी करे और रब्बे कायनात आपको अपने दर से नवाजे, इंसानों की मोहताजी से बचाए।
1: आमीन। आपकी दोस्त है मेरा अटू हैदराबाद, इधर मेरे साथ सुन रहा है, उसको भी सलाम ईद मुबारक आपको कहता है।
0: अच्छा, मेरी तरफ से ईद मुबारक है दोस्त को। दोस्त आपके बराबर में बैठा है, आप उसको रेडियो पे मुबारकबाद दे रहे हैं, ये क्या सीन है?
1: हाँ तो सर ये तो बाकी है, अभी मीरपुर के एफएम से इसको ये मुबारकबाद मिले वो अच्छी बात है ना।
0: जबरदस्त। चले जी, दोस्त के साथ एंजॉय करें और अपना ख्याल रखिएगा आदा। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। जमीन दिन है और कोशिश कीजिएगा कि रब की रजा के लिए आप कुर्बानी करें और जो भी मुस्तहकीन है उन तक खुद जाके पहुंचाएं, बजाय इसके कि वो सुबह सुबह आपके दरवाजे पे आके एक उम्मीद लेके आपकी जानिब उसे, और आपको इतना नहीं होता, बहुत लोग धूप में खड़ा करके अच्छी बात ब्रेक, सिर्फ रब की जात है, जमीन के खुदा नहीं बनिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी, कम अज कम आपसे हाथ जोड़ के गुजारी जानी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सेम आपको, घर की काल सारी किचन में है
1: और मैं अपने रूम में आराम से अम्मी
0: की हो के आप के ना आपको टू आवर्स प्रोग्राम सुनने दे रही है, बस होते हैं ना उनपे खबर।
1: अम्मी और भाभी मजेदार खाना बनाती नहीं।
0: अच्छा मजे की बात, ईद का दिन है तो टाइप हो ना तुम वगैरह कुछ नहीं करती, भी मिलता है मैं शुक्र करके खा लेती हूँ और अलहमद अच्छा होता है बगैर हाथ पाए, एहतियात की है, मजे की कुछ नहीं खाया है, सान होंगी कि मतलब ये ऐसे बहुत कॉन्शियस के लिए मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं करती और हम टूट पड़ेंगे भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता।
1: देर में आपको सुनाऊंगी, सुनाया
0: जी
1: है हरदम गुलाब की मिजाज आपका जैसा है
0: ये इसलिए है। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत प्यारा गुलाब जो वाला आप प्ले कीजिएगा।
0: चलें प्ले करती हूँ अगर मिलता है।
1: मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक हो, सलाम
0: सबकी, आपकी ईद भी बखैर हो और अच्छी हो। अरे वाह महक, आप
1: शुक्र है
0: क्योंकि न्यूज में
1: सबको सबको ईद मुबारक
0: पारा, सेम टू यू महक, थैंक यू। और माजरत का हूँ जो है ना गप पाएगी हमसे क्योंकि हिते न्यूज ब्रेक टाइम। प्यारा सा गीत ईद का, तमाम उम्मत मुस्लिमा को दिल हार जाए।
2: अब आप सुनेंगे कुर्बानी अतहवार की जानिब तरह, दुआ है कि ये ईद आपकी लड़ाई सुनेंगे एम नेटवर्क पर।
3: तकलीफ तो पहुंचे थी पर हमने जो असान कोशिश कही आ उन्हें आर ओ न्यूज की मुनिमेंट एटलीस्ट माणन के उन्हें वधिक नुकसान का बचा रही हीर आए उन्हें में तमाम घणियों वाटर सप्लाई जी स्कीम ते फोकस सिंध गवर्नमेंट के वो आई सबनेन के बाउंड के रोज
2: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, मजबूत तने, लंबे और सेहतमंद मुंजरों के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और
4: झाड़ी अखलाकी पैगाम है वजीर आजम शहबाज शरीफ कुर्बानी खुदा जे अतां जो दर्श के आसिम अली सलाम मकसद के लाए जान पाइश मोहम्मद के सदर वाहिद इब्न अजहर अता इलाही सब्र अखतार जो अजीम सबक दिए थी हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल कुर्बानी मुसलमान जलाए मशाल रहा है कुर्बानी रुगो मजहबी फर्ज न पर मुकम्मल।

0: चमचे व केस्टर सॉस शामिल कर दें। अब इसमें स्टेक शामिल करके तकरीबन एक घंटे बाद ये स्टेक ग्रिल या फ्राई पैन में तल लें। जब स्टेक अच्छी तरह से घुल जाए तो इसको प्लेट में निकाल लें। एक पैन में 4 खाने के चमचे तेल और बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दें। प्याज लाल हो जाए तो इसमें 2 कप पानी शामिल कर दें। फिर मैदे से इसको गाढ़ा कर लें और मशरूम्स शामिल कर दें। ये आमेजा स्टेक के ऊपर डालकर इसको बॉयल राइस या बॉयल सब्जी के साथ पेश करें।
1: खाना तैयार है,
2: गर्मा गर्म है, मजेदार है।
1: खाना तैयार है।

0: पादरीअ खे दिल जी गहराइन सां ईद उल अज़हा जूं लख लख वाधायूं पेश करियूं था। पारां गुलाम फारूक ख़ासि खेली, अली गुल ख़ासि खेली, मोहम्मद यासीन ख़ासि खेली, काउंसलर यूसी सिंधड़ी, ॻोठ हाजी मोहम्मद उर्स ख़ासि खेली, यूनियन काउंसिल सिंधड़ी, तालको सिंधड़ी, ज़िलो मीरपुर ख़ासि।
1: Yeah.

0: मीरपुर खास की हो तो आवाज भी मीरपुर खास की है। सुनते रहो GFM 88 मीरपुर खास की।
1: कुरान समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: व्यू फ्रॉम जीए मीरपुर खास FM 88।
3: It's masala eat.

हसरत ईद करें, हसरत है तुम्हारी ईद करें, तुम माओ तो हम भी ईद करें, कुछ देर तो दिल को चैन मिले, कुछ रोज तो मन के फूल खिले, कहते हैं ईद की आमद है, तुम आओ तो हम भी ईद करें। जब गम के बादल छाए थे उस बार भी तुम ना आए थे, इस बार भी तुम ना आए हो, सब दुश्मन ये तनकीद करें, तुम आओ तो हम भी ईद करें। माना कि हम दीवाने हैं, सब बातों से अनजान, अपने ही बेगाने हैं, क्या गैरों से उम्मीद कर, आओ तो ईद करें तुम। वेलकम कहूंगी अपने तमाम सामईन को जी मीरपुर खास एफएम 88 के लाइव स्ट्रीम आप सुन रहे हैं की खुश पर रमेश कुमार खत्री लिखा, ईद मुबारक कबूल हो, सेम टू यू, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, लतीफ चनेसर गुट कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण मोहम्मद अमीन, जफर सादिक शेख, शुगर शंकर गुल शर्मा, बिरयानी वाले, अरे वाह बिरयानी वाले आपको जनाब।

0: है ना?
1: हाँ जी, आज ईद का दिन है ना, तो सजते सवरते रहो।
0: ओके, क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से? आपके घर की कौन सी डिश है ईद उल अज़हा की जो आप समझती हैं आपके घर की ही बेस्ट होती है, कोई और इससे अच्छी बना ही नहीं सकता?
1: चिकन कढ़ाई।
0: अरे वाह, कढ़ाई। ओके, और ये कौन बनाता है?
1: सिस्टर है ना, बड़ी सिस्टर है ना, वो बनाती है, बहुत अच्छी बनाती है।
0: चले जी, आप इंजॉय करें अपने अपनों के साथ। अलीजा को भी हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार, बेस्ट विशेज, बहुत शुक्रिया आपका निदा।
1: और वो आपको ईद मुबारक दे रही है।
0: थैंक यू, सेम टू यू, बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज।
0: ओके जी, और ईद हमारे तमाम पाकिस्तानियों की अच्छी और बेहतरीन, सुनने वालों की भी ईदें अच्छी गुजरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? खुश आमदीद कहेंगे आपको।
1: खैर मुबारक, आपको भी मुबारक।
0: थैंक यू। ये कुकिंग की है आपने?
1: आज हमने बकरा बनाया है।
0: अरे वाह, बकरा, बकरे की डिश, कौन सी डिश बनाई है? बकरा पूरा तो नहीं बनाया होगा, कोई डिश बनाई होगी ना? ओ माय गॉड,
1: बस बकरे की डिश बनाई है।
0: चलो अच्छी बात है, एंजॉय करो। सब सुनने वालों को चले, सब सुनने वालों को क्या कहेंगी?
1: कुछ नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, सब इसके साथ ईद से सबसे अच्छी तरह मिले, सबको गोश्त बांटे।
0: फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं भरे, वापडा वाले आप वो गोश्त खराब कर देंगे लाइटें बंद बंद करके, कोई फायदा नहीं है।
1: यही है ना, अपने फ्रिज में रख देते क्या फायदा, वो तीन तीन महीने खाते हैं, फायदा क्या, गरीब को दे दे।
0: दुआएं लगेंगी ना, दुआओं से बेड़ा पार हो जाता है, ये बात सब समझे। बहुत शुक्रिया जी,
1: समझाना चाह रहे सबको।
0: चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।
1: थैंक यू।
0: हमारे लिसनर जरूरत से ज्यादा समझदार है, आई होप के जो हम समझाना चाह रहे हैं जो है वो आप लोग यकीनन समझ रहे होंगे। अक्सा कहती हैं गुल गर्मी तो है, अब क्या करें। बिल्कुल, और किचन की कुकिंग वगैरह का काम सिस्टर का है और भाभी हैं वही काम करती हैं, फिर मैं क्या करूं कुकिंग करने का। वैसे भी नहीं नहीं, प्लीज आप कुकिंग मत करना, उनकी ईद अच्छी होने दे अक्सा, प्लीज। खबरदार आप किचन में गई तो। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम। भाई आप एक काम करें, मुझे रेडियो पे सुन लें जो आपने लाउडली खोला हुआ है, ठीक है? अब मैं जो है वैसे भी इजाजत लेने वाली हूँ, जब भी आप लोग कॉल्स पे आते हैं हम कहते भी हैं कि प्लीज रेडियो ऑफ कर दिया करें, आप समझती नहीं है हमारी बात, हम पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलते, किसी और लैंग्वेज बोलते हैं लगता है। वेल जनाब, हतुल इमकान कोशिश थी आज आपकी कॉल्स ज्यादा से ज्यादा ले, मैंने कोई भी सेगमेंट वाले जो है ना इसमें एडिशन नहीं की है। एक नजर जो है हम FB पे भी करते चलें, हाँ जी चलें, फेसबुक के भी तकरीबन तमाम ही मैसेज हम शामिल प्रोग्राम कर चुके हैं, और कोशिश करनी है आपने ईद को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गुजारना है। बेहतरीन अंदाज में तब ईद आपकी गुजरेगी जब आपके इर्द गिर्द रहने वालों की भी ईद आके ईद होगी। और प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी आपसे, और रेडियो जो है ना, रेडियो सेट वो आपने ऐसे ही ट्यून रखना है, रेडियो को जो है ऑफ नहीं करना। मेरे प्रोग्राम के बाद एक और प्रोग्राम लाइनअप है, वो प्रोग्राम आप सुने, उसमें पार्टिसिपेट करें, खुशियों को दुबाला करें। चलिए जी, प्यारा सा गीत आप सबके लिए, एंजॉय कीजिए इस गीत को, इस गीत के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम एंजॉय कीजिएगा। GFM88 नेटवर्क की जानिब से, RJ गुलनास की जानिब से ढेरों ढेर बेस्ट विशेस। दो घड़ी तेरी दीद हो जाए, अपनी भी ईद व ईद हो जाए।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हथियारबंदन फौज जे पेशावरणी सलाहियतन ऐं क़ौमी सलामती लाइ ख़िदमतन तोड़ी क़ुर्बानी जी साराह कई। मुल्क जी सलामती तरक्की ऐं खुशहाली लाइ दुआऊं बि घुरियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ईद जे ॾींहं ते फर्स्ट रिपाइंडर आफिसर्स ऐं जवाननि खे डेटा पेश करे चयो आहे त क़ौम खे पंहिंजे बहादुर सिपाहियुनि ऐं पाक फौज जी क़ुर्बानीनि ते फ़ख्र आहे। सर्विसिस चीफ़्स ईद जूं वाधायूं ॾियण वज़ीर आज़म जा तौरा मञिया ऐं उन अज़ब जो इज़हार कयो त पाक फौज वतन जे दिफ़ा ऐं सलामतीअ लाइ हर वक़्तु तयारु आहे।

तुम्हारी नजर किए। हाय डियर लिसनर्स, मैं हूँ आपका आरजे अमीर बख्श। मेरी जानिब से ईद उल अजहा के पुरमुसरत मौके पर आप लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: 0300011348 जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, यानी कि इशफाक नियाज़ी को जो जो इस वक्त सुन रहा है, इस बुध के रोज, इस खूबसूरत से रोज, इस ईद के पहले दिन हमारे साथ आए तो हमारे साथ गपशप भी जरूर करें। लेते हैं शो की पहली पहली कॉल। गाना नहीं चलाते हम आपको, ज्यादा इंतजार वैसे भी नहीं कराते क्योंकि आप हमें बड़े प्यारे हैं, हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा देर इंतजार ना करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक। केर सा सबरी सा गडदा अली हसन बाबू साहब, तमा के ईद जो पहरियो डी तमाम घणो मुबारक होजे। केड़ा हाल है ताजा, छाता कयो?
1: बस साहब खाण पीण जो अगियों पयो आ तो के भी हाजरा बाबा खा।
0: अच्छा, वाह वाह वाह। ईद जो पहरी डी तमा नमाज पढ़ी करे कुर्बानी कई आहे या न कई आहे?
1: इशफाक भाई सबन कुर्बानी पांजी आ बाकी भी गोटनी दीवा मिल गया।
0: अच्छा, सही सही सही। तो माना अज तुम मेन्यू है तुम जहां घर वालों के दिनों तो बा मुख्य हियो भी खानो आ, कबाब भी खाना है, चपली कबाब भी खाना है, कुरमो भी खानो आ, माना तुम फेवरेट है जो तुम चाहो था तुम घर में पचे?
1: इशफाक भाई फैमिली गंजा पर हर शय की बिरयानी मुर्गी हर गंजा शुक्र
0: न बाबा न मुर्गी अज के डी में मुर्गी जो कहो कम भा
1: मुर्गी मेरी घुराई
0: मुर्गी सजो साल खाए था बाबा, आज मुर्गी के टारे सफा खत्म क्यों साइड से क्यों
1: मुर्गी मुर्गी खत्म किया
0: इन सी गाल क्यों इन सी गाल क्यों बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई तवा जका है तवा जे पाड़े वारन अगर त कुर्बानी कई है त पांजी घिटियन ने मोहल्ले के साफ करे छियो या अन्या उन उवा गंद ते पयो आ?
1: न न न न हर तो सफा कर दे हर के गरीब गुरते के जने जके जे में इशफाक भाई मां आयो या तो जके भी कल कुर्बानी तते में फिरजू पांदी में फरन गरीब गुरते के जने पूरा को कुर्बानी अदा दी जाई।
0: हां बिल्कुल, न तई थिंदो आ त मानु जका हुंदा इन ईद जे सीजन में नहु फ्रिज उठंदा इन बाबा फ्रिज उठंदा इन त जी गोश्त फ्रीज करे सकौ हाँ एग्जैक्टली अला साईं सभिनी जी कुर्बानी कबूल करे ऐं जेका जेका मुस्तहिक माण्हू आहिनि उन्हनि सभिनी खे गोश्त विरिहाइजे त जीअं सवाब सभिनी खे मिली सघे। अच्छा अली हसन बाबू साहब, तव्हां इहो ॿुधायो आया आहियो असांजा पहिरियां कॉलर थी करे त तव्हां कहिड़ो गानो ॿुधणु चाहियो था अॼु? कहिड़ो गानो कंदो सॉरी ओके मुनवर मोलाई सही आहे। कंहिंखे डेडिकेट करणु चाहियो था तव्हां?
1: अब्दुल्लाह
0: थैंक यू सो मच हसन अली बाबू साहब, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। अला हाफ़िज़। जी जनाब वेलकम बैक वंस अगेन, हमारे साथ बहुत प्यारे से अली हसन बाबू साहब और जनाब आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: ईद मुबारक
2: भाई। मैं आपसे सवाल बात कर रहा हूँ।
0: कौन बात कर रहे हैं?
2: आसिफ सावल।
0: आसिफ सावल साहब, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक हो आपको।
2: आपको भी ईद मुबारक। मेरा ठीक है, तुम बताओ कैसे हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये बताओ आपने कहाँ से कॉल किया मुझे?
2: मोरो से।
0: कहाँ से?
2: मोरो।
0: मोरो मोरो, हमारे बहुत प्यारे शहर मोरो से आपने हमें कॉल किया है। ये बताओ आज का ईद का दिन कैसा गुजरा? सो सो के तो नहीं गुजरा कहीं मेरी तरह?
2: बेहतरीन बेहतरीन गुजरा है।
0: क्या किया सुबह नमाज पढ़ के आपने?
2: नमाज पढ़ के उठ गया है।
0: अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर सो के उठे तो क्या खाया आज स्पेशल डिशेस?
2: बस नाश्ता किया।
0: अच्छा, तो अभी आपने अभी तक गोश्त से बनी हुई कोई स्पेशल डिश नहीं खाई है? इट मीन्स
2: नहीं नहीं।
0: क्यों भाई क्यों?
2: बस।
0: अच्छा बस। अच्छा ये बताओ कि अब क्या इरादा है? अब उठ गए हो शाम को, कहाँ जाना है? दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के घर?
2: देखिए मैं जाऊंगा।
0: अच्छा गुड है गुड है। पता है मैंने क्या किया? मैंने तो कल ही सबके घर होकर आ गया। मैंने कहा भाई मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, मैं ईद वाले दिन बिल्कुल नहीं आऊंगा क्योंकि मैं सोऊंगा और बहुत गर्मी है।
2: दोस्तों के याद करना है?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद करो दोस्तों के।
2: लक्ष्मी
0: थैंक यू आसिफ सावल, आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी। जनाब हमारे साथ आसिफ सांवल फ्रॉम मोरो, और जनाब आप भी हमें कहीं से भी सुन रहे हैं तो आप हमें कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: के रता सर सबरी सा गडो
3: सोना साईं भाई तक जत्ते को गला केटी शाबेले का
0: केटी शाबेले वाले सबनी दोस्तन के आई जायद भाई के ईद मुबारक।
3: अलहमदुल्ला प्यारा बात कई मुबारक है तुम पूरे टीम क्यों जी भी दोस्त बुरा लख लख मुबारक।
0: थैंक यू अदा आसिफ नाल बुधाय
3: जायद जतोई।
0: जायद भाई बुधायो केटी शाबेले वारन ईद की कई आई
3: माशाल्लाह सुठो त प्यारा बात सुठी ईद गुजरी शुक्रा मालिक जो
0: माशाल्लाह माशाल्लाह ना गुजरी ना बड़ी प्यान बा अजो भी न गुजरियो अजो भी हथ पियो आ असल में शहर में तो शाम जो ढी शुरू थो शहर में तो शाम जो ढी शुरू थो ना असो अच्छा माशा खफो लाई आया घुमी फिरी आया खाई पी आया
3: जी जी बिल्कुल
0: वाह वाह गोडा गोडा यार जबरदस्त। जाहिद भाई ये बुधायो तो जो हाँ मैं गाना तो प्ले किया नंबर मलाई जो यो कैंजे नाले से करना चाहो भला ये सूर सभी के छो हूं तो ईद अची वही असो यार ना आयो असो प्यार ना आयो छो भला
3: बस दिसो दादा
0: मुझे गाल तो बुध दुनिया वही चंड से पहुंची असा के पाने यार की फिक्र था यार को आयो अने भागो कम हों सको असा इन सीजन में निकरंदा तो कोई अगत बुधंदा से ना अच्छा ठीक है मैं बुधाने की पूरी कोशिश तो क्या कें नाल से करना चाहो
3: पर तमाम जे नाले कंदा आ जे के दोस्त बोलना वेंदे वेंदे सबन दोस्तन के ईद मुबारक जे के बोलना खास कर ता के ता टीम के
0: थैंक यू सो मच जायद भाई पांजो खास ख्याल रखजो
3: बड़ी मेहरबानी कला
0: अल्लाह हाफिज़। जी जनाब वेलकम बैक वंस अगेन आफ्टर द कॉल। और जनाब ये मुझे ये फंडा समझ नहीं आ रहा था मुझे ये फंडो समझ में न तो अचे तो जनाब जी ईद इंदी आ आशिकन जा टड़का हुंदा न माना हर जको आशिक हुंदो आ सैड हुंदो आ कपड़ा भी कोन पाइंदो आ यार न आयो अरे निभागो काडे मरी वियो यार कोई कम हुंदस कोई कार हुंदस सौ जान में कमन वो कम करे पोइंदो न बाबा न असन यार अज अचे बाबा टे डी दन के भी डी अचे सके तो अस्सलाम वालेकुम। ओए होए होए आते ही ड्रॉप हो गई पर कोई गल नहीं है जनाब इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अस्सलाम वालेकुम। अदा जानी ईद मुबारक। थैंक यू मुझा मिठा केर पे गलायो किथा पे गलायो अली नवाज पिताफी ताजे गोठ वारन ईद किया कई हां तां किया कई आ जबरदस्त जबरदस्त मजे की गाल ईद सुठी गुजरी है गुजरे थे बदी बिया भी गुजारिंदा ताते घुमण फिरण वे आओ अच्छा सही सही सही सही गर्मी थी पई है पांजो खास ख्याल भी रखो कुछ थदा मशरूबात भी पियो कोल्ड ड्रिंक्स पियो सॉफ्ट ड्रिंक्स पियो तो जी तांके गर्मी न लगे रुमाल वुमाल वेड़ो वनो बाबा गर्मी इलाही पई आ हाँ गर्मी इलाही याद गर्मी वाकई इलाही अच्छा यो बुधायो पिताफी भा त गानो बुधायण वारो आया मो नंबर मलाई जो केंजे नाले था करण चाहयो सिर्फ ओके अदा ओके हियर तो प्ले किया गानो ठीक है दा थैंक यू जी जनाब मुनव्वर मलाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि जनाब हमें भी प्ले किया जाए तो हम प्ले करते हैं बिल्कुल क्योंकि हमें अपने लिस्टनर्स अपने दोस्तों अपने कॉलर्स को भी अटेंड करना है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम।
0: कौन हमारे साथ
4: दुआ
0: कंवल दुआ कंवल ईद मुबारक हो आपको
4: खाली मुबारक
0: बाकी गोश्त मां भी कोई खड़ी आयो गोश्त वोश्त मां भी तो कौन खड़ी आयो अच्छा ईदी खबे ईदी
4: ईदी
0: डोकड़ मरी वहां से बस पान डोकड़ ला सिकूं था काथों कोई डोकड़ अचन तमा के ऐसा डोकड़ के बदले असा के गानो बुधाने ताजी फरमाइश जो
4: हां पर ट्रैक्टर में मुझे कर पे
0: हां
4: पर ट्रैक्टर में मुझे कर पे
0: अच्छा केड़ो कर गानो ने बुधाया मामा मरी यहां से ईद जे दी भी मैं आरू अच्छा हाँ कड़ो गानो बुझ रहा बुधायो हेलो दुआ कमल हेलो ओ शेख दुआ कमल की कॉल हो गई है, ड्रॉप पर कोई बात नहीं है, हम लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम।
0: के रदा सा सबनी सा गड
5: पाग बा जतई कम करना को काज काम में काम जतई काम
0: अब्दुल वाहिद जतई
5: जी जी अब्दुल वाहिद जतई
0: वाहिद भाई केड़ा हाल चाल है, ईद मुबारक।
5: खैर काम खैर मुबारक।
0: थैंक यू सो मच। ईद जो दिहाड़ो की गुजरे तो ता जो मजेदार
5: जी जी
0: जबरदस्त। ये बताओ गानो तो बताया के जे नाले था करना चाहो जलाल चांडो बुधाय तो माम पर जो फरमाइश आई है मुनवर मलाई जी। थैंक यू सो मच वाहिद भा। हमारे साथ इतना वाहिद भाई और वाहिद भाई के बाद अब लगता है गाना प्ले कर ही दें, क्योंकि गाना हम जब तक प्ले नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आने वाला। हम मुनव्वर मलाई प्ले कर चुके हैं और जनाब आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो गोश्त मुश्तहिक अफराद तक जरूर पहुंचाएं, और इसके साथ साथ अपने गली मोहल्ले को भी साफ रखें। जिस एरिया में आप कुर्बानी कर रहे हैं वहां पे कोई आलाइश ना हो, कोई खून ना हो, और सब कुछ सफाई करें ताकि आप एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें।

प्लाजा के पुर मुसरत मौके पर जीएसएकड़ एफएम 88 की जानिब से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद।

0: सबको कहे अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूम के लिए अभी कॉल करें 0333-786-343 and 0315-450-1092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो।
1: अवां जी स्किन डल एंड बेरोनक लगे थी, हाने पहजी स्किन के दियो एक नव गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर दिन। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
0: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
2: DHMS सिंध,
0: RHMP इस्लामाबाद,
2: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
0: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
2: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
0: कमर दर्द,
2: अर्कुन निसा,
0: जोड़ों का दर्द,
2: हेपेटाइटिस,
0: वजन की कमी या ज्यादती,
2: बे औलादी,
0: गंजपन का मुकम्मल इलाज
2: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
0: टाइम
2: हफ्ते से जुमेरात
0: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
2: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
0: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
2: राब्ते के लिए
0: 0326-22-00-440।
3: छातवा समर वेकेशन के फ्रूटफुल बनाए चाहो था, छातवा सिर्फ बिन महीने में न्यू स्किल्स सीखी पैजे मुस्तकबिल के वधिक बेहतर बनाए चाहो था, तो कोई परेशान चढ़ने की का जरूरत नहीं। ग्लेमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर पेश करे थो 2 मंथ्स समर वेकेशन स्पेशल कोर्सेज, जिनमें शामिल आहिन किड्स कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स, ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, 1 ईयर DIT कोर्स, 6 मंथ्स CIT कोर्स। तजुर्बेकार टीचर्स की निगरानी में जदीद एंड आसान तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से गड सीखा, मुनासिब फीस में मयारी तालीम हासिल करो और समर वेकेशन के कामयाबी और सीखा जो बेहतरीन मौको बनाओ। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, एडमिशन ओपन नाउ। व्हाट्सएप 0300-311-3830, मोबाइल 0300-09-31207 and 0301-3865-090. Address Lar Tower, First Floor, Sofit Road, Bharsa, IBA University, Gate No. 2, Sakhar. Glamour Institute of Science and Technology. Learn skills, build your future.
4: Yaar macha kya, kithe vanya, ghar mein baitho hai haan par theek hi naya, shayad mujhe zindagi laaye ka dawai nahi thai.
5: Jo bhala, chha tokhe, saaf saaf budha maslo chai.
4: यार एक मसलो हुजे त बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे, न भुख सही लगे थी ऐं जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वन था, ऐं सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही ना या।
5: यार तुझा घणा न, बस एक ही मसलो आ।
4: एक इहो की है?
5: हाँ, तुझो मैदो खराब आ, छा तो न बुधो आ, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न होंदो त भुख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो ऐं न ताकत मिलंदी।
4: त पो मां छा कयां?
5: सोलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स। ये कुदरती जुजन मां तैयार कयल कोर्स तुझे जिस्म जो हिस्सो बणजी तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो ऐं मजबूत करे छॾींदो। भुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हजम थींदई, पेट फूकजण खत्म, सुस्ती खत्म, जिस्म में ताकत ईंदई।
4: वाह यार, वाह जी गाल बुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
5: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं, अल नूर दवाखाना रोड़ी। ऐं राब्ते जे लाइ नंबर भी अथई 0305-58-00-616। शिफाए मैदा कोर्स।

0: मैं तो दुरुस्त ता इंसान तंदुरुस्त
1: सखर होम्योपैथी क्लिनिक NICVD रोड सखर हैदराबाद एंड लाड़काने जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी DHMS RHMP इस्लामाबाद जोड़न संधन जो सूर कुंदरग जो सूर कंजे जो सूर हडन जो भरण अध मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जो सूर खारिश बारन में कद जो न वधण मोटापो इन अलावा पित्ते गुर्दे मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो टाइम सुबह 10 का शाम 6 वगे ताई एड्रेस सखर होम्योपैथी क्लिनिक नज दिलवारी अस्पताल सखर हर जुमे आचार से चेकअप फीस बिल्कुल मुफ्त रश का बचण नंबर वठण लाय 0327-84-60-746
0: ईद उल अज़हा मुबारक सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी मोहब्बत ईसार भाईचारे के अजीम पैगाम से भरियल ईद उल अज़हा के इन पुरमुसरत बरकतन वाले मौके से सवार मोहम्मद बचल संबाणी अब्दुल रसूल भुट्टो अयाज भुट्टो सुलेमान भुट्टो यामीन भुट्टो अली हसन भाबो अली गुल कटवर रजा मोहम्मद मस्तोई सैयद इमराद अली शाह खान मोहम्मद महर मकसूद न्याजी अली मोहम्मद भुमरो अला वराय उलाशारी समेत समूरे आलम इस्लाम पाकिस्तान की आवाम के दिल की गहराइन से ईद उल अज़हा जो लख लख वाधायूं नेक तमनाओं दुआओं पेश कजन थियूं पारा सोना खान मस्तोई जेक बबात राबतो 0304-754-2138 खुशखबरी आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
2: होमियो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
0: DHMS सिंध
2: RHMP इस्लामाबाद
0: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना
2: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी
0: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज
2: कमर दर्द
0: अरकुन हिस्सा
2: जोड़ों का दर्द
0: हेपेटाइटिस
2: वजन की कमी या ज्यादती
0: बे औलादी
2: गंजपन का मुकम्मल इलाज
0: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
2: टाइम
0: हफ्ते से जुमेरात
2: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
0: होम्योपैथिक क्लिनिक
2: 2622-00-440
3: कुर्बानी के जज्बे के साथ ईद मनाएं सबको गले लगाएं बड़ी ईद की बड़ी मुबारक जिए सखर FM 88 की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद उल अज़हा मुबारक हो
4: जनाब वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से अपने तमाम सुनने वालों को जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है वहां वहां तक के तमाम दोस्तों को जनाब एक बार फिर से ईद मुबारक अगेन ईद उल अज़हा का पहला दिन है और बहुत मसरूफ सा दिन है बिल्कुल जनाब हमने ईद की बातें की स्टार्टिंग में ही और कसाईयों की बातें करते हैं जनाब जो कसाई बड़ी मुश्किल से मिल रहे होते हैं और कई दिन पहले ही बुकिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर जब आपका कसाई आपको मिलता है तो फिर उसके बाद क्या होता है जनाब अरे जनाब फिर जब वो मोहल्ले में बकरे बकरे को गिराते हैं तो उस वक्त कुछ मोहल्ले वाले भी होते हैं और जनाब जब मोहल्ले वाले होते हैं तो फिर बहुत सारे मशवरे दे रहे होते हैं इसको ऐसे कर लो इसको वैसे कर लो इस पर ही होते हैं और आप बीच में मैं कसाई की मानो या इन लोगों की जो कि मेरे मोहल्लेदार हैं तो फिर बाज औकात बहुत ज्यादा बंदे हाइपर हो जाते हैं और फिर ग्रीष्म ग्रीष्म तक नौबत आ जाती है क्योंकि एक तो गाय और बकरा नहीं लेट रहा होता ऊपर से फिर इनके मशवरे और कसाई के नखरे ओ गॉड यार बहुत मसला होता है तो अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला हुआ है तो आप जरूर मुझसे शेयर करें आप हमें कॉल करें 0300-111-3488 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें नीचे हमारे फेसबुक पेज पर हमारे फेसबुक आईडी पर भी आप हमें जो है कमेंट्स कर सकते हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम ले दस पाई फेर की हो गया चले जनाब कोई बात नहीं हमारा जो है सिस्टम अगेन से थोड़ा सा वो कहते नहीं कभी कभी होता है तो हो गया है जो कभी कभी होता है तो आप अभी कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ अपने व्यूज भी शेयर कर सकते हैं है जनाब हम बात करते कसाई की और फिर उनके नखरों की तो जनाब आजकल कसाई काफी महंगे हो चुके हैं इतनी गर्मी आ चुकी है और उनके रेट्स भी काफी आई चौहाई हो चुकी है आई थिंक 10,000 जो ज्यादा ले रहे हैं गाय वाय ज़बह करने का और फिर गाय वाय ज़बह करके आपको दे जाते हैं और फिर अपने मनपसंद गोश्त भी अपने पास रखते होते हैं कि नहीं यार आपकी गाय में से हमें पाए भी चाहिए हमें कलेजी भी चाहिए हमें दिल गुर्दा भी चाहिए और हमें कटाकट भी चाहिए तो फिर बहुत सारी चीजें वो लेके उड़ जाते हैं और अपने मन पसंद चीजें भी ले जाते हैं خیر جناب اس طرح تو ہوتا ہے اور بکر عید ہے اور جناب اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو ہے قربانی کو قبول و مقبول عطا فرمائے اپنی بارگاہ الہی میں. اور ایک اور ریکویسٹ ایک بار پھر سے آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ قربانی ہو رہی ہے جناب وہاں پہ جو ہے انتظامیہ کی طرف سے تو صفائیاں ہو ہی رہی ہیں, لیکن آپ بھی اپنی مدد, آپ کے تحت اگر انتظامیہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی یا لیٹ ہو گئی ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ اپنے گلی محلے کو صاف رکھیں, اور جو آپ کو آپ کے گلی

0: मोहल्ले के बाहर जो बड़े बड़े कचरा फेंकने वाले डब्बे पड़े हैं उनमें आप वो आलाइशें फेंकें ताकि उनको इजीली वहां से रिमूव किया जा सके और जो है बदबू से आप सबको निजात मिल सके और आपका गली मोहल्ला साफ हो सके। तो जनाब इसी तरह अपनी सफाई और सुथराई जो है वो हमारे नस्ल ईमान है, तो यकीनी तौर पर एज अ अच्छा इंसान हम सबको अपनी सफाई सुथराई का, अपने मोहल्ले की सफाई सुथराई का खुद ख्याल करना चाहिए। और जनाब गोश पे थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा क्योंकि बाजूकात ऐसा होता है कि अस्पताल में भर जाती हैं और खा के पी के हम लोग लंबे लिए जाते हैं और कहते हैं बहुत थके हुए और फिर जनाब फिर डॉक्टर के पास समय कंसल्ट करना होता है, डॉक्टर के पास जाना होता है, फिर बड़े अजीब अजीब सी चीजें हो जाती हैं हमारे साथ। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि गोश्त है अपने हिस्से का रख लीजिए और इतना ही रखिए जितना हम खा सकें और फिर उस पर इतने ज्यादा हाथ साफ मत कीजिए क्योंकि बंदा परेशान हो जाए कि यार अपनी सेहत को लेकर कभी दांतों का दर्द, कभी दाढ़ का दर्द, कभी पेट का दर्द, कभी सर का दर्द और कभी कमर का दर्द हो जाए। तो जावेद बलोच हमारे साथ इस वक्त हैं, हमें देख रहे हैं, मुजम्मिल हुसैन सोलंगी हमें देख रहे हैं, इरफान अली साहब हमें देख रहे हैं, तो थैंक यू ऑल आप हमें इस वक्त देख रहे हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल और देखते हैं लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम, ले भाई अब होल्ड वाली बात आ गई। नहीं भाई हम होल्ड नहीं कर सकते, हम किसी और को चांस देते हैं। थैंक यू सो मच आप हमारे साथ आए और जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हमारे साथ इरफान अली शाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, अली मदद मेरे नाम शो मिले प्लीज, इरफान अली शाह हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम,
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: के रहता सर सबनी सा गड,
1: सर उस्मान बात कर रहा हूँ मैं रापुर स्टेशन।
0: उस्मान भाई ईद मुबारक आपको।
1: खैर मुबारक है, आपको भी ईद मुबारक।
0: खैर मुबारक, ये बताएं मेहरापुर वाले सारे के सारे कैसे हैं और कैसे ईद गुजार रहे हैं?
1: मेहरापुर वाले बहुत अच्छे हैं और ईद तमाम अच्छी गुजर रही है आज गर्मी के साथ, लेकिन
0: यार गर्मी तो कड़ाकेदार और धमाकेदार है मत पूछे।
1: बहुत बहुत गर्मी एग्जैक्टली बहुत है यहाँ पर भी, यानी कि टेम्परेचर तो हाई है लेकिन फिर भी ईद तो यानी कि अपने
0: ईद तो चल रही है ना, क्या करें ईद तो चलती रहेगी, लेकिन गर्मी से हमने आपके अपने आप को बचाना है और अपने आप को सेव रखना है ताकि हम अच्छे तरीके से ईद गुजार सकें। अच्छा आपने क्या ना बताया, सॉरी
1: उस्मान ने भी बताया मेहरापुर से।
0: अच्छा उस्मान भाई ये बताइए कि आपने ईद का दिन पहले कैसे गुजारा, नमाज के बाद कहीं गए घूमने और क्या क्या खाया पिया, जरा ये बताया हमें।
1: ईद के बाद तो यानी कि शहर में गए वहाँ पर, यानी कि थोड़ा टिक्के वगैरह खाए, यानी कि तो बिरयानी वगैरह बनी हुई थी घर पे।
0: क्या बात है, क्या बात है, मेरे मुंह में पानी आ गया।
1: आपके पास चीज कर दें सर?
0: हाँ वो तो फिर खराब हो जाएगी, गर्मी है ना, मैं आके खा लूंगा आपके पास।
1: एग्जैक्टली ठीक हो गया।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: बाकी सब तमाम मुसलमानों के लिए यही दवा करेंगे कि तमाम मुसलमानों की अल्लाह ताला जो है कुर्बान इतनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे तमाम मुसलमानों की जो है वो खैर फरमाए। आमीन
0: आमीन,
1: कहना था कि बस
0: जी जी। गाना कौन सा सुना है आपने ये बताइए?
1: गाना हमें कोई भी अपनी मर्जी का चला दें, आज आपकी फरमाइश चलेगी समझ।
0: चलें क्या बात है जनाब, थैंक यू सो मच, हम अपनी पसंद पे भी चलाएंगे लेकिन एक फरमाइश आई थी जलाल चांडियो की ना, मैं कहता हूँ अपनी फरमाइश में निपटा दूँ।
1: ठीक है आपकी फरमाइश चलेगी, संगीत के बाद
0: हमारे थैंक यू मेरे प्यारे से भाई, स्वीट से भाई, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें।
1: आमीन आमीन, आपको भी अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। आमीन,
0: थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
1: ओके
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जनाब हमारे साथ हैं जावेद बलोच भाई और जावेद बलोच भाई कह रहे हैं ईद उल अजहा मुबारक हो, आपको भी जावेद भाई ईद उल अजहा बहादुर मुबारक हो। किफायत मार हमारे साथ हैं, औरंगजेब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब कुरैशी को जनाब आई थिंक कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई ओहदा भी मिला है, तो हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि उनको ओहदा मिला है। थैंक यू औरंगजेब कुरैशी भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक अगेन। मुजम्मिल हुसैन सोलंगी कहते हैं भाई जान ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम भाई जान ईद मुबारक टू यू टू। मुख्तार अहमद हमारे साथ मौजूद में देखते हैं, अब्दुल रजाक कहते हैं, मोहम्मद खान कुम्भार, वफा जमाल कुम्भार, उम्मीद अली कुम्भार, हाली पोर्ट्रो, स्टाफ लग जलूरी, मीरपुर खास खान, थैंक यू सो मच अदा अब्दुल रजाक भाई, ईद मुबारक अशफाक भाई, सदा खुश सलामत रहें, आप भी मेरे प्यारे मुख्तार भाई। अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे साथ?
2: अब्दुल रहीम,
0: अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान,
2: अब्दुल रहीम,
0: अब्दुल रहीम कैसे हैं अब्दुल रहीम साहब आप?
2: बिल्कुल ठीक ठाक
0: ॿुधायो, अलहमदिल्ला मां बिल्कुल ठीक ठाक आहियां, तव्हां ॿुधायो त ईद जो ॾींहुं तव्हां जो कीअं गुज़रियो?
2: माशाल्लाह जबरदस्त गुज़रियो सर।
0: हा जबरदस्त, छा खाधो पीतव, छा इंजॉय कयो?
2: वेरी
0: गुड वेरी गुड जबरदस्त माना तुम बिल्कुल सीट बेल्ट बधे पाया होता पर हाँ न छा गोश्त के बस हाँ हर शे खाई बिरयानी भी खाई कढ़ाई भी खाई कबाब भी खाई हाँ इनशाला इनशाला इनशाला तुम खाओ पियो ऐश कर पर थोड़ी पानी सेहत भी ख्याल कर वाकई वाकई वाकई गर्मी लाई या न गोश असि गिठी में पैज वे
2: बिल्कुल
0: सही हाँ अदा जलाल चांदो तक बुधान वो आया कें नाले था कर चाहो सभी के
2: बिल्कुल
0: थैंक यू सो मच अदा
2: ओके
0: बहुत प्यारे से कॉलर जनाब हमारे साथ हैं इस वक्त फेसबुक के थ्रू कदीर अहमद भाई भी हमें देख रहे हैं हमें सुन रहे हैं और जनाब हमारे शो को भी एंजॉय कर रहे होंगे तो आप भी अगर फेसबुक के थ्रू आना चाहते हैं तो जनाब हमारी आईडी पे आ जाइए अशफाक नियाज़ी सर्च कीजिए फेसबुक पे हम आपके पास आएंगे और स्टार भी दीजिए ऊपर स्टार का ऑप्शन है आप उसको भी क्लिक करके स्टार हमें दे सकते हैं अस्सलाम वालेकुम खैर मुबारकू खैर मुबारकू केर असा सभी सा गड अमीर बख्श मंगर हाट साहब तांके खोड़ सारी विद जी मुबारकू
2: खैर
0: मुबारक खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब मस्त लगा पियान सब ठीक लगा पियान यो बुधायो तांजी ईद की गुजरी
2: अल्लाह
0: वाह वाह वाह वाह जबरदस्त माना ईद सुठी पे गुजरे तांजी
2: अल्लाह जो शुक्र अल्लाह सही अल्लाह सही तरीके महंगाई त हर शो की चढ़ी आला सही हलाए तो
0: अल्लाह सही हलाए तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मैं गानों तो प्ले क्या जलाल चांडे जो कैसे नारा थे करना चाहो
2: गान दोस्त मोहम्मद अली मार अलादा अली मार
0: जी जी
2: दिला बंगार पठान खान पटकर अर्ज थी
0: हाजिर हाजिर हुक्म
2: हकम जिसकानी प्रोग्राम छोक कर मिरापुर करे तो
0: अच्छा मुख्य खबर ना तो मैं पुछा कर वही तुम पे प्रोग्राम में इनशाला ता...
2: साहब आगे सकर से कह हाँ कौन तो करे
0: अच्छा न तो करे तो मसरूफियात होंगी अदे जी थैंक यू सो मच थैंक यू जी जनाब हमारे साथ हैं जहांगीर अंसारी इस वक्त ईद उल अज़हा मुबारक हो आपको भी जहांगीर अंसारी बहुत बहुत मुबारक हो और आप हमेशा खुश रहें किफायत मार हैं कहते हैं छोबा कावड़ छा असां के गोश्त न मिलो अदा किफायत गोश्त तांके मिलंदो तवां अचो तांके गोश्त खोड़ मिलंदो अनीस अली अंसारी हमें देख रहे हैं अजीज शेख हमें देख रहे हैं तो चलते हैं जनाब एक अदद कमर्शियल ब्रेक की जानिब हमारे साथ रहिएगा
3: खुशियों कुर्बानी और मोहब्बत का त्यौहार जी एस अखर FM 88 की जानिब से ईद उल अजहा मुबारक दुआ है कि ये ईद आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए खुशखबरी बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई वधाई वई है जी हाँ साल 2026 के लिए दाखिलाओं जारी हैं मुख्तलिफ शोबन में BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी BS कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिजिक्स रियाजी शुमारियात जैसा अहम प्रोग्राम्स ह्यूमन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी BS chemistry, BS biotechnology, BS environmental science, English Islamic studies, B.Ed 4 sala, MS education 2 sala. Mustahiq shagirdyan lai scholarships bhi maujood. Eligibility and deadline. Ghatne ghat 50% marku intermediate lazmi. Umr ki had 35 saal. Form jama karane ki aakhri tareekh 5 June 2026 tai batayi gayi hai. Lihaza der na kareo. Online apply kareo. www.apy.bnbwu.edu.pk गर्मी थकावट या दिल की बेचैनी महसूस करो पिया हाने परेशान थियण की जरूरत ना है पेश आहे शरबत रूहे राहत कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवां के दे ताजगी सुकून आई हकीकी राहत दिल की धड़कन के मुतवाजन रखण गर्मी के असर के घटाएं आई जिस्म के तवाने देण लाए शरबत रूहे राहत रोजाना सिर्फ एक गिलास आई महसूस करो थकावट का आजादी कीमत सिर्फ 450 रुपया शरबत रूहे राहत मिलने जो हां سند مدنی طبی دواخانو رجسٹرڈ فیض محمد روڈ گوشت بازار غریب آباد سکھر خمیس آئے جمعہ ملنا جو ہند مدنی طبی دواخانہ مسان روڈ نزد لالا شہزادہ چوک روہڑی رابطو 0302-36-26-174 عید الاضحیٰ جے ہن برکتن بھرے خوشن سا مہکندڑ آئے روحانی اہمیت وارے پر مسرت موقع تھے نذیر کھوسو پارا سمورن مسلمان بھائرن بھینرن کے دل جی گہرائن سا عید الاضحیٰ جوں لکھ لکھ وادھائیوں نیک تمناؤں آئیں دعاؤں پیش کجن تھیوں اللہ پاک دعا آئے تھے یہ عید اماں جی زندگی میں امن خوشحالی صحت آئیں بے شمار خوشیوں آنے پارا نذیر کھوسو بلوچستان رابطے لائے 0343-83-02-796 ہمارے شہر سکھر میں ہومیوپیتھک میں 43 سالن جو تجربہ رکھندڑ پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد مریضن جو معائنو کرے رہو ہے ہر قسم کے آسابی امراض جوڑن جو سور میدے میں جلن قبض تیزابیت گردن جی پتھری بواسیر ہاضمے جی خرابی بین بیمارن جو بغیر آپریشن ہومیوپیتھک طریقہ علاج مطابق مریضن جو علاج کرے رہو ہے پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان روزانہ صبح 10 کا شام 5 تائیں جمعہ موکل ایڈریس آغا ہومیوپیتھک کلینک پولیس ہیڈ کوارٹر چوک سکھر رابطے سے لائے 0326-22-00-440 عید قربا کا پیغام ہے ایثار محبت اور بھائی چارے کا آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جی اے سکھر ایف ایم 88 کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بہت ساری مبارکباد
0: آپ کا اپنا اشفاق نیازی آ چکا ہے آپ کے ساتھ آفٹر لمبی چوڑی کمرشل بریک گانا بھی شانہ بھی پلے کریں لیکن آپ کی کال بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں لیتے ہیں شو کی ایک اور کال تمام سننے والوں کو ایک بار پھر سے عید مبارک السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ادا سبنی سان گھر عید مبارک وقار بھا تاجا کیڑا حال چال ہے تاجے گوٹھ وارا سب کھین
4: الحمد للہ سر جو مالک جائے تان تو مجھے پروگرام مجھے جائے سر ہوتا ہے ماشاءاللہ خوبصورت پروگرام ہے سر
0: تھینک یو سو مچ ادا تاں جی سماتوں خوبصورت ہیں تاں پان خوبصورت آئے ہو ان لائے تاں کے ہر شے خوبصورت لگندی آئے
4: بس آفاجا تاں سے تاں کے ہمیں سے دعا ہیں تاں سدا سچ جو سر
0: آمین جکرانی بھائی بدھائیو چھا کھندا آئے ہو
4: جی سر راکھی کندا آئے درپا جو زمین آئے وہ راکھی کندا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست اللہ تاں کے خوش رکھے یہ بدھائیو عید جو دیہاڑو کی گزرے تو تاں جو
4: تمام گزر سر تمام ماشاء اللہ یہ گزرے پروگرام پروگرام
0: واہ واہ واہ واہ گوٹ ہوجائے اتاک ہوجائے تھدی ہوا ہوجائے بھی چھا کھپے گرمی سر میں آئے اچھا اتنے تو سفا ٹائٹ گرمی لگی بھیا
4: جی سر جی
0: اچھا ادا میں تمہیں گانا بدائن والا ہاں سجن بھائی گڈ ہوا سے بھائی جلال چانڈ کنجے نال کرنا چاہو ہلو جکرانی بھا گال ویو ہیلو کال تو ہلے تھی پر تاجی آواز نتی اچے اصل سبھی سے گلائن شبیر حسین بھٹو چون تھا اوکے عید مبارک بھائی سکندر علی چون تھا صبح سے جاب میں بزی ہوں آج نیوز میں اوکے جناب وش یو بیسٹ آف لک آگا جبار کو میں نے پارٹی کا کہا تھا تو کہتے ہیں انویسٹر بابر صاحب بالکل جناب آپ منا لیں ان کو اور اچھی سی پارٹی ارینج کریں جکرانی بھائی ہمارے ساتھ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں اور اب لیتے ہیں شو کی ایک اور کال السلام علیکم خیر مبارک مجھا پیارا بھا نالو چاہے کتنا پیا گل اچھا اچھا اچھا اچھا کہڑا حال چال ندا تاکہ عید مبارک ہوجے تھینک یو مکھے لگے تو ہانے تو نڈ میں اتے آؤ اچھا اچھا سویل جو اٹھا عید جو دہاڑو کی تھا گزارو اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بتایا جلال چاند جو گانا بدھائن والا کھینچے نالے کرنا چاہو
4: جلال
0: چاند ہاں الہی فرمائش آئی ہے تو جلال چاند بدھاؤ اچھا اچھا جی
4: جی
0: جی صحیح थैंक यू, थैंक यू सो मच। मन असि पूरी टीम के तरफा ही मुबारक
5: जी जी जी
0: थैंक यू ते भी असि पूरी टीम की तरफा खैर मुबारक अदा ईद मुबारक भी थैंक यू जी जनाब। अब हम चलते हैं एक जबरदस्त सॉन्ग की जानिब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हादी किंग 47 हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त हमारा शो सुन रहे हैं। तो हादी किंग 47 को हमारी टीम की तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी ईद। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराते रखे। हादी किंग साहब 47 आप हमें सुनते रहें और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। और जलाल चांडू का गाना जनाब हम डेडिकेट करते हैं हादी किंग 47 को और अपने तमाम दोस्तों को। तो सुनिए और हमारे साथ रहिए।

0: कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं जज्बात और ख्वाहिशात की भी होती है। ईद उल अजहा का पैगाम है खुलूस और कुर्बत का। जे सखर एफएम 88 की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक।
1: अब आप सुनेंगे जे एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट के तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अमां के शहर सखर में मेदे जा मसला गैस बदहजमी कब्ज खूनी ऐं बादी बवासीर जनाना बीमार समेत बिन मर्जन जो इलाज करे रहो आहे। रोजाना सुबह 9 बजे का शाम 5 बजे ताई जुम्मो मोकल। एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप नज़द PSO पेट्रोल पंप रेस कोर्स रोड सखर। राब्ते जे लाइ 03112082600 ऐं 03333741411।

वजीरन कौमी असेंबली जे स्पीकर अयाज सादिक गिलगित जे वडे वजीर ऐं बियनि सां बि फोन ते राब्तो करे ईद जूं वादायूं डिनियूं ऐं मुल्क जी मजमूई सियासी सूरतहाल ते तरजीह डे॒ वठि कई। शहबाज़ चयो त हुकूमत अवाम खे वधि खां वधि रिलीफ फराहम करण जी कोशिश करे रही आहे। अल्लाह ताला पाकिस्तान खे अमन तरक्की ऐं खुशहाली अता फरमाए ऐं क़ौम खे एके जी दौलत सां नवाज़े।

0: वकील बाशन सैयद आसिम मुनीर ईद उल अज़हा बलोचिस्तान के जिले सोप में अगे मोर्चन से मुकर्र जवान से गड मलाई मुल्क की सलामती खुशहाली लाए खास दुआं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है दुश्मन के नापाक इरादन के हर कीमत से नाकाम बनाईंदी भारतीय सरपरस्ती में थीदड़ दहशतगर्दी बर्दाश्त होगी ना दहशतगर्दी जो मुस्तलानियों कार्रवाईं कौम के हौसले के कमजोर थी कर सकन बलोचिस्तान की आवाम से गड़ी दहशतगर्द जो आखिरी हद तीन पीछो जारी रहा आईएसपीआर मौजिक फील्ड मार्शल जवान से गड ईद नमाज पढ़ी ए खेन वाधाई डिन्नू जवान के जज्बे की सारा फील्ड मार्शल शहीद की यादगार से हाजिरी भी भरी सदर आसिफ अली जरदारी ए वजीर आजम शहबाज शरीफ कौम के ईद उल अज़हा जो वाधाई सदर आसिफ अली जरदारी है ईद उल अज़हा अता इलाही सबर अखलाक ईसार जो अजीम सबक दे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी राह है कुर्बानी रुगो मजहबी फर्ज न पर मुकम्मल अखलाकी पैगाम है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी ए खुदा के अतान जो दर्स दे आला मकसद लाए जान ख्वाहिशों मफाद कुर्बान करण ईमान जो महराज है पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी स्पीकर कौमी असेंबली या सादिक वफाकी घर से मोहसिन नकवी ए बेन पारा भी कौम के ईद जो वाधायूं
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ईद उल अज़हा के पुर मुसर्रत मौके पर जीए सखर FM 88 की जानिब से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद
3: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास चेहरे के दाग धब्बे खेल महासे और बेजानपन अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार नरमी ताजगी और कुदरती चमक सावली रंगत अब नहीं सिर्फ 3 दिन में पाए साफ निखरी और गोरी रंगत लेकिन याद रखें बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092 बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो
4: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे बारन जे बेहतरीन करियर ए रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर ए मनियल इधारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग ए फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाए दाखिलों जो शानदार ऐलान हाने पेंजे बारन के बनायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM ए 5 साल DPD जनेटर 2 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV CMW ICNA ऐं खास गाल मुस्तहक शागिर्दन लाए स्कॉलरशिप्स पिण मौजूद आहिन जने हिते 2 सालन जे कोर्सेज में दाखिला बिल्कुल फ्री आहे सहूलियतूं ऐं मान्यता असां वटि मौजूद आहे स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस AC क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी हॉस्टल ऐं पिक एंड ड्रॉप जी सहूलियत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंजूर थियल ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां मुकमल तस्लीम थियल आहे दाखिला महदूद आहिनि तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर फोन नंबर 0715635642 0300-8311-207 खुशखबरी बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराने जी आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई वधाई वई आहे जी हाँ साल 2026 जे लाए दाखिलाऊं जारी आहिन मुख्तलिफ शोबन में बी

0: S Management and Technology, B S Computer Science, Artificial Intelligence, and Physics, Riyazi, and Shumariya Jeda AM Programs, Human and Rehabilitation Department, Doctor of Physical Therapy, B S Chemistry, B S Biotechnology, B S Environmental Science, English, Islamic Studies, B Ed Charsala, M S Education Basala, Mustahik Shagirdyan Lai Scholarships bhi maujood. Eligibility and Deadline, ghat mein ghat 50% Marku Intermediate Lazmi, Umirzi Had 35 Saal, Form Jama Karan Ji Akhri Tariq 5 June 2026 Taim Vadai Vaya Hai, Lehaza Der Na Kareo, Online Apply Kareo, www.apy.bnbwu.edu.pk.
1: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक एनआईसीबीडी रोड सखर हैदराबाद एंड लाड़काने जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी डीएचएमएस आरएचएमपी इस्लामाबाद जोड़न संदन जो सूर कुंदरग जो सूर कंघे जो सूर हडन जो भुरण अध मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जो सूर खारिश बारन में कद जो न वधण मोटापो इन खां अलावा पित्ते गुर्दे ऐं मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो टाइम सुबुह 10 खां शाम 6 वगे ताईं एड्रेस सखर होम्योपैथिक क्लिनिक नज़ दिलवारी अस्पताल सखर हर जुमे आचार से चेकअप फीस बिल्कुल मुफ्त रश का बचण नंबर वठण ला 0327 84 60 746
2: कुर्बानी मोहब्बत ईसार और खुशियों का त्यौहार यही दिन हमें सिखाता है कि दूसरों की खुशियों में शामिल होना ही असल इबादत है इसी खूबसूरत मौके पर हम मात फार्म्स की जानिब से आपको और आपके अहले खाना को दिल की गहराइयों से ईद उल अजहा की ढेरों खुशियां मुबारक हों खालिस मयार खालिस एतमाद खालिस सरसों का ऑयल और खालिस गंदुम का बेहतरीन बीज अब आपकी खिदमत में सिर्फ हम मात फार्म्स के साथ इस ईद पर अपनों के साथ खुशियां बांटें मोहब्बतें पढ़ाएं और सेहतमंद जिंदगी का इंतखाब करें हम मात फार्म्स खालिस सरसों का ऑयल और मयारी गंदम के बीज बनाने वाले ईद उल अजहा मुबारक
0: गर्मी थकावट या दिल की बेचैनी महसूस कर पाया हाने परेशान थियण की जरूरत ना है पेश आहे शरबत रूहे राहत कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवा के दे ताजगी सुकून ऐं हकीकी राहत दिल की धड़कन के मुतवाजन रखण गर्मी के असर के घटाएं ऐं जिस्म के तवाने देण लाए शरबत रूहे राहत रोजानो सिर्फ एक गिलास ऐं महसूस करियो थकावट का आजादी कीमत सिर्फ 450 रुपया शरबत रूहे राहत मिलण जो हंध मदनी तिबी दवाखानो रजिस्टर्ड फेज मोहम्मद रोड गोश्त बाजार खरीबाबाद सखर खमीस ऐं जुमो मिलण जो हंध मदनी तिबी दवाखाना मसान रोड नज़ लाला शहजादा चौक रोहड़ी राब्तो 0302-36-26-176
3: कुर्बानी के जज्बे के साथ ईद मनाएं सबको गले लगाएं बड़ी ईद की बड़ी मुबारक जीए सखर एफएम 88 की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद उल अजहा मुबारक हो
4: जी जना वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से आपका अपना शफाक आ चुका है आपके साथ एक घंटा हमने और आपने साथ गुजारा ईद का पहला दिन और जनाब ईद के पहले दिन हमारा शो है ईद की धूम विद अशफाक नियाज़ी हमारे साथ है नजीर खोसो सोबतपुर बलूचिस्तान से कहते हैं अगर इंसान खुश हो तो उसे बारिश की बूंदें हंसती और मुस्कुराती और परिंदे गीत गाते नजर आते हैं उदास इंसान के लिए यही बादल गिरिया करते दिखाई देने लगते हैं सब मौसम इंसान के अंदर होते हैं जैसा मोड हो वैसा मंजर होता है मौसम तो इंसान के अंदर होता है क्या बात है जनाब नजीर खोसो साहब आपने बहुत प्यारी सी बात की और वाकई इंसान के अंदर का मौसम अगर अच्छा हो तो उसे बाहर की गर्मी बाहर की तपिश बाहर की बरसात बाहर का सब कुछ बहुत अच्छा लगता है लेकिन अगर इंसान के मौसम का अंदर का मौसम ही अच्छा ना हो तो फिर उसे बाहर के अच्छे मौसम भी बुरे लगते हैं तो हमारी यही दुआ कि तमाम लोगों के अंदर का मौसम बहुत अच्छा हो ताकि उन्हें बाहर के हर मौसम से वो लुत्फंदोज हो सके अली रजा तुमरानी हमारे साथ मौजूद हैं ईद मुबारक कहते हैं थैंक यू सो मच अली रजा तुमरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हलीम लाशारी हमारे साथ मौजूद है जो कि इस वक्त हमें सुन रहे हैं हमें देख रहे हैं वो भी हमें ईद मुबारक कहते हैं थैंक यू सो मच हलीम लाशारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हैं हमें सुन रहे हैं और जनाब हमारे साथ साथ मौजूद हैं 6:14 हुआ चाहते हैं शाम के ढलते साए धूप बदस्तूर वैसी है और गर्मी बदस्तूर वैसी है आप लोग यकीनी तौर पर बहुत सारी मसरूफियात में मसरूफ अमल होंगे और उनमें से एक मसरूफियत है हमें सुन रहे होंगे लेते शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम अस्सलाम
4: कौन हमारे साथ
5: आपको सबसे पहले ईद मुबारक।
4: मुबारक।
5: नसीम बात कर रहा हूँ, तेरा मोरो से।
4: नसीम
5: हाफिज लखमीर मोरो।
4: हाफिज लखमीर मोरो, कैसे हैं भाई मोरो वाले हाफिज लखमीर साहब? अलहमदिल्ला तव्हां भाउरनि जी दुआऊं मूं वटि मौजूदु आहिनि। मोरो जा मौसम कीअं आहे?
5: सर मोरो जा मौसम इहो आहे जो गर्मी हुई अलहमदिल्ला।
4: माशाला
5: अलाह पाक अव्हांखे बि पिछले चइनि भलाणे ॾींहं जी सदकी अव्हांखे मदीने वारे साईं जी ज़ियारत नसीब फरमाए।
4: हज़रत
5: इमाम हुसैन हुसैन जी सदकी में
4: आमीन सुमा आमीन। हाफिज़ साहब इहो ॿुधायो त जेका माण्हू गोश्त फ्रीज़ करे रखंदा आहिनि पंहिंजे खाइण लाइ रखंदा आहिनि ऐं ग़रीबनि मुस्तहक़िन में न ॾींदा आहिनि त हुन लाइ छा चवणु चाहियो था?
5: सर मां हुननि खे इहो चवणु चाहियूं था त भई क़ुर्बानी हूंदी जेका आहे, जेका असांजे क़ुर्बानी ख़र्च कई वई आहे, त सभु खां पहिरां जेके असां माज़ूर आहियूं या जेके असां ग़रीब आहियूं त पहिरां सभ खां पहिरां उनजो हक़ आहे,
4: उन्हनि जो हक़ आहे।
5: हिन खां पोइ जेको आहे सो भली अगरि पाण वटि रखे त रखी सघे थो।
4: बिल्कुलु बिल्कुलु, पहिरियां हिसो ग़रीबनि जो आहे, पोइ ॿियो हिसो तव्हां पंहिंजे लाइ रखो था भले रखो।
5: सर असांजी फरमाइश ॿुधायो।
4: जी जी, कहिड़ी कहिड़ी कहिड़ी अच्छा माना तव्हां सभु इहो इहो वेदन आहे?
5: हा इहो असांखे कलम ज़रूरु ॿुधाइजो, बसि महिरबानी कजो।
4: हाज़िर हाज़िर हाज़िर।
5: असांजा दोस्त आहिनि आरती गुलाब खां भेण ऐं सर मंसूर साहिबु साहिब जवाहर मोहन जकल छमाणी साहब ऐं इंदास छा बुखारे साहब।
4: अच्छा,
5: आपिस साउन दिल्ली साहब
4: मां लॻाए छॾियो आहे, इनशा ताला प्ले कंदुमि थोरी देरि में। थैंक यू सो मच अदा, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जनाब हाफिज साहब फ्रॉम मोरो, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 हमारा नंबर है। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
6: जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।
4: केर अदा सां सभिनी सां गॾु तव्हांखे ईद मुबारक। थैंक यू, थैंक यू सो मच अदा। तव्हां ॿुधायो तव्हांजा कहिड़ा हाल चाल आहिनि?
6: अलहमदिल्ला अलाह पाक जा करम ऐं शुक्र ख़ुदा तव्हांजी दुआऊं। सर
4: अच्छा अदा, थोरो हिकु मिंट ख़ामोश कंदव?
6: जी जी,
4: हिकु मिनट।
7: It's 6:15 p.m.
8: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin to Raz, a product by Biocon International Pakistan.
4: Ji, welcome back once again. Ji, ada haane budhayo.
6: Ji ji sir, mera prashan wala hai Khurshid sir.
4: Khurshid bha, keda hal chal hai, cha kanda ayo Eid jo dihare to jo kiye guzre to?
6: Sir alhamdulillah Allah ja karam un dua un dawan ju da bhairan ju.
4: Ji ji.
6: जी जी अलहमदिल्ला शुक्र आहे।
4: माशाला माशाला, त गर्मी पए थी तव्हांजे ॻोठ में या थोरो सही मौसम थी वियो आहे?
6: सर गर्मी आहे, बिल्कुलु गर्मी जो मौसम आहे सर हींअर।
4: हा अच्छा अदा, मूंखे इहो ॿुधायो, जेका माण्हू क़ुर्बानी कंदा आहिनि ऐं हुनजे बाद जेका आहे पंहिंजे घिटी पंहिंजे मोहल्ले खे साफ़ कोन कंदा आहिनि, उन लाइ छा चवण चाहियो था त बाबा कोई नसीहत ॾे हुननि खे त किन कचरो जेको आहे पंहिंजे जेका मौजूदा स्पॉट्स आहिनि हुननि ते उछलायो न, या बसि हर जॻह ते किन कचरो पियो हूंदो आहे?
6: अरे बिल्कुलु, इहा तव्हांजी बहितरीन ॻाल्हि आहे। जेको गंद किचरो आहे हिन असांखे वधि में वधि सफ़ाई करणु घुरिजे, ऐं सफ़ाई निस ईमान आहे ऐं असांजे नबी साईं जो ख़ुदि फरमान आहे त बाबा सफ़ाई रखो, सफ़ाई निस ईमान आहे। जेको सफ़ाई रखे थो उहो अलहमदिल्ला हुनजी सिहत साफ़ सुथरो रहंदो।
4: बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु, ऐं तव्हांजो पाड़ो अगरि सुथरो हूंदो साफ़ हूंदो त माण्हू तव्हांजी तारीफ़ कंदा न, त माना तव्हां क़ुर्बानी बि कई आहे ऐं कुझु बि न आहे, माना साफ़ शफ़ाफ़ लॻो पियो आहे।
6: हा
4: जी जी जी जी जी जी। अदा मां गानो ॿुधाइण वारो आहियां, ईद आ गई मेरे यार नहीं आया, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो?
6: सर तव्हांखे
4: हांजी
6: कुझु दोस्त बि आहिनि।
4: जी जी बिल्कुलु,
6: सभ खां पहिरां मुंहिंजो मोहम्मद इमरान आहे, इब्राहिम शाह
4: जी जी,
6: ऐं महमून शाह
4: जी जी, ख़ैर मुबारक, ख़ैर मुबारक अदा, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो ऐं हमेशह खिलंदा मुस्कुराईंदा रहो।
6: वरी महिरबानी,
4: थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जनाब, हमारे साथ बहुत प्यारे से कॉलर, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हाथ पे हाथ रखे मत बैठे, क्योंकि हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल जनाब, बहुत सारे प्लान दिमाग में बनते हैं और वहीं से खत्म हो जाते हैं, इसलिए अमली जामा बनाने के लिए इनको आप को अमल करना होगा, और आपको वो चवंदा ना चुरण पुरण पवंदो चुरो पूरो कॉल भी नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
9: साईं वालेकुम सलाम
4: वफ़ा वही जितो ही असां सभिनी सां गॾु आहिनि
9: साईं बिल्कुल बिल्कुल
4: ॾिसो मां तव्हांजी आवाज़ खे तव्हांखे सुञाणे थो वञा
9: बिल्कुल बिल्कुल साईं वफ़ा अब्दुल वहीद जतो ही केटी शाह बिलो
4: केटी शाह
9: सखर आहे माना रोड़ी ऐं सखर जे विच ते
4: वाह वाह वाह वाह मज़ा माना रोड़ी था बि वठो था सखर था बि वठो था ख़ुशि नसीब
9: दरिया जे कड़ ते ॻोठ आहे
4: वाह वाह ईद मुबारक
9: साईं ख़ैर मुबारक
4: ख़ैर मुबारक
9: अॻमी त तव्हांखे स्पेशली भाजपा कंदासीं ईद मुबारक आहे वफ़ा अब्दुल वहीद जते तरफ़ो ऐं तव्हांजे सॼी टीम खे जी भाई बाबर आहे जी भाजी सुमेरा ताणी आहे जन ऐं जा रुखसार आहे इन खे ईद मुबारक पर सिक भरियो सलाम बि
4: वालेकुम असलाम वफ़ा भाउ तव्हां इहो ॿुधायो ईद तव्हांजी कीअं गुज़रे थी
9: साईं सुठी सुठी बहितरीन छो त महांग बिल्कुलु आहे पर असां हिमत न हाराई आहे असां हद अंदर जेको ख़र्च आहे उहो कयो आहे मिसाल पंहिंजो लटो कपिड़ो ज़मानो बाक़ी बिल्कुलु महांग पाए ईद बहितरीन गुज़री मिटनि माइटनि सां
4: गुज़ारीसीं
9: पंहिंजे ईद ॻोठ में पोइ मिटनि माइटनि ते बि गस्त लॻायासीं
4: माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त माना मिटनि माइटनि खां बि माना ईद करे आया आहियो तव्हां
9: जी जी बिल्कुलु
4: अच्छा इहो ॿुधायो त उस ई तव्हां कई आहे
9: सही न आहे बाक़ी अॼु न कई आहे बाक़ी सुबुह जी हिकिड़ो भाङू खणबो आहे नी मिसाल सत भाङा हूंदा
4: आहिनि पती जेके चवंदा आहिनि
9: हा उन में इनशाला फजर उमेद आहे त खणंदासीं
4: अच्छा इहो ॿुधायो त कसाई कयो अथव बुकिंग या पाण कंदव हुनखे
9: न पाण पाण
4: हा सही आहे कसाई त इलाही नखरा थी विया आहिनि
9: बिल्कुलु बिल्कुलु
4: सही पाण हा बिल्कुलु ठीकु आहे त इहो ॿुधायो हाणे हिकिड़ो दोस्त मूंखे फरमाइश कई आहे हाफ़िज़ साहिब
9: दोस्त फरमाइश करे पर जेको तव्हां टॉपिक आहे त इन ते त कुझु ॻाल्हायो न
4: कहिड़ो टॉपिक
9: जेको तव्हां चओ पिया
4: सफ़ाई जे हवाले सां
9: हा त सफ़ाई जे हवाले सां
4: जी बिल्कुलु तव्हां ॻाल्हायो तव्हांखे खुली छूट
9: आहे ईअं आहे त मिसाल हाणे तूं पंहिंजे दर जे अॻियां जा किथे बि उज़ाई कई आहे
4: जी जी
9: त उहा तोखे सफ़ाई करण आहे मिसाल
4: बिल्कुलु
9: वरी अॻियां मां कई आहे मूंखे सफ़ाई करणी आहे बाक़ी जे हथ हथ ते ॾेई वेही रहंदा त बाबा सरकार ईंदी उहा खणंदी त पोइ इहो पंहिंजे लाइ मसलो बणबो
4: पंहिंजे लाइ मसलो बणबो छो त सरकार किथे किथे पुजंदी भाउ सरकार करे त अथी पर हाणे सरकार जा माण्हू बि कुझु अहिड़ा आहिनि जेका थोरा घणा सुस्त आहिनि असां जहिड़ा त पोइ किथे पुजनि था किथे नथा पुजनि पर कोशिश त करे थी न पर पंहिंजे पाड़े जी पंहिंजे घिटी जी सफ़ाई त असांजो फर्ज़ आहे न
9: बिल्कुलु ज़ाहिर ॻाल्हि आहे
4: जंहिंजे ताईं सरकार न ईंदी असां धप में मरी वेंदासीं
9: नंढड़ो अर्ज़ु
4: जी जी
9: त माशाला तव्हांजे प्रोग्राम में सुठी कालंग हले थी मुंहिंजा त पघर निकिरी पिया पर माशाला काल लॻी वई
4: अच्छा वाह वाह वाह वाह
9: अॻिले मां तोखे जुमी ते जेको अॻियूं प्रोग्राम जलाल चयो मां पर कोन ॿुधायो तोड़ त मां कनाए कनाए थकी
4: जलाल हाणे तव्हांखे ॿुधायो थोरी देरि पहिरीं
9: न उहो त अॻु हाणे ॿुधायो न उहो मां बिल्कुलु ॿुधो पर मां अॻिले हुन जी थो ॻाल्हि कयां भई हाणे असांखे नगमो जेको हे हाणे अदो अलॻि कहिड़ो मास्टर मंदुरु चयो नी
4: ओके
9: इहो ई मूंखे ॿुधाए जो स्पेशली पर ना कजो हर साईं
4: मास्टर मंदुरु जो कहिड़ो
9: जेको हे दोस्त ॿुधायो त मूंखे हे नगमो ॿुधायो
4: ईद आहे गई मेरा यार नी आयो
9: हा त इहो मास्टर जो आहे नी
4: अच्छा मास्टर जो आहे न हे त मुंहिंजी ॻाल्हि नदीम अब्बास लूने वाले जो आहे
9: उहो हूंदो मुख़्तलिफ़ भरे मास्टर जे आवाज़ में अथव
4: हा हे पंजाब जो नदीम आहे ऐं असांजो मास्टर आहे
9: मां सां कुझु भार बि आहिनि भाटिया बि आहिनि
4: पर हिकु ॻाल्हि त ॿुधायो तव्हां चयो त मूंखे पघर अची विया भला छो तव्हां वेही वेही नंबर न मिलाईंदा
9: आहियो
4: साईं
9: उहो हीअं काल अॼु मिलंदी हले न मिलंदी छो जो ईद मौक़े विया नी
4: हा सही सही
9: इन जे करे
4: ओके ओके ओके ओके
9: कंहिंखे भार बि आहिनि
4: जी जी
9: भाटिया अथनि नंढड़ो भाटियो आली रज़ा जेको हिन वक़्तु कन ॾिनी रेडियो ॿुधे थो अली रज़ा खोड़ सारा सलाम ॾे वरितो ऐं मुंहिंजो भाउ आहे ज़हीर में जतो मुंहिंजो भाटियो आया त मुंहिंजो जतो ऐं आस बि चाचर आहे लाड़काणी खां
4: जी
9: ऐं तंहिंखां बाद में बाबर शेख साहिब खोड़ सारा सलाम ऐं भाणी जा मुंहिंजो रफ़ीक जतो जे ॿुधे थो त भाणी जी रफ़ीक जतो ईद मुबारक बि बाक़ी जेके ॿुधनि था वफ़ा अब्दुल वहीद जते पारो ईद मुबारक बि ऐं बाय बाय
4: थैंक यू सो मच भाणे जो वरी गोश्त खाइण में फ्री हूंदो थैंक यू दा जी जनाब गोश्त भी खाइए ईद भी मनाइए दोस्तों के साथ मिलिए भी सही और जनाब इस ईद को शानदार भी बनाइए और हाँ मुझे भी कॉल कीजिए आपके साथ हूँ मैं शाम के 7 बजे तक और ईद के तीनों दिन मैं आपके साथ आऊंगा और 5 से 7 तीन दिन आपके साथ होगा हमारा और आपका साथ और हम और आप मजे करेंगे जनाब ईद के शो ईद की धूम में लेते शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम सबनी सागर कश्मोर वाला भाग केड़ा हाल चाल है न माशाल्लाह माशाल्लाह ईद मुबारक हुजे तव्हांखे थैंक यू ईद कीअं था गुज़ारियो था
10: फर्स्ट क्लास
4: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह तव्हांखे असांजो प्रोग्राम कीअं थो लॻे? अच्छा एवन हा एवन प्रोग्राम में गानो थो ॿुधायां, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? सही सही सही, तव्हांजी कॉल बि ड्रॉप थी, तव्हांजी सिग्नल ड्रॉप थियनि था दादा। ओके सर, कश्मोर खां असां सभिनी सां गॾु हुयो प्यारा भाउ, ऐं हाणे वठूं था शो जी हिकिड़ी ॿी नेक्स्ट कॉल, ॾिसूं था लाइन ते असां सभिनी सां गॾु केरु आहे। ईद मुबारक तमामु सभिनी दोस्तनि खे जेका असांखे हिन वक़्तु ॿुधनि था, जिते जिते असांजी आवाज़ वञे थी, तव्हां असांखे कॉल करे सघो था 03000113488। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
10: वालेकुम सलाम।
4: केरु था असां सभिनी सां गॾु? जावेद भलोच साहब, तव्हांखे सभिनी खां पहिरीं ईद मुबारक। ख़ैर मुबारक, ख़ैर मुबारक। ईद इहे त ॿुधायो, ईद कीअं थी गुज़री तव्हांजी? सुठी गुज़री थी माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सुठी ॻाल्हि आहे। त इहो ॿुधायो, गानो थो ॿुधायां, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? जी जी, तव्हांजा सिग्नल ड्रॉप। जी जी जी जी
10: जी जी, दोस्त चार पंज
4: सही। ओके ओके, घणे घणे तव्हांजा सलाम पहुची विया दादा, थैंक यू सो मच, तव्हांजी आवाज़ ड्रॉप थी, आई एम सॉरी। असां सभिनी सां गॾु आहिनि, अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम चाचू, कोई सॉन्ग चलाइएगा ईद स्पेशल मेरे लिए, आप अपनी पसंद पर। ओके जनाब, ज़ारा खुशी सालार समेजो और कशफ ज़ारा हमारे साथ मौजूद हैं, तो जनाब कहती हैं अस्सलाम वालेकुम चाचू, कोई स्पेशल सॉन्ग चलाइएगा ईद के लिए मेरी पसंद पर। ज़ारा खुशी सालार समेजो और कशफ ज़ारा हमारे साथ मौजूद हैं, तो जनाब मैं भी प्ले करता हूँ ज़ारा खुशी सालार समेजो कशफ ज़ारा और हाफिज़ साहब की फरमाइश पर एक बहुत प्यारा सा गाना। ईद आ गई है, मेरा यार नहीं आया, तो इस गाने को सुनिएगा और हमारे साथ रहिएगा GFM 88 नेटवर्क पर, हम आपके साथ हैं शाम के 7 बजे तक। तो जनाब हम प्ले करते हैं एक बढ़िया सा गाना, तो इस गाने को सुनिए और हमारे जबरदस्त से शो को बहुत ज्यादा एंजॉय कीजिए, जो कि शाम के 7 बजे तक आपके और हमारे लिए पेश कर रहा है GFM 88 नेटवर्क। तो सबको सुनने वालों को एक बार फिर से ईद मुबारक।

0: खुशियों, कुर्बानी और मोहब्बत का त्यौहार जी सखड़ एफ एम 88 की जानिब से ईद उल अजहा मुबारक। दुआ है कि ये ईद आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए।
1: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ बी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ये कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास चेहरे के दाग धब्बे कील महासे और बेजानपन अब सबको कहे अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार नरमी ताजगी और कुदरती चमक सावली रंगत अब नहीं सिर्फ 3 दिन में पाए साफ निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो।
3: छा तव्हां समर वेकेशन के फ्रूटफुल बनाइण चाहियो था? छा तव्हां सिर्फ़ 2 महीननि में न्यू स्किल्स सिखी पंहिंजे मुस्तक़बिल खे वधीक बहितर बणाइण चाहियो था? त पोइ परेशान थियण जी का ज़रूरत नाहे। ग्लिमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर पेश करे थो 2 मंथ्स समर वेकेशन स्पेशल कोर्सेज जिन में शामिल आहिनि किड्स कंप्यूटर कोर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वेब डेवलपमेंट कोर्स ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स 1 ईयर DIT कोर्स 6 मंथ्स CIT कोर्स तजुर्बेकार टीचर्स जी निगरानीअ में जदीद ऐं आसान तरीक़नि सां प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सां गॾु सिखिया मुनासिब फीस में मयारी तालीम हासिल करियो ऐं पंहिंजी समर वेकेशन खे कामयाबी ऐं सिखिया जो बहितरीन मौक़ो बणायो। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल एडमिशन्स ओपन नाओ व्हाट्सएप 03003113830 मोबाइल 03000093127 एंड 03013865090 एड्रेस लार टावर फर्स्ट फ्लोर 4 फीट रोड भरसा IBA यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 सखर ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लर्न स्किल्स बिल्ड योर फ्यूचर।
4: यार मछा क्या किथे वन्या घर में वेठो आहां पर ठीक ही नया शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नाही थई
5: छो भला छा थियो तोखे साफ साफ बुधा मसलो छाए।
4: यार एक मसलो हुजे त बुधाया मुंझी ते मसलन जी कतार लगल आहे न भुख सही लगे थी ऐं जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पेर सुन थी वन था ऐं सजो डी सुस्ती महसूस थे थी कह कम जो रहंदो ही ना
5: यार तुझा घणा न बस एक ही मसलो आ
4: एक इहो किए
5: हाँ तुझो मैदो खराब आ छा तो न बुधो आ मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न हुंदो त बुख भी न लगंदी न हाजमो थींदो ऐं न ताकत मिलंदी
4: त पो मां छा कयां।
5: सोलो हल आहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स एक कुदरती जुज़न मां तैयार कयल कोर्स तुझे जिस्म जो हिस्सो बणजी तुझे मैदे के बिल्कुल ताज़ो ऐं मजबूत करे छॾींदो बुख खुली वेंदई खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई पेट फूकजण खत्म सुस्ती खत्म जिस्म में ताकत ईंदई।
4: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी पर ही किथे मिलंदो?
5: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं अल नूर दवाखाना रोड़ी ऐं राब्ते जे लाइ नंबर भी अथई 0305-58-00-616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
6: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक NICVD रोड सखर हैदराबाद ऐं लाड़काणे जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी DHMS RHMP इस्लामाबाद जोड़न संदन जो सूर कुंदरग जो सूर कंघे जो सूर हडन जो भरण अध मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जो सूर खारिश ॿारनि में कद जो न वधण मोटापो इन खां अलावा पित्ते गुर्दे ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो टाइम सुबुह 10 खां शाम 6 वॻे ताईं एड्रेस सखर होम्योपैथिक پیتھک کلینک نزد دلواری اسپتال سکھر ہر جمعے آچر تے چیک اپ فیس بالکل مفت رش کا بچن نمبر وٹن لائے 0327-84-60-746
7: عید الاضحیٰ مبارک سنت ابراہیمی قربانی محبت ایثار بھائی چارے کے عظیم پیغام سے بھرل عید الاضحیٰ کے ہن پر مسرت برکتن والے موقع تے زوار محمد بچل شمبانی عبد الرسول بھٹو ایاز بھٹو سلیمان بھٹو یامین بھٹو علی حسن بھابو علی گل کٹور رضا محمد مستوئی سید امداد علی شاہ خان محمد مہر مقصود نیازی علی محمد بھمرو علا ورائے الاشاری سمیت سمورے عالم اسلام پاکستان کی عوام کے دل جی گہرائن سا عید الاضحیٰ جی لکھ لکھ وادھائیوں نیک تمناؤں ائی دعاؤں پیش کجن تھیوں پارا سونا خان مستوئی جیک بابات رابطو 0304-754-238
8: خوشخبری آپ کے شہر سکھر میں 43 سالہ تجربے کار
9: ہومیو ڈاکٹر آگا لیاقت علی خان پٹھان
8: ڈی ایچ ایم ایس سندھ
9: آر ایچ ایم پی اسلام آباد
8: سینئر پروفیسر ہومیوپیتھک کالج لاڑکانہ
9: ماہر امراض گردے اور مسانے کی پتھری
8: بواسیر کا بغیر آپریشن علاج
9: کمر درد
8: ارکن نسا
9: جوڑوں کا درد
8: ہیپاٹائٹس
9: وزن کی کمی یا زیادتی
8: بے اولادی
9: گنج پن کا مکمل علاج
8: اور دیگر مختلف بیماریوں کے ماہر ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان
9: ٹائم
8: ہفتے سے جمعرات
9: صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک
8: آغا ہومیوپیتھک کلینک
9: پولیس ہیڈ کوارٹر چوک سکھر
8: رابطے کے لیے
9: 0326-22-00-440
10: عید قربان کا پیغام ہے ایثار محبت اور بھائی چارے کا آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جی سکھر ایف ایم 88 کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بہت ساری مبارکباد
11: اور رائٹ گائز ویلکم بیک ونس اگین آپ کا اپنا شو ہے جناب عید دھوم اور جناب عید کی دھوم میں اشفاق آپ کے ساتھ موجود ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سے آپ یہ شو سنتے ہیں اور جناب عید کے تینوں دن آپ یہ شو سن پائیں گے 5 to 7 PM اونلی آن جی ایف ایم 88 نیٹ ورک لیتے شو کی ایک اور کال تمام دوستوں کو عید مبارک ونس اگین السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے پیارا بھائی کیر سا سبنی سا گڈ لڑکانے والا تھوڑا من سگنل جو مسئلہ ہوں نا ان لیے تھوڑا مجھے خیال میں پہنچتے ہیں تھینک یو سو مچ تمہیں بھی کھوڑ ساری عید جی وادھائی ہوجن یہ بدھاؤ تو تاج عید کی گزری ہائے ہائے گرمی ڈاڈی ہے یہ بدھاؤ لڑکانے میں کاتے کاتے گھومے واقعی صحیح شام جو ٹائم شام جو پہر ہوں نا وہ سٹھو گھومنے پھرنے لائے تو شام جو نکرو رات جو نکرو دوستن سے گھر انجوائے کیو پانی لائف کے جی جی جی بالکل اچھا ہاں کہڑو گانا بدھاؤں مجھے اچھا تو یہ کہ شاہد ببر جو ہاں ٹھیک ہے میں پلے کرنے کی پوری کوشش تو کیا تھا تھینک یو سو مچ تھینک یو جی جناب ہمارے ساتھ بہت پیارے سے کالر فرام لاڑکانہ اور لاڑکانہ والوں کو ایک بار پھر سے ہماری طرف سے عید کی بہت بہت زیادہ مبارک ہو جناب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں کہیں سے بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں تو آپ ہمیں کال کریں 03000 جناب 1134888 پر لیتے ہیں شو کی ایک اور کال السلام علیکم
12: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
11: عید مبارک
12: تھینک
11: یو سو مچ تھینک یو سو مچ کیر ادا کتنا پہ گلا مصطفیٰ بھا کیڑا حال چال ہے تاں جی عید کیتے گزرے
12: الحمد للہ شکر اللہ سائیں لکھے سان
11: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیے گزری تاں جی عید چھا چھا کھادو پیتو کاتے کاتے گھومن ویاو
12: بس اتے پانچ شہر ٹھکرا تھے
11: اچھا ماشاء اللہ تاں ٹھکراٹ میں گرمی انجا شدید ہے جڑی سکھر میں آیا تھوڑی گھڑی ڈھارا تھا سر
12: ڈر آئے کانا سائیں بند آلیا بجا دے
11: مری ویاسی یار کوئی دعا کیوں تو بادل بجا وڈا وڈا اچانک کوئی برسات تھے
12: अल्लाह
11: साईं के पारत है वाकई अल्लाह साईं जेको कंदो भलो कंदो इंशाल्लाह आई यो बुधायो ताई के शो की तो लगे
12: तमाम बेहतरीन है माशाल्लाह
11: हां थैंक यू सो मच मां शायद बबर जो गानो तो बुधायण वारो आया के जे नाते कण चायो
12: अरे मुजा दोस्त आने साईं अनवर सोलंकी आए
11: जी जी मुस्तफा भा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज जी जनाब हमारे साथ है मुस्तफा भाई और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं ईद की एक बार फिर से तमाम दोस्तों को मुबारकबाद अस्सलाम वालेकुम
12: वालेकुम सलाम
11: ठीक ठाक मुझा प्यारा भा के सभी वकास जतोई साहब कहड़ा हाल है ठीक ठाक है ईद मुबारक
12: खैर मुबारक साईं तांके भी ईद मुबारक
11: खैर मुबारक खैर मुबारक यो बुधायो ईद जो दिहाड़ो किए गुजारो था सुमी सुमी या वकास
12: असा तालाश पर थी गुजारे होगा उतार पनी में बैठा हूं संगत का पीजे थी मिलो ताक में राय खिदमत थी ताक में भी वरी बो असा जो टाइम रात जो
11: अच्छा वाह वाह वाह सारी संगत कैसी तरफा ईद मुबारक छे जो थैंक यू संगत मजो इन जी गोठ में उताक खुल हों कचहरी होंदन ईद की गाल वो मजो इन शो क्यों सही सही सही अच्छा ये बुधा शायद जबर जो गाना तो बुधाया कें नारे से करना चाहो हाजुर हाजुर खड़ो बिल्कुल
12: तमाम बुधन के सलाम मौला ताके खुश रखे प्रोग्राम सफा कदम
11: न हर जुमे ते बीतो आया हाँ टे डी प्रोग्राम लगातार कदम ईद जहा पंज खां सते ताईं टे डी थैंक यू सो मच दादा तुम भी खुश रहो संगत भी खुश रहे बुझा रहो थैंक यू जी जनाब हमारे साथ बहुत प्यारे से कॉलर और जनाब बहुत प्यारे से लिसनर जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर हम एंजॉय कर रहे हैं जनाब ये बात होती है ना कि गांव की कुछ बातें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं जो कि हमेशा याद रह जाती है तो गांव का अपना ही चस्स है तो जनाब गांव में बैठकर प्रोग्राम एंजॉय करना दोस्तों के साथ वकरी टाइप का जबरदस्त मजा आ जाता है अस्सलाम वालेकुम कौन हमारे साथ इतना जल्दबाज बंदा अच्छा मोहम्मद दीन साहब केड़ा हाल चाल है ठीक ठाक आए हो
12: अल्हम्दुलिल्लाह
11: खैर मुबारक मेरे प्यारे से भाई आपको भी बहुत ईद मुबारक कैसे गुजर रही है आपकी ईद इतनी स्पीड से गुजर रही है
12: माशाल्लाह
11: गर्मी शदीद है गर्मी का तो हर कोई शिकायत कर रहा है गर्मी बहुत शदीद है जी जी
12: और मैं दोस्तों के साथ सलाम बोलना सर बिरदागरी होगा
11: हाँ
12: और मैं अपनी पूरी टीम को जो आपके पास सुन रही है
11: वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई थैंक यू थैंक यू हमारे बहुत प्यारे से और बहुत जबरदस्त से और बहुत जल्दबाज से भाई हमारे साथ मौजूद थे आते ही ईद मुबारक आते ही दोस्तों के नाम क्या बात है जनाब बड़ा अच्छा लगा आपका स्टाइल और गर्मी है ना तो हर बंदा बोलता है कॉल करके डेडिकेशन करके जान छुड़ाऊं थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम ठीक ठाक मुझे प्यारा भाग कह सबरी सा गद सोना खान मस्तोई साहब फ्रॉम जैकमाबाद मैंने सुना है जैकमाबाद की गर्मी बड़ी तेज होती है यार
12: जी जी बिल्कुल सर आज की बड़ी गर्मी थी सर क्या करें आज का जो ईदी तकलीफ था वो हमने बड़ा अच्छा अपने बच्चों के साथ हमने गुजारा था
11: माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी फैमिली को टाइम दिया है और जबरदस्त तरीके से आप ईद का दिन गुजार रहे हैं ये बताओ क्या क्या खाया पकाया क्या क्या स्पेशल डिशेज बनाई
12: बिल्कुल हमने जो है जो अपना कीमा बनाया था अभी इसका बड़े दोस्त गए
11: वाह वाह जालमो अकेले के लिए खा गए
12: और अभी जो है ना हम जो रात के लिए हम जो है अपनी बिरयानी पकवा रहे हैं
11: क्या बात है क्या बात है जबरदस्त बिरयानी भी खाएं कीमे भी खाएं कबाब भी खाएं और जनाब कलेजियां भी खाएं एंजॉय करें बस ईद को एंजॉय करने का नाम है
12: और कल वाला दिन जो है ना आपके लिए हम गिफ्ट भेजेंगे
11: अच्छा थैंक यू सो मच यार बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें गिफ्ट भेजेंगे और वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन थैंक यू सो मच एडवांस में और ये बताओ कि हमारा शो आपको कैसा लग रहा है
12: जी बिल्कुल शो आपका अच्छा लग रहा है सर आपका शो सारे दिन सारे आप चले थे सब हमारी फैमिली में सुना था और हम तो बाहर थे और अगर आप जब हम आए वास्तव में अपने घर तक मिलाई थी हमने खुद ही उठाया मैंने कहा बाइक प्रोग्राम चल रहा है हमने काम नहीं करे ये तो अच्छा ही नहीं होता।
11: और पता है मेरा ईद के तीनों दिन प्रोग्राम चलेगा 5 से 7
12: बिल्कुल और 3 दिन हम आपके साथ होंगे
11: एग्जैक्टली क्योंकि GFM88 नेटवर्क आपकी हर ईद को ज्यादा शानदार बना देता है आपके हर दिन को शानदार बनाता है।
12: जी जी बिल्कुल जी हमारे बनाता है तो हम भी ATH के साथ
11: थैंक यू
12: कहीं भी नहीं
11: जाते बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं गाना प्ले कर रहा हूँ शायद अली बब्बर का है सुख सारा हलियता लिखी दया दुखन जुमास देवार किसके नाम करना चाहते हैं
12: बस ये नाम हम करने जाएंगे सबसे पहले आपको आपकी पूरी टीम को और उसके बाद जो है अली भाई को ये गाना डेडिकेट करेंगे और उमर पर से बिल्कुल भुट्टा आयास अली भुट्टा और आलूमन मारे अनिकुल कटवाने और इमरान शाह भाई सिंह रहे और हजार बच्चे पानी उसको भी ये गाना डेडिकेट कर लेंगे सर।
11: जी जी जी जी जी थैंक यू सो मच अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी जी
12: और सर कल वाले जो है प्रोग्राम किसी फीमेल आरजी को अपने साथ ले आओ सर कल वाले शो में।
11: अच्छा चले इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जरूर
12: इंशाल्लाह
11: ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ जब मैं अकेला शो कर रहा होता हूँ ना तो मुझे मतलब को आरजेज भी बहुत अच्छा शो करती है लेकिन जब मैं खुद कर रहा होता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं क्या होता है लेकिन शो की ये कॉल को देखते हैं लाइन पे कौन है अपने कॉलर को कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब कॉलर तो बात नहीं कर रहे लगता है नाराज हो गए हमसे आप हमें कॉल करें 03000113488 पर हमें कॉल कर सकते हैं जनाब और हम आई थिंक गाना प्ले कर दें बहुत प्यारा सा गाना है सब मेरे पास मौजूद है मेरा बहुत फेवरेट गाना है आपने इस गाने को जरूर सुनना है शायद अली बब्बर का और मैं हमेशा ही गुनगुनाता रहता हूं तो आप भी गुनगुनाएं और ईद के दिन को बहुत ज्यादा एंजॉय करें तमाम दोस्तों को वंस अगेन ईद की बहुत बहुत सारी मुबारकबाद इस गाने के बाद दोबारा से आते हैं

0: कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं जज्बात और ख्वाहिशात की भी होती है। ईद उल अजहा का पैगाम है खुलूस और कुर्बत का। जी एस अखर FM 88 की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक।
1: खुशखबरी, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई वधाई वही है। जी हाँ, साल 2026 के लिए दाखिलाओं जारी है मुख्तलिफ शोबन में। BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिक्स, रियाजी, शुमारिया जेड़ा अहम प्रोग्राम, ह्यूमन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS केमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, BEd 4 साला, MS एजुकेशन 2 साला। मुस्तैक शागिर्दियाण लाइ स्कॉलरशिप भी मौजूद। एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइन, घट में घट 50% मार्कू इंटरमीडिएट लाजमी। उम्र की हद 35 साल। फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई बताई गई है, लिहाजा देर न करो, ऑनलाइन अप्लाई करो। www.apy.bnbwu.edu.pk।
2: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट जे तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अमां जे शहर सखर में। मेदे जा मसला, गैस, बदहजमी, कब्ज, खूनी ए बादी बवासी, जनाना बीमार समेत बिन मर्जन जो इलाज करे रहो है। रोजाना सुबह 9 बजे का शाम 5 बजे ताई जुम्मो मोकल। एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक, वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप, नजद PSO पेट्रोल पंप, रेस कोर्स रोड सखर। राब्ते जे लाइ 03112082600 आई 03371433311। मुझे तेरी प्यार
1: लगे। ईद उल अज़हा जे हिन बरकतिन भरे खुशियन सा महकंदड़ आई रूहानी अहमियत वारे पुरमसरत मौके थे नज़ीर खोसो पारा समूरन मुसलमान भाइरन भेनरन के दिल जी गहराइन सा ईद उल अज़हा जो लख लख वाधायूं नेक तमनाओं आई दुआ पेश कजन थियूं। अल्लाह पाक खां दुआ आए थे ये ईद अमां जी जिंदगी में अमन, खुशहाली, सेहत आई बेशुमार खुशियूं आणे। पारा नज़ीर खोसो, बलोचिस्तान। राबते लाए 03438302796। आज शहर सखर में होम्योपैथिक में 43 साल जो तजुर्बो रखंदड़ प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। मरीज जो मुआइनो कर रहे है हर किस्म के आसाबी अमराज, जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, कब्ज, तेजाबियत, गुर्दन जी पथरी, बवासीर, हाजमे जी खराबी बेन बीमारियों जो बगैर ऑपरेशन होम्योपैथिक तरीका इलाज मुताबिक मरीज जो इलाज कर रो है प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान। रोजाना सुबह 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुम्मो मोकल। एड्रेस आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर। राब्ते जे लाइ 03 26 22 00 440।

0: क्लास फर्स्ट क्लास मुझे गुजरी थी तां भारन सां गद आई तां के प्रोग्राम में तां सां तां के भली कार चाहूं था माशाल्लाह माशाल्लाह ये रोज बुध था क्यों मां टे दी रोज ईद जी इंदम अच्छा बुधंदो माना टे दी गुड गुड गुड गुड अच्छा मैं गानों तो प्ले किया शायद बबर जो कहें नारा था करना चाहे हो
1: यो साईं असांजा दोस्त है ना उन्हें नारा पुजे निकलना से
0: जी जी बिल्कुल कहो
1: असांजो दोस्त है दिलदार सिंह
0: अच्छा
1: दिलदार है अच्छे है अचाते है अजीम
0: जी जी
1: आने के नाले प्ले करें
0: हेलो महानी प्ले तो क्या गानों अल्लाह मां सदके वञा बसि कल मिलाईंदो ऐं कल न मिलियो त परीं त ज़रूरु मिलंदो इनशाला रोज़ मिलाईंदा कयो मिली वेंदो मिली वेंदो थैंक यू सो मच अदा बहुत प्यारे से कॉलर हमारे साथ मौजूद थे अच्छे से और कहते हैं कि आपकी कॉल्स नहीं मिलती तो जनाब आप जैसे प्यार करने वाले बहुत सारे हमारे लिसनर हैं और बहुत सारे प्यारे भाई हैं जो कि कॉल्स मिलाते हैं तो इसलिए नहीं मिलती नंबर बिजी होता होगा अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: कौन हमारे साथ
2: मोहम्मद आपके साथ
0: मोहम्मद ताहिर लगता है आपने गोश्त बहुत ज्यादा खा लिया है स्पीड
2: हो गया आप भेजेंगे तो हम खाएंगे
0: क्या बात है फिर तो कभी नहीं खा सकते आप मेरे आश्रय पे हैं तो अच्छा ताहिर भाई ये बताओ कैसे रही आपकी ईद आपको ईद मुबारक हो
2: आप बताइए कैसे हैं
0: मैं बहुत अच्छा हूँ ईद मुबारक हो आपको
2: बहुत ज्यादा शुक्रिया और आपको भी ईद की ढेर सारी खुशियां मुबारक है
0: थैंक यू सो मच ये बताओ कैसे गुजारी ईद क्या क्या खाया पिया कहाँ कहाँ घूमने गए
2: हाय हाय क्या पता नहीं क्या क्या खाया है सब कुछ खाया है जो है ना बिरयानी और सब जो भी आया
0: क्या बात है जेको भी आया मना दबस सही है सही है माशाल्लाह माशाल्लाह तव्हांखे नसीब करे ऐं तव्हां किथे घुमण फिरण विया हो
2: जी साईं हिकु मुंहिंजो भाउ आहे प्यारो हुन सां मिलणु वियो
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे इहो ॿुधायो शायद बबर जो गानो कंहिंजे नाले था करणु चाहियो
2: साईं असां कुझु जश्न जी सलाह ॾींदासीं
0: जी जी
2: ईद मौके ते जेके
0: वालेकुम अस्सलाम जिंदाबाद ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद थे जनाब और अब फाइनली मैं गाना प्ले कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी आपके अपने ही शो में जिसका नाम है ईद की धूम अशफाक नियाज़ी आपके साथ दोबारा से आएगा कल 5 से 7 तो हमारे शो का लास्ट गाना सुनिए टाइम बहुत कम रह गया है इसीलिए हम वाइंड अप कर रहे हैं शो को तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी कल तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल अगेन आप तमाम दोस्तों को ईद मुबारक हमारी तरफ से हमारी टीम की तरफ से हमारे GFM88 नेटवर्क की तरफ से तो अशफाक को दीजिए इजाजत अल्लाह ने के बान

0: से ये तो रियल जानवरों की जगह है।
1: भले
0: ओ भले भले ओ बाबा ओ भाई मान जा यार, नाराज नहीं हो, मान जा ओ भले मान जा, तुझे रियल जानवर दिखाता हूँ, मेरी कसम रियल जानवर, भले ओ भले
1: भले।

0: कसम।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सबने के लिए बधाई दे दूँ। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सतू ए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के फोन करे ईद की मुबारकबाद दिनी। हथियारबंद फौज की पेशावराने सलाहियतन ए कौमी सलामती लाय खिदमतन तोड़ी कुर्बानियन की सारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदराज की ज़रदारी चई सूबन के गवर्नर वन वजीरन कौमी असेंबली के स्पीकर अया सादिक गिलगित के वे वजीर ए बेन से भी फोन से राबो कर ईद की वधाई दिन। ए मुल्क की मजबूत सियासी सूरतहाल के ख्याल की देवट कई। शहबाज शरीफ हुकूमत अवाम के वद का वद रिलीफ फराम करने की कोशिश कर रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अमन तरक्की खुशहाली अता फरमाए ए कौम के एक ही दौलत से नवाजे।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईदुल्अज़हा बलोचिस्तान के जिले सोप में अगेन मोर्चन के मुकर्रर जवानों से गड मलाई मुल्क की सलामती और खुशहाली लाय खास दुआओं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दुश्मन के नापाक इरादन के हर कीमत नाकाम बनाईदी भारतीय सरपर

0: थींदड़ दहशतगर्दी बर्दाश्त जोगी नाहे। दहशतगर्दी जूं मुस्तैलाणियूं कार्रवाइयूं क़ौम जे हौसले खे कमज़ोर नथियूं करे सघनि। बलूचिस्तान जे अवाम सां गॾिजी दहशतगर्दनि जो आख़िर हद ताईं पीछो जारी रहंदो। ISPR मौजिब फील्ड मार्शल जवाननि सां गॾु ईद नमाज़ पढ़ी ऐं कंहिं वाधायूं ॾिनियूं। जवाननि जे जज़्बे जी साराह फील्ड मार्शल शहीदनि जी यादगार ते हाज़िरी विभरी।
1: Allahu Akbar.

सिंध समेत समूरे मुल्क में ईद उल अज़हा मज़हबी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाई पई वञे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिशावर ऐं कोयटा समेत मुल्क जे नंढनि वॾनि शहरनि में ईद नमाज़ जे भड़ाकनि खां पोइ सुनत इब्राहिमी तहत जानवरनि जी कुर्बानी जो सिलसिलो जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी नवाबशाह में ईद नमाज़ अदा कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ बि लाहौर में ईद जी नमाज़ पढ़ी। ईद नमाज़ जे भेड़ाकनि दौरान सिंध समेत समूरे मुल्क जी खुशहाली सलामती लाइ दुआऊं। KTN न्यूज़ तर्फ़ां आलम इस्लाम खे ईद जूं वाधायूं।

0: उसकी वजह से जैसे कहा भाई ने तनख्वाहें भी बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन अभी तक हमने फैसला नहीं किया, वफाक के साथ मिलकर फैसला करेंगे।
1: ऐना कै सूबे की गाल थी है ऐना ही वरी कै शहर के धारकंड की गाल थी है असाई तरमीम जो गाल रुगो मीडिया से बुधियो है पीपल्स पार्टी के रास्ते का सिवा असेंबली में का भी तरमीम पास नहीं थी सके। पर वजीर बहादुर अली शाह के अबाणे घोट वहाड़ में मीडिया से गाल मुराद अली शाह मौजूदा हालत सबब ही बजट तमाम घनी ऊंची होंगी, मुलाजमन की पगार में केतरी वाद कजे फैसलो वफाक से गाल कदी, कोशिश है तो गरीब आवाम से पार घट पवे।
2: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन जे मुका
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, जीए एफएम 88 नेटवर्क, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू सुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज नहीं करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जी एफएम नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो लई।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

के हो तो आवाज भी सिल्की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिल्की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

जिन समय समूरे मुल्क में ईद उल अज़हा मज़हबी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाई पई वञे। मुल्क जे नंढनि वॾनि शहरनि में हज़रत इब्राहिमी तहत जानवरनि जी क़ुर्बानी जो सिलसिलो गुज़ारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी नवाबशाह में ईद नमाज़ अदा कई। वज़ीर शहबाज़ शरीफ़ लाहौर में ईद जी नमाज़ पढ़ी। नंढनि वॾनि शहरनि में ईद नमाज़ जे मेड़ाकनि दौरान सिंध समेत समूरे मुल्क जी ख़ुशहाली ऐं सलामती लाइ ख़ासि दुआऊं घुरियूं वयूं। ईद जे न्यूज़ तरफ़ां आलम इस्लाम खे ईद जूं वाधायूं।

नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे नायब सेक्रेटरी अली बागड़ी उन्हीं है त ईरान ए अमरीका विच में आबदाय हुर्मुज खोलण ते हेल ताईं को भी माहिरो न थियो आहे। ईरान ऐं ओमान विच में आबदाय हुर्मुज मां जहाजनि जी अचवञ लाइ नए तरीक़ेकार ते ॻाल्हियूं हलनि पयूं। ईरान जे रचायल यूरेनियम जा ज़खीरा ॻाल्हियुनि जे एजेंडा में शामिल न आहिनि। ईरानी पासा इंकलाब नेवी जे नायब सरबराह मोहम्मद अकबर ज़ादा चयो आहे त दुश्मन जी कमज़ोरी सबब जंग जो इम्कान घटि आहे। ईरान कंहिं बि हमले जो जवाब ॾियण लाइ तयार आहे। इन वक़्त ईरान लाइ सभ खां वॾो बहासबाज़ी जंग आहे। दुश्मन फौजी मैदान में पंहिंजा मक़सद हासिल करण में नाकाम रहियो। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान जूं तेहरान में वापारियुनि सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं। मसूद पेज़ेशकियान चयो त दुश्मन ईरान जी भाषी ताक़त खे नुक़सान रसाइण ईरानी अवाम जो रोज़गार ऐं ज़िंदगी मुतासिर करणु चाहे थो।

चयो आहे त ईरान तकरार में शामिल थींदियूं जंगबंदी बरकरार रखंदियूं। दूरियूं विछोरो रस्तो अख़्तियार कंदे ॻाल्हियूं जारी रखनि। पुराणा मसला हिक रात में हल नथा करे सघजनि। ॻाल्हियुनि खे अॻिते वधाईंदड़ हर कदम वधीक उमेदूं पैदा कंदो आहे। तकरार जेतिरो जल्द ख़तम थींदो ओतिरो ई घटि जानी नुक़सान थींदो।

साईं तरमीम जूं ॻाल्हियूं अफ़वाहुनि खां सवाइ कुझु न आहिनि। इन ते का बि मुशावरत न आहे कई वई। कराची सिंध जो हिसो आहे ऐं हमेशह रहंदो। श्रीनगर जे शर्जील इनाम मेमण जूं टटोजाम में मीडिया सां ॻाल्हियूं। शर्जील मेमण अवाम खे ईद जूं वाधायूं ॾींदे चयो त क़ुर्बानी ईद जो मक़सदु वॾो जज़्बो आहे। इख़्तिलाफ़ विसारे क़ौम खे एके जो मुज़ाहिरो करणु घुर्जे। गैस ऐं बिजली जे मसइले ते दाऊं करे थकजी पिया आहियूं, पर केरु ॿुधण लाइ तयारु न आहे। पाणी सिस्टम में मौजूदु हूंदो त अवाम खे बि मिलंदो।

नियाणियुनि खे वधि खां वधि तालीम ॾियारियूं। घर इन्हनि खे संभालणो आहे। ख़ुशी थिए पई त जवाहर जूं नियाणियूं लिखी पढ़ी अॻिते वधी रहियूं आहिनि। उन्हनि जे लुहानी पेशवा पीर पघारे जो पीर जो घोट में ई ध्याड़े ते ख़िताब। पीर पघारे चयो त मौसम तब्दील थी वई आहे। हिन भेरे बरसातूं ऐं गर्मी घणी पवंदी, जंहिं करे फसलनि ते तमामु घणो असरु पवंदो। मौजूदा हालतुनि में वधि खां वधि चौपायो माल धारियो। माल धारण सां सुनत बि आहे। मुश्किल में पातल ईरान समेत समूरनि मुसलमान मुल्कनि लाइ दुआऊं घुरियूं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू शुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो अब
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 सिंध की आवाज।
3: डरते अना था वो ख्वाब में भी मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। मौसम दिल खिलाफ हुरमत गम

0: कि तेरे बाद की कहानी है मुख्तसर, फिर यूं कि तेरे बाद हम तुम्हारे नहीं रहे,
1: क्योंकि मैं

0: किया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन

इम्यूनिटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जीएफएम 88 नेटवर्क।

0: स्मार्ट नेटवर्क सिंकी आवाज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
0: ये

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमन जे क्याम लाइ कोशिशन ते पाकिस्तान जा शुक्रगुजार आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर जो अमन जे क्याम लाइ अहम किरदार आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो चवण हो त उमीद आहे त ईरान ऐं अमरीका विच में जल्द अमन माहिदो थी वेंदो। पीएम ऑफिस मूजिब ॿिन्ही अॻवाननि गॾियल राब्ता ऐं मुशावरत जारी रखण ते बि इतफ़ाक़ कयो। अमरीकी फौज ईरान जी बहरी नाकाबंदी खत्म कंदी। जवाब में ईरान अपने हुनूस में वापारी जहाजन की आमदरफ़्त बहाल कंदो। इन्हनि में फौजी जहाज शामिल न हूंदा। अमान सरकार सां अपने हुनूस में जहाजन जी अच वञ ऐं रूट जो इंतज़ाम ईरान कंदो। ईरानी सरकारी मीडिया ईरान ऐं अमरीका विच में इम्कानी मफ़ामती याददाश्त जा तफ़सील साम्हूं आणे छॾिया। ईरानी मीडिया मूजिब इस्लामाबाद मेमोरेंडम फ्रेमवर्क फिलहाल हतमी नाहे। पकी तस्दीक खां सवाइ ईरान को बि कदम न खणंदो। व्हाइट हाउस इम्कानी मफ़ामती याददाश्त बाबति ईरानी मीडिया जी रिपोर्ट रद्द करे छॾी। व्हाइट हाउस जो चवण आहे त ईरानी मीडिया पारां जारी कयल एमओयू खून ते ॿधल आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त ईरान डील करण चाहे थो, छाकाणि त ईरान विच को ॿियो रस्तो नाहे। ईरान सां डील थींदी या असांखे कार्रवाई मुकमल करण पवंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो अमरीकी टीवी खे इंटरव्यू। डोनाल्ड सां वाइदो या फाइनल नाहे थियो। ईरान कमज़ोर पोजीशन में ॻाल्हियूं करे पियो।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर
2: अजबी सिंह की है FM 88 नेटवर्क। जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंह।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझल कहीं मारू डुगर था भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी।